0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में 6 बजे सुप्रभात लेकर आपके साथ होंगी नेहा बेनीवाल। 7 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के माध्यम से दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी खास खबरों की जानकारी आप ले सकते हैं, साथ रहेंगी निशा तंवर और नेहा बेनीवाल। 9 बजे का समय रहेगा दिल के तराने, गाने नए पुराने के लिए। और 11 बजे आपके लिए लेकर आएंगी बॉलीवुड ट्रेल्स के माध्यम से बहुत सी चटपटी बातें बबीता त्रिपाठी। 1 बजे होगा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज रहेंगी विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया दत्ता, जो बातचीत करेंगी ओरल हेल्थ केयर के बारे में। 3 बजे समय रहेगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का, जिसमें आज हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमेश अग्रवाल, जो कि प्रमुख हैं न्यू बॉर्न डिवीजन के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स दिल्ली में, और ये बातचीत करेंगे आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में। इनसे जानकारी लेने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 011-2342-1080, यानी 011-2342-1080। और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 9868 107070।

नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सदस्यीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदौ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने पर और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीकी चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और अंत में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और कार्यक्रम सुप्रभात में आप सभी का स्वागत हो रहा है। आज मैं हूं आपके साथ नेहा, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार ते सत श्री अकाल। आशा करती हूं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं और मन में बहुत सारा विश्वास है जिसके साथ आप इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम पंक्तियों के माध्यम से, जो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, अगर हम आज के की शुरुआत करते हैं तो देखिए बहुत अच्छा लगता है। हर सुबह कहती है धीरे से चलो, फिर एक नई शुरुआत करें। जो कल अधूरा रह गया आज उसे पूरा करने की बात करें। सूरज की पहली किरण बनकर मन में विश्वास जगाएं हम। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए अपने सपनों को अपनाएं हम। फूलों सी मुस्कान बिखेरें, ओस सी निर्मल हो जाएं हम। हर दिन को एक उपहार समझें और जीवन को उत्सव बनाएं हम। देखिए, हमारे ही हाथों में है कि हम कैसे अपने दिन को बना सकते हैं। और बिल्कुल अगर चेहरे पर मुस्कुराहट और मन में विश्वास के साथ दिन का आगाज करेंगे तो फिर देखिए आपका दिन सच में बहुत अच्छा बीतेगा। और हम तो यही चाहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक आपका दिन हमेशा अच्छा ही रहे। चलिए, बेहतरीन गीतों के साथ सुप्रभात में आगाज हो रहा है बहुत सी बातों का। और हाँ, मधुर संगीत का हमेशा साथ बना रहता है एफएम रेनबो दिल्ली पर। सुप्रभात।

कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है हमारे आसपास और हमारी अपनी ज़िंदगी में भी। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो जो भी कुछ होता है हम दुनिया को बता देते हैं, और पल भर भी नहीं लगता कि हम जो हो रहा है या होने वाला है उसकी जानकारी दुनिया भर के लोगों के साथ साझा कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्त कि जिन्हें हम बिल्कुल जानते नहीं, पहचानते नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप किसे जानते हैं, कोई एक आधा आपका दोस्त होगा, कलीग होगा जिनको आप

बैठकर कुछ समय के लिए ये सोचा है कि हर किसी को ये बताना कि आप क्या कर रहे हैं जरूरी तो नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है कि कीप विनिंग इन प्राइवेट, नॉट एवरीवन नीड्स टू नो व्हाट यू आर अप टू। जरूरी तो नहीं ना कि हर बात हर किसी को बताई जाए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हर बात हम अपनी जीत के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी प्लानिंग्स, हमारी जो योजना चल रही है कि हम ये करने वाले हैं, जब लोगों के साथ साझा करते हैं तो बहुत से ओपिनियंस हमें सुनने को मिलते हैं और कई बार हमारा ही मन खराब हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, कई बार आदतन हम मजबूर होते हैं कि हम अपनी बातें लोगों के साथ ये समझ के साझा कर देते हैं कि शायद वो हमें सलाह ही देंगे, हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन जब आप कई बार बैठकर सोचते हैं तो लगता है कि नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि वो कुछ अच्छा विचार नहीं रहा। और लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, लोगों की बातें होती हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और आपका जो मोराल होता है वो टूट जाता है, वो गिर जाता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होना चाहिए कि जो बातें हमारे मन में हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो सिर्फ हम जाने, और जब हमारी जीत सामने आए तो वही दुनिया को दिखाई दे। हमारी प्लानिंग, हमारी योजना, हमारे विचार, ये चीज़ें हमें जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि छुपा कर रखें।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

सुबह के 6:18 हो चुके हैं। सुप्रभात में नेहा है आपके साथ और दिन की शुरुआत संगीत में सफर के साथ हमने की है और बहुत सी बातें भी आपके साथ हो रही हैं। साथियों आज है 4 अगस्त और आज का दिन बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो संगीत प्रेमी हैं। और जब संगीत की बात होती है तो गुजरे जमाने के गीतों को हम याद करते हैं और उसी जमाने से जब हम बहुत से प्यारे प्यारे गीतों को लेकर आते हैं तो किशोर कुमार साहब का नाम हम बिल्कुल भी भुलाने की बात तो सोच भी नहीं सकते। तो आज किशोर कुमार साहब की जयंती है और इसी अवसर पर एक प्यारा सा गाना उन्हीं की आवाज में मैंने सोचा कि सुप्रभात में हम सभी के लिए पेश किया जाए। तो बस आइए उनकी आवाज में ये मधुर गीत हम सभी एंजॉय करते हैं और याद करते हैं कि किशोर कुमार ने कितने बेहतरीन नगमे, हर फ्लेवर के, हर जॉनर के गाने उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं।

एक से बढ़कर एक गाने आपके लिए आ रहे हैं सुप्रभात कार्यक्रम में। और अब आपको समय बता दें, बस कुछ ही पलों में सुबह के 6:30 मिनट होने को हैं और आपसे हो रही हैं बातें जीवन के बारे में। साथियों, ये बातें तो हम जानते हैं कि जो नदियां होती हैं, कहीं से भी शुरुआत उनकी हो जाए, लेकिन उनका संगम हमेशा समुद्र में ही जाकर होता है। और

गौर फरमाने वाली बात यह है कि कोई भी नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले अपने रास्ते के हर पत्थर, हर मोड़ और हर बाधा से समझौता करना सीख जाती है। ये बहुत ही काम की बात है। जीवन भी क्योंकि कुछ इसी तरह का होता है। हर चुनौती से लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ को तो हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही होता है, क्योंकि यहीं से हमारी असली ताकत हमें प्राप्त होती है। क्षमा, धैर्य और आत्म शांति, यही वो धाराएं हैं जो हमें मंजिल तक ले जाती हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्ची प्रगति तब शुरू होती है जब हम हर रुकावट से लड़ना छोड़कर उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मुस्कुराइए और बहते रहिए नदियों की तरह, क्योंकि ठहरा हुआ पानी नहीं, बहती हुई नदी ही समुद्र तक पहुंच पाती है।

चल चल चल चल चल चल झपठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

हाय, कितना प्यार भरा गाना है ना, कितनी प्यार की बातें इसमें हो रही हैं। तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, वाह वाह वाह। और बंदे को ये नहीं पता कि जाने क्यों, क्या बात है। अब ऐसा ही होता है, जब हम रिश्तों की अहमियत समझते हैं तो सामने वाले का गुस्सा भी हमें प्यार लगता है। लेकिन कई बार यही जो हमारे इमोशंस होते हैं, जब इन पर हम संयम खो बैठते हैं तो तिल का ताड़ बन जाता है और बातें हाथ से निकल जाती हैं और परेशानियाँ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। साथियों, एक चीनी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, वरना वही आप पर नियंत्रण कर लेंगी। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोध हो, दुख हो या फिर उत्साह, हर भावना की अपनी जगह है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन निर्णय हमेशा शांत मन से ही बेहतर लिए जा सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो भी हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं, और गुस्से में तो हम सभी जानते हैं कि हम और आप सब अक्सर ही गलत फैसले ले लेते हैं, गलत बातें कह देते हैं और फिर बाद में उस बात का अफसोस लेकर बैठ जाते हैं। इसलिए जब भी शब्द तेज हो जाएं, बस हमें एक पल के लिए ठहर जाना है। ये बात मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार आवेश में बहुत कुछ गलत कर बैठती हूँ। गहरी सांस लेने की आवश्यकता है और हमें 10 तक गिनती गिननी है। अक्सर वही 10 सेकंड किसी रिश्ते को टूटने से बचा लेते हैं। और हमें ये बात याद रखनी है कि भावनाएं हमारी ताकत हैं, बस उनके सारथी हमें ही बन के रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भावनाएं हम पर चढ़कर नाच रही हैं, हम पर राज कर रही हैं। इसीलिए संयम से निकले शब्द रिश्ते बनाते हैं और आवेश में निकले शब्द अक्सर उन्हें बिखेर देते हैं। अब कंट्रोल तो हमें ही करना है, क्योंकि ह्यूमंस ही तो हैं जो सबसे ब्रेनी स्पीशीज हैं इस पृथ्वी पर। तो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हम पर काबू पा ले।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

55 मिनट हो चुके हैं। आइए आपको बता दें कि आगे कौन कौन से कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर। तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद 7 से 8 के बीच में आप सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का पहला घंटा। निशा तंवर इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। सुबह 8 बजे हिंदी में समाचारों के बाद 8 से 9 के बीच में गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा जारी रहेगा। मैं नेहा इस कार्यक्रम में आपके साथ रहूंगी और हम बात करेंगे कि दिल्ली NCR में क्या कुछ खास हो रहा है। इसके बाद सुबह 9 बजे आप सुनिएगा हिंदी में समाचार और 9 से 10 के बीच में सुनिएगा कार्यक्रम दिल के तराने। गाने नए पुराने निशा रहेंगी आपके साथ इस कार्यक्रम में। सुबह 10 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 10 बजे के बाद आप सुनिएगा 10:02 से 11 बजे के बीच में वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम रहेगा मैचलेस म्यूजिक आवर। अदिति बिष्ट इस कार्यक्रम में आज आपका साथ निभाएंगी। साथियों सुबह 11 बजे हिंदी में समाचार सुनने के बाद 11:02 पर आप सुनिएगा बॉलीवुड ट्रेल्स। बबिता त्रिपाठी इस कार्यक्रम में आपका साथ निभाने वाली हैं। दोपहर 12 बजे समाचारों के बाद 12:02 से 1 बजे के बीच में आप सुनिए वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम प्ले इट कूल। आज के कार्यक्रम का विषय है अदिति बिष्ट एक बार फिर से आपके साथ रहेंगी, और 1 बजे हिंदी में समाचार होंगे और समाचारों के बाद कार्यक्रम होगा रेनबो हेल्पलाइन। बबिता त्रिपाठी इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। श्रोताओं आज का विषय रहेगा ओरल हेल्थ केयर। हमारी आज की विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर सोनिया दत्ता, प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे रहेंगे एक बार फिर से हिंदी में समाचार, और आप सुनिएगा दोपहर 2 से 3 के बीच में कार्यक्रम आशियाना। ज्योतिका सिंह इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। और अब मैं आपको बता दूं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण के बारे में, जो रहेगा दोपहर 3 से 4 के बीच में। रेडियो डॉक्टर की बात कर रही हूं, सीधा प्रसारण इसका आप सुन पाएंगे। और आज का जो विषय रहेगा स्पेशल प्रोग्राम रहेगा ऑन ब्रेस्ट फीडिंग वीक। हमारे एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर रमेश अग्रवाल, आप हेड हैं न्यूबॉर्न डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स न्यू दिल्ली से। और साथ ही मैं आपको बता दूं उन फोन नंबर्स के बारे में जिन पर संपर्क आप हमारे साथ कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। तो सबसे पहले नोट

कीजिए नंबर 011, दिल्ली का एसटीडी कोड है 2342108 ये पहला नंबर है, और इसके साथ साथ 011 2342108 इन दोनों नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं 9868107070। तो साथियों, इसी तरीके से आकाशवाणी पर कार्यक्रमों का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। पूरे दिन 24 घंटे आपके लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते हैं जिसमें जानकारियां होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाती है, साथ ही बहुत सारा मनोरंजन होता है। और अब विदा लेने का वक्त हो गया है आप सभी से, और चलते चलते हमेशा की तरह वही बातें कहूंगी जो हमेशा कहती हूं कि आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा बीते इस बात की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं। साथ ही अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखिएगा, ये हमारा शहर है, हमारा देश है, हमारा घर आंगन है, इसे स्वच्छ निर्मल हमें ही रखना है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेहा आपसे अनुमति लेती हूँ, प्यारे से गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। सुबह 8 बजे एक बार फिर से मुखातिब हो जाएंगे आप और हम, और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार।

102.6 एफएम रेनबो पर अब समय है मुख्य समाचारों का। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। विधानसभा उपचुनाव में भारत ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। रेलवे ने इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 14 करोड़ 13 लाख टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में यह 12 करोड़ 97 लाख टन की थी। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हो रही है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में 2 पहिया सड़क एम्बुलेंस शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थी इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो। अब आपने ट्यून इन कर ही लिया है तो मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग स्वीकार कर लीजिए। यस, गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं निशा हूँ आपके साथ में, और आज सुबह सुबह दिल्ली का खूबसूरत नजारा बताओ आपको कैसा लगा। सुबह 6 बजे का टाइम था जब मैं यहाँ पर आ रही थी, और रास्ते में वो भीगी भीगी सड़कें, वेस्ट दिल्ली में तो बहुत अच्छी बारिश सुबह से ही शुरू हो गई थी, काले बादल छाए हुए थे, लेकिन सेंट्रल दिल्ली तक आते आते सड़कें थोड़ी सूखी नजर आई मुझे। हाँ, रास्ते में भीड़ थी, ट्रैफिक थी। दिल्ली के लोग मुझे लगता है कि अपनी सुबह की जल्दी ही शुरुआत कर देते हैं, तो काफी ट्रैफिक था सड़कों पर, और उसके साथ साथ कांवड़िया नजर आ रहे थे, कांवड़ लेकर जाते हुए नंगी पांव, और बस इसी तरह से श्रद्धा और खूबसूरती से भरा हुआ था हमारी दिल्ली का ये सुबह का सुंदर चेहरा। जब भी देखती हूँ ना, दिल खुश हो जाता है। अब आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनते रहिए, आज बहुत सारी बातें होंगी हमारी दिल्ली से जुड़ी हुई, और कुछ आसपास की खबरें भी। बने रहिए, मैं निशा।

इसी तरह से गम को दूर रखते हुए गाते गुनगुनाते हुए एफएम रेनबो के साथ अपना बनाए रखिए। मेरा नाम है निशा, 7:06 स्टूडियो क्लॉक में, और गुड मॉर्निंग है जी आपको। और दिल्ली की एक अच्छी सी खूबसूरत सुबह में तो मैंने आपका स्वागत कर ही दिया है। मैं बहुत अच्छे दर्शन करते हुए आई हूँ, मतलब गुड वेदर। और जैसे ही वेदर अच्छा होता है ना, मैंने तो हमेशा नोटिस किया है मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मैं किसी भी बुरी चीज़ को नोटिस ही नहीं करती हूँ, मतलब हमेशा अच्छे वेदर में मेरा ध्यान अच्छी चीज़ों पर ही जाता है, या फिर अपने अंदर ही देखने का एक मौका मिल जाता है कि यार भाई चलो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हैं कि कहीं हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं। हाँ, कमियां हम बहुत आसानी से अपने अंदर या फिर दूसरों के अंदर भी खोज लेते हैं, लेकिन खूबियां देखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है भाई, और ख़ास तौर पर अपने अंदर। सोचो आईने के सामने अगर खड़े होकर 5 मिनट, या 5 तो मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, 1 मिनट भी अगर आपको अपने बारे में बेस्ट 10 चीज़ें बतानी हो, तो मतलब अच्छा एफर्ट लग जाएगा। आई थिंक 5 तक तो लोग ईजीली पहुँच जाते हैं, लेकिन 5 के बाद जब 6 का नंबर आता है ना, तब हमें भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे अंदर और क्या क्या अच्छा है। अब अपनी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, मुझे आपके मैसेजेस में लगातार नाम नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और आवाज़ के जादूगर का तो जिक्र नेहा ने भी कर ही दिया है, मैं भी आपको उनके बारे में बताऊँगी, उनके गीत सुनवाऊँगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली के वेदर पर नज़र डाल लेते हैं भाई। हल्की हल्की बारिश कई इलाकों में सुबह से शुरू हो गई है। फिलहाल बाहर का तापमान 27 बना हुआ है, जो कि मैक्सिमम 30 तक जाएगा। हाँ, मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे हफ्ते संभावना है कि हल्की फुल्की बारिश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होती रहे। तो फिलहाल ज्यादा बातें नहीं, विशाल मिश्रा अपनी खूबसूरत सी आवाज में एक गाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम अपनी बातें इसके बाद करते हैं।

भाई हमारे हिंदी सिनेमा को एक ऐसे ही कलाकार सालों पहले मिले थे जो आज तक हम सभी के दिल में राज करते हैं और उनके गीत हमारी जबान पर छाए रहते हैं। यस, आपको पता है, पहले अगर मैं फिर से बताती हूँ, आज किशोर दा यानी कि हमारे प्यारे किशोर कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। इन्होंने सोची डायरेक्शन में काम किया, अभिनय किया और गायन तो इनका अमेजिंग था। मतलब ऐसे ऐसे प्रयोग इन्होंने किए थे, बहुत ही चुलबुले और हर एक दिल अजीज इंसान थे ये। 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ था और उनकी आवाज में एक्चुअली में वो जादू था जो हर एक उम्र के इंसान के दिल को छू जाता था। सोचे गायकी में, अपने गायकी के करियर में इतना ऊंचा मुकाम इन्होंने पाया और चाहे कितने ही बड़े हो गए, मुंबई आकर रहने लगे और लेकिन फिर भी अपने रूट्स को नहीं भूले। जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस जगह से उन्हें खास तौर पर बहुत ज़्यादा लगाव था। अपने घर से, अपनी गली, अपने शहर से कितना जुड़ाव रखते थे वो, और इसी से पता चलता है कि कितने सिंपल इंसान थे। कहीं पर भी कहीं फंक्शन होता था, कोई मीटिंग होती थी, जब वो जाते थे ना तो बड़े गर्व के साथ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते थे कि अरे मैं वही किशोर कुमार खंडवा वाले। सच सिंप्लिसिटी और इतना करियर, इतनी सक्सेस इन्होंने पाई थी और शायद इसके पीछे यही एक कारण था, उनकी सिंप्लिसिटी ही। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे, सबसे प्यारे थे और सबसे छोटा होने के नाते तो आपको पता ही है ना, लोगों को बहुत प्यार मिलता है अपनी फैमिली में। और ऐसा ही प्यार, इसी चाहत को मतलब किशोर साहब ने मतलब इतना हसमुख बन गए थे ना वो, कि हर हाल में मुस्कुराना उनके जीवन का एक अंदाज ही बन गया था। बस इसी तरह हर पल मुस्कुराने का संदेश हमें किशोरदा अपनी आवाज के माध्यम से देते रहे और इसी और हंसाते हंसाते उन्होंने हमारे देश की कह सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट कॉमेडी फिल्म जो मानी जाती है चलती का नाम गाड़ी, वो अपने भाइयों के साथ बनाई और आज तक जब भी फिल्म को देखते हैं अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और 12 साल की उम्र से ही देखिए इन्होंने गीत संगीत में महारत हासिल कर ली थी। रेडियो पर गाना सुनने के लिए मतलब वो थिरक जाते थे उन धुनों पर, गानों को बचपन में ही याद कर लिया करते थे, मतलब कहते थे मैं तो रट लेता हूँ, और घर आने वाले मेहमानों को खूब गाते सुनाते थे, उनका मनोरंजन करते थे और सभी को खूब हंसाने के बाद ये भी कहते थे कि जीवन का असली रूप क्या है उसे जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

इतनी सुंदर, इतनी सादगी के साथ अपने जीवन का सही मैसेज देने वाले हमारे किशोर कुमार साहब, अपने घर के बाहर बी वेयर ऑफ किशोर का साइन बोर्ड लगाने वाले, या फिर अपने मंडवा खंडवा वाले घर में ये लगा देते थे कि मेंटल हॉस्पिटल, इस तरह की बातें करने वाले, लोगों को हमेशा गुदगुदाने वाले इंसान तो देखे हमेशा याद रहते हैं। तो आज इनके म्यूजिक के साथ में हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे किशोर दा का जन्मदिन।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव

0: लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

हर मौसम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली देखो हर गाने में बारिश का ही जिक्र आ जा रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ। और देखिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब हम सुबह सुबह अगर हम वो स्पॉट कर लेना तो हमारा दिन बन जाता है। तो बारिश के साथ साथ एक और ख़ास चीज़ ऐसी है जो मुझे पर्सनली उसके बिना तो मतलब मुझे कुछ दिन ही अच्छा नहीं।

लगता है. मतलब एवरी डे का मेरा ये काम है. मतलब आई एम अ बर्ड एंथुजियास्ट. यस, जो मुझे सुबह सुबह बर्ड्स स्पॉट करने में, उनकी उनकी जो भी साउंड होता है, उनका जो सॉन्ग होता है, उन सबको स्पॉट करने में, उसके बारे में एक लिस्ट बनाने में, पता नहीं क्यों मजा आता है. मतलब हाँ, कई लोग मुझे बोल चुके हैं थोड़ा वियर्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता. मेरे जैसा एक ह्यूज ग्रुप एक फॉरेस्ट वॉक में मुझे बर्डर्स का मिला था, जहाँ पर सभी बर्ड एंथुजियास्ट थे मेरी तरह. और अब अगर बर्ड्स की बात कर ही रही हूँ, तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आज 4 अगस्त है और आज के दिन इंटरनेशनल आउल अवेयरनेस डे है. आउल, यस, वही हमारा प्यारा नॉक्टर्नल बर्ड. देखिए, जब भी नॉक्टर्नल बर्ड्स का नाम आता है ना, तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं. उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता है. स्पेशली बैट्स को भी, मतलब इतनी मिसकंसेप्शंस बैट के साथ जुड़ी हुई हैं. ऐसे ही आउल के साथ भी मुझे लगता है कि इनजस्टिस होता रहता है जी. इतना प्यारा बर्ड है, इतनी क्यूट है. और जब पिछले 6-7 महीने से जब मैंने अपनी बालकनी में आउल को देखना शुरू किया ना, तभी मुझे पता चला उसके बाद, पढ़ने के बाद, कि वो अपने हेड को पूरा 360 डिग्री घुमा देता है. ऐसा हम लोग सोचते थे, क्या आप भी सोचते थे? तो ऐसा नहीं होता है. वो 360 अपना, मतलब ऑल द वे अराउंड अपने सर को नहीं घुमा सकता है. अब लेकिन वो क्या कर सकता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए इंटरनेशनल आउल अवेयरनेस डे पर हम इस प्यारी सी बर्ड के लिए बस थोड़ा सा लव, थोड़ा अप्रिसिएशन जोड़ सकते हैं अपनी लाइफ में उसके लिए. अपने बच्चों के साथ बैठ के इसके बारे में बात कर सकते हैं. इनकी स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, आउल स्टोरीज़. और आप इनके पिक्चर्स बनाइए, कलर कीजिए. मतलब आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल आउल अवेयरनेस डे. और लगे हाथ आप अपने बच्चों को इस ब्यूटिफुल बर्ड के बारे में, जिसके अंदर इतने स्पेक्टैक्युलर फीचर्स होते हैं ना, इतना यूनिक होता है अपने आप में. वो बड़ी बड़ी आंखें इसीलिए होती हैं ताकि रात को अंधेरे में वो स्पॉट कर सके अपने प्रे को. और उसके साथ साथ वो ऑलमोस्ट जब उड़ता है ना, तो उसके पंखों में ऐसा फीचर होता है कि वो बिना आवाज़ किए बिल्कुल साइलेंटली फ्लाई कर सकता है. तो क्यों ना इस यूनिक बर्ड के बारे में, जो सच है वो हम जाने, कोई मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में हो उसे निकालें. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल आउल अवेयरनेस डे. आई एम अ बर्ड एंड आई लव बर्ड्स.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम। मैं निशा हूं आपके साथ। आज अगस्त महीने की 4 तारीख हो गई है और आप तो जानते हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। यस, यहां पर बच्चों को के स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखना, नई माताओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सभी को ये बात के लिए जागरूक करना कि माँ का जो दूध है वो बच्चों के लिए पहले टीके का काम करता है, इसीलिए बच्चों के लिए वो पूरक आहार है, अपने आप में कंप्लीट है फॉर अ चाइल्ड और माँ के लिए भी इसके सारे खूब सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस पूरे हफ्ते अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर नई माताओं में या परिवारों में जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही आप हमारे आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम को भी सुन सकते हैं जो कि स्पेशल प्रोग्राम है ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर ही, और इसमें डॉक्टर रमेश अग्रवाल हेड न्यूबॉर्न डिवीजन है जो रहेंगे इस कार्यक्रम में, वो ही इज फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। अगर आप इनके साथ कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ तो जुड़ ही सकते हैं, साथ ही उस समय अनाउंस किए गए नंबर्स पर लाइव आप कॉल कर भी अपने क्वेश्चन के आंसर्स पा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है शिशु के लिए और साथ ही साथ उसकी माता के लिए भी, इस बात के बारे में अवेयर करना, अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए एफएम रेनबो 102.6 एफएम पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम स्वागत है आपका एक बार फिर से। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहने के बाद खुशी है। अब आजकल तो उनकी वीडियोस देख रही हूँ, धीरे धीरे वापसी हो रही है और सभी खिलाड़ी खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं और हम भी उनकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब इसीलिए क्रिकेट की बात फिलहाल खबर जो है आप सामने आ रही है कि हमारी जो इंडियन टीम है क्रिकेट की मेन्स टीम, वो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए श्रीलंका के दौरे के लिए निकलने वाली है। 15 अगस्त के बाद से ये लोग जाएंगे आगे और इसमें जो बुमराह है वो अपने घुटने की चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं हो पाए हैं। और लेकिन जम्मू कश्मीर के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं आकिब नबी, जिन्होंने रणजी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अब हो सकता है ये इस टीम में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अपना डेब्यू करें। हां जी, एक और बड़ी ही खास बात, हमारी राजस्थान की साइकिलिस्ट है हर्षिता, जो कि सिर्फ 19 साल की हैं और हर्षिता जाकर टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आपको पता है ये टूर डी फ्रांस महिलाओं की सालाना रोड साइकिलिंग रेस है और ये विमेंस वर्ल्ड टूर कैलेंडर का सबसे बड़ा और लंबा इवेंट है, जो कि 1 अगस्त को लुसाने से शुरू हुआ था और 9 अगस्त को ये समाप्त होगा। 19 साल की हर्षिता जो है स्विट्जरलैंड से इन्होंने अपने इस टूर की शुरुआत की और साइक्लिस्ट्स के ग्रुप को इन्होंने लीड किया। हर्षिता ने अपने पिता से ट्रेनिंग ली है, जो कि खुद भी एक साइक्लिस्ट हैं और ये एक यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड टैलेंट प्रोग्राम के तहत इस प्रोग्राम के लिए इनको चुना गया था। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हर्षिता, नाम में ही हर्ष है। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, जल्दी वापस आती हूँ।

102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, लेकिन हाँ ठीक 9 बजे वापस आऊंगी दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर। और आज 9 बजे कोई आम बात नहीं होगी, हमारे प्यारे किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी है, तो बस तीन खास रेट्रो गीत जो होंगे वो उन्हीं को समर्पित होंगे। तो हमारे किशोर दा का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे ठीक 9 बजे से। आप फिलहाल सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। नेहा स्टूडियो में आ चुकी हैं, जल्दी ये कार्यक्रम आगे कंटिन्यू होगा। सो कीप लिसनिंग 102.6 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो को हटाने के मुद्दे पर मेटा की आलोचना की है। समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की है। एनडीए संसदीय दल की आज नई दिल्ली में साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें हाल के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। रेलवे ने इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष के तुलना में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 14,13,00,000 टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में यह 12,97,00,000 टन की थी। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हो रही है। भारत और उज्बेकिस्तान ने महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में 2-पहिया सड़क एम्बुलेंस शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8 बजते ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा शुरू हो जाता है और आज मैं हूँ आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम होपिंग कि आपके दिन की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है, क्योंकि देखिए दिन की शुरुआत तो हमारे साथ ही होती है ना, तो हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा अमेजिंग म्यूजिक सुनाए और साथ में जानकारियों का पिटारा आपके लिए हमेशा लेकर आए। तो 8 से 9 के बीच में गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के इस दूसरे घंटे में हम बातें करेंगे कि दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में क्या खास और नया हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि जब म्यूजिक हमारे साथ होता है ना, तो हमारी बातों का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गाने के साथ, एंड आई एम श्योर ये बहुत से लोगों का बहुत ही पसंदीदा गाना है। आइए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए, गुड मॉर्निंग मेरी जान।

अब भाई गाने में तो इन्होंने कह दिया कि हमसे आके मिल ओ जाना, लेकिन जाने से पहले जरा देख लो मौसम का हाल क्या है। अगर बारिश हो रही है या होने वाली है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि नहीं। और इसके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर मैं नेहा हूं ना आपको बताने के लिए कि क्या है मौसम का हाल दिल्ली NCR में। तो फिलहाल हमारा जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 29 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और मिनिमम 27 डिग्री पर जाएगा, यानी कि गर्मी जो है वो बहुत कम रहेगी। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी डेफिनेटली हो जाती है जिसका एक्सपीरियंस हम सभी कर रहे हैं बारिश की वजह से, जब नमी बढ़ जाती है, लेकिन बारिश हो रही है इसका ख्याल आप रखें और छाता लेकर जरूर निकलें। इसके अलावा अगर आप रेनकोट कैरी करेंगे तो और भी आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। मैंने भी आज बिल्कुल टाइमली अपनी अम्ब्रेला ना घर से निकलते हुए ले ली, कल भूल गई थी मैं और कल बारिश में मैं भीग गई थी और उसके बाद गिचपिच मुझे तो नहीं अच्छी लगती है, पता नहीं आपको कैसी लगती है बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो जो कीचड़ हो जाती है ना वो मुझे पसंद नहीं। लेकिन हाँ बारिश का जो मौसम बन जाता है ना, ठंडी हवा और वो सुहाना सा मौसम, वो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए अब आपको हमने मौसम के बारे में बता दिया है तो आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और हाँ एक चीज मैं जरूर यहाँ बोलना चाहूंगी, जब बारिशों का मौसम आता है ना तो वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा हमें महसूस होती हैं। हम सभी देख रहे हैं कि घर में किसी न किसी को सर्दी जुकाम हो रखा है और साथ में फीवर भी हो रहा है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ और हाँ बाहर खाने से जरूर बचें, ऐसे में ना जो स्ट्रीट फूड है अगर हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जैसे कि मैंने कहा पानी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, वायरस या बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत जल्दी हमें पकड़ लेता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखना देखिए हमारी ही जिम्मेदारी है। और खाने की बात कर दी ना तो अगला गाना भी आपको

0: हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं

बिल्कुल मान ली मैंने इनकी बात और पॉइंट पर आ रही हूँ और बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई नमो भारत स्टेशन के कुछ एंट्री एग्जिट गेट्स को बंद रखने का निर्णय लिया है। इन स्टेशनों पर 4 अगस्त से 12 अगस्त तक प्रवेश और निकास बिल्कुल बंद रहेगा, यानी कि आज है 4 अगस्त और 12 अगस्त तक जिन स्टेशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वहां पर एंट्री और एग्जिट बिल्कुल बंद रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेन में एंटर नहीं कर पाएंगे, आप स्टेशन में अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके पास वैकल्पिक प्रवेश और निकास द्वार का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल ट्रेन ले पाएंगे। तो कुछ स्टेशन्स की मैं जानकारी आपको दे रही हूं। मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद रहेगा, मोदी नगर का ही साउथ स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद रहेगा, मुरादनगर स्टेशन का गेट 2, दुहाई स्टेशन का गेट 3 और 4, साथ में गुलधर स्टेशन का गेट 2 और गाजियाबाद स्टेशन का गेट 3 और 5 बंद रहेगा। भाई इसके अलावा और भी ट्रेन्स हैं और भी उनकी एंट्री एग्जिट्स हैं जो बंद रहेंगे, जिसकी जानकारी आपको रेलवे स्टेशन से ही मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें कि भाई जो पार्किंग रहेगी इन स्टेशन, जो गेट्स मैंने आपको बताए इनके सामने जो पार्किंग रहेगी वो बिल्कुल बंद रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी तरफ पार्किंग है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और फैसला लिया गया है गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर, और आदेश जारी हुआ है कि भाई सड़कों पर निकल रहे कांवड़ श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली NCR के गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है और 4 अगस्त से 12 अगस्त तक के लिए स्कूलों की छुट्टी की गई है और ये आदेश सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर ट्यून इन कर सकते हैं 8 से 9 के बीच में, जहां दिल्ली NCR की बात होती है, बहुत काम की बात होती है और हाँ मनोरंजन भी भरपूर होता है। तो अगला गाना भाई पुरानी यादों को ताजा करते हुए बुमरो गाने पर आइए, नाचते हैं और झूमते हैं। कितना हमने इस पर परफॉर्मेंस दिया है ना अपने स्कूल के फंक्शंस में, याद कीजिए उन दिनों को।

0: बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कुछ गाने ना ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल लगता है कि बस खो जाओ यार, और गाने ख़त्म नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है मुझे तो। अच्छा चलिए, आपको बता दें कि आप समय क्या देख रही हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो गया है सुबह के 8:37 और यहाँ पर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे घंटे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि दिल्ली NCR में क्या खास हो रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे बताइए कि भारत देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है। अब देखिए भाई, इतना आसान सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे कि नेहा लै कैसा सवाल पूछ रही है भाई, साड़ी दिल्ली में और कहाँ होगा। तो दिल्ली में जो हमारा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसे हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस हमारा फ्लाइट का वहाँ से रहता है। तो अब अगले 10 सालों में इसको और अपग्रेड करने की पूरी पूरी तैयारी हो रही है। अभी अगर हम यहाँ पर यात्रियों की क्षमता की बात करें तो 10.5 करोड़ क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 14 करोड़ करने की तैयारी चल रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में इसको ग्लोबलाइज्ड लुक दिया जाएगा और साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अपग्रेड करने की तैयारी अपने लास्ट स्टेज पर आ पहुंची है। और एयर ट्रेन और साथ में नए T4 टर्मिनल का निर्माण भी होगा, इस तरह की बातचीत सामने आ रही है। और नोएडा एयरपोर्ट जो है वहां से इसको कंपीट किया जाएगा, इस तरह की बातचीत हो रही है। भाई देखिए, प्लान तो बहुत ही अमेजिंग सा है और हम यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा हो जाए और मजबूती के साथ काम हो, ऐसा काम हो कि साल दर साल हम यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जो फ्लाइट लेने और यहाँ डिपार्चर का है और अराइवल का है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हमारे लिए हो जाए, हर तरह की सुविधा यहाँ पर हमें मुहैया कराई जा सके। इसी बात के साथ एक मजेदार गाना भी आपके लिए निकल पड़ा है मेरी प्लेलिस्ट से, क्या बात है। लव जंजुआ और सूजी क्यू कह रहे हैं कि जी करदा, याद कीजिए इस गाने को, नाचना शुरू कर दीजिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

सुबह के 8:50 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा। और आइए अब बात करते हैं हम पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के बारे में, जिसे हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। पहले इसे दिल्ली में अनिवार्य करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दिया गया है। यानी कि अब जो महिलाएं हैं दिल्ली शहर में, वो 15 अगस्त 2026 तक पुराने पिंक टिकट से ही बसों में मुफ्त सफर जारी रख सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि 16 अगस्त से, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है ये बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगा, तो डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ये कार्ड पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि स्मार्ट कार्ड पूरी तरह से कंपलसरी हो जाएगा। और टिकट व्यवस्था की बात करें तो 15 अगस्त तक कंडक्टर पहले की तरह पिंक टिकट देते रहेंगे महिलाओं को, लेकिन इसके बाद कागजी टिकट बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मेट्रो में चलेगा, साथ ही नमो भारत RRTS में, और डिजिटल कैशलेस भुगतान के लिए भी आपको काम आएगा। और आप जान लीजिए कि दिल्ली शहर में अब तक लगभग 17 लाख से भी ज्यादा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बांटे जा चुके हैं। तो अगर अभी आपने नहीं लिया है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप इस कार्ड को लें और इसके साथ जो भी बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं उन बेनिफिट्स का आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जानकारी आपके लिए आकाशवाणी लेकर आता रहता है और आप जाकर इसका इस्तेमाल कीजिए। आप क्या सुन रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं।

और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अब आप जान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में जो आकाशवाणी दिल्ली के इस चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। तो फोन इन कार्यक्रम की जानकारी मैं आप तक पहुंचा देती हूं। दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद 1 से 2 के बीच में आप सुनिएगा रेनबो हेल्पलाइन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण है हमारा, जिसमें आज का विषय रहेगा ओरल हेल्थ केयर, यानी कि आपके मुंह से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात होगी। कैसे आप अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और इसके अलावा मसूड़ों से जुड़ी भी परेशानियों के बारे में चर्चा आप यहां पर आज सुन पाएंगे। 1 से 2 के बीच में हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सोनिया दत्ता, प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट आप हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रसारण रहेगा 3 से 4 के बीच में, रेडियो डॉक्टर का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे। और आज विशेष कार्यक्रम रहेगा स्पेशल प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट फीडिंग वीक, महत्वपूर्ण विषय है। और आज के विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर रमेश अग्रवाल, हेड न्यूबॉर्न डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स न्यू दिल्ली से। आपको फोन नंबर जल्दी से बता देती हूं जिन पर संपर्क आप कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा लैंडलाइन नंबर 011 हमारा दिल्ली का एसटीडी कोड रहेगा, और नंबर है 2342-1080 और 2342-1082। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा 9868107070 9868107070। तो साथियों, ऐसे ही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर हर घंटे विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिनमें होती है बहुत सी जानकारियां। देश दुनिया के बारे में जानते हैं, अपने शहर के आसपास के बारे में जानते हैं, और साथ में बहुत सी और भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, लेकिन हमें जानना जरूरी होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे काम जरूर आती है। और देखिए, म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है जिसको हम बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से साइड में नहीं कर सकते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो म्यूजिक भी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आपको हर घंटे मिलता है, जहां एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट का। और अब हमें आपसे लेनी होगी अनुमति, क्योंकि जाने का वक्त आ गया है। और चलते चलते एक प्यारा सा गाना मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, शाहरुख खान की फिल्म है, उन्हीं का गाना है। गाना कौन सा है बताऊंगी आपको, लेकिन आपको ये तो बता दें कि अगले घंटे आप क्या सुनेंगे। तो ठीक 9 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद 9 से 10 के बीच में सुनिएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। निशा आज इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। और देखिए, आज किशोर कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उन्होंने कहा था पिछले शो में कि 3 गाने जो पुराने जमाने के बजेंगे, वो तीनों ही गाने किशोर साहब को डेडिकेटेड होंगे। सो आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। क्या मजेदार गाने वो चुनकर लाएंगी, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है। और आप सभी क्या करेंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और हाँ, अपने आसपास सफाई जरूर बनाकर रखेंगे। ये देश, ये सड़कें, ये शहर, ये हमारा घर है, हमें ही इसको साफ और स्वच्छ और निर्मल रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ नेहा को दे अनुमति, नमस्कार।

102.6 FM पर अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो को हटाने के मुद्दे पर मेटा की आलोचना की है। समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की है। एनडीए संसदीय दल की आज नई दिल्ली में साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें हाल के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। रेलवे ने इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 14 करोड़ 13 लाख टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में यह 12 करोड़ 97 लाख टन की थी। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हो रही है। भारत और उज्बेकिस्तान ने महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में 2 पहिया सड़क एम्बुलेंस शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थी इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो के साथ आपका ये मंगलवार का दिन मंगल में जा रहा है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर मैं निशा यहाँ पहुंच गई हूँ। और आज जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे प्यारे किशोरदा का जन्मदिन है, तो आज हम उनकी ही इस बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए तीन खास रेट्रो गीत उन्हीं के चलाएंगे, थोड़ी उनकी बातें करेंगे कि किस तरह सेट्स पर वो शैतानियां करते थे, डायरेक्टर्स को परेशान करते थे, या फिर कहें अपने उसी मजाकिया अंदाज में वो हमेशा दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश में ही लगे रहते थे और खुद भी हमेशा खुश रहते थे। तो बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने अपने गानों के माध्यम से हमें दिए, तो बस उसी पर बात करेंगे। फिलहाल आप बैक टू बैक गुड म्यूजिक एंजॉय कीजिए, दिल के तरारे गाने नए पुराने में।

दो अगस्त की तारीख है और आज की तारीख में भी अगर किसी से पूछे कि आपका पसंदीदा सिंगर कौन है तो बहुत सारे लोग बिना झिझक के किशोर कुमार साहब का नाम लेंगे। पहला तू, दूजा भी वही, तीजे भी वही और चौथे भी वही। आज हमारे प्यारे अपने किशोर दाजी की बर्थ एनिवर्सरी है तो उन्हीं के तीन खास रेट्रो गीत आपके लिए लेकर आई हूँ और पहला गाना बिल्कुल तैयार है प्ले होने के लिए। लेकिन थोड़ी सी किशोरदा की बात, मतलब मेरे पास एक बड़ी मोटी सी किताब है, सिर्फ किशोरदा के बारे में नहीं है, पूरी उस समय की जो फिल्मी गीत है, जो कलाकार थे, जो लिरिसिस्ट थे, उनके बारे में वो किताब है। उसके अंदर किशोरदा को लेकर भी बहुत सारे किस्से मैंने हमेशा पढ़े हैं, इंजॉय किए हैं। और उसके साथ साथ एक बार उनके किशोर कुमार साहब के बड़े भाई अशोक कुमार जी की एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि बचपन से किशोरदा की आवाज़ हमेशा ऐसी इतनी सुरीली नहीं थी। हाँ, उन्हें बचपन से गाने का शौक ज़रूर था, इसीलिए वो अपना गला खोल कर गाया करते थे, लेकिन एक बार गलती से वो सब्जी काटने की दराती होती है ना, वो उनके पाँव पर पड़ गई और उसकी वजह से उनकी पाँव की उंगली कट गई। अब डॉक्टर ने उंगली का इलाज तो कर दिया लेकिन दर्द नहीं गया, और इसी लिए कई दिनों तक जब वो जोर जोर से रोते रहे, इसके चलते ही किशोरदा का ऐसा रियाज हुआ कि उनकी आवाज ही बदल गई और अब उनके गीतों को हम एंजॉय करते हैं। और अलग अलग जॉनर में इन्होंने गाने गाए, जब भी वो

चाहे मस्ती भरा गाना गाते थे तो हमें मस्ती फील होती है, और अगर इंस्पायरिंग सॉन्ग जब भी उन्होंने गाए तो हमें इंस्पायर किया, और रोमांटिक गानों में तो उनकी बात ही क्या थी। इसीलिए अभी अजनबी फिल्म का एक बड़ा ही रोमांटिक गाना मुझे इस वक्त मेरी प्लेलिस्ट में है, आपके लिए लेकर आई हूँ। तो किशोर दा की आवाज़ में गाना एंजॉय कीजिए, फ्रॉम द मूवी अजनबी। शक्ति सुमंता ने फिल्म बनाई थी और संगीत था आर डी बर्मन साहब का।

0: बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

और हमारे हिंदी सिनेमा के आवाज के जादूगर किशोर दा को भी इसी तरह सराखों पर आपने बिठाया और बहुत सारा प्यार किया। बेशक वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन उन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मीडिया अटेंशन भी अच्छी नहीं लगती थी और एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते थे। इंटरव्यूज देने में भी अच्छा नहीं लगता था उनको, और डायरेक्टर्स के साथ तो आए दिन कोई ना कोई नोकझोंक इनकी चलती ही रहती थी। एक शॉट के बारे में तो मैंने पढ़ा था जब ये शूटिंग कर रहे थे कि कार में बैठने का शॉट था और वो सिर्फ किशोर साहब कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले थे क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए बोला ही नहीं था। अब इस फिल्म के एक और कार सीन था जो जब डायरेक्टर ने समझाया कि आपको थोड़ी दूरी तक कार लेकर जानी है और फिर उससे उतर जाना है और सीन कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन किशोर दा कार से उतरे ही नहीं। उधर डायरेक्टर बेचारा इंतजार करते रहा काफी लंबे समय तक। अगले दिन पता चला कि वो कार से चलते चलते खंडाला ही चले गए थे। तो ऐसे थे हमारे शोरदा। अब इन्हीं की एक और खास फिल्म का गाना लेकर आई हूँ। द नेम ऑफ द फिल्म इज मेरे जीवन साथी। इसमें हमारे राजेश खन्ना साहब थे और साथ में नूतन की जोड़ी थी। यस, आर डी बर्मन का संगीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। अब मैं अपनी बोल बंद करती हूँ और गाना आपको सुनवाती हूँ।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम, वेलकम बैक. मैं निशा हूँ आपके साथ में. आप सुन रहे हैं दिल के तहराने, गाने नए पुराने, यस बैक टू बैक म्यूजिक आप एंजॉय कर रहे हैं. और साथ ही साथ आज 4 अगस्त के दिन हमारे किशोरदा का जन्मदिन है, आज उनके बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम उन्हीं के गाने आपको मैंने सुनवाए. और अब मुझे अपनी प्लेलिस्ट में नजर आ रहा है ये आखिरी रेट्रो गीत, विच इज फ्रॉम द मूवी मिस्टर इंडिया. आज पता है पूरा टाइम मेरे साथ क्या हुआ है, मोस्टली जब भी हम गानों को देखते हैं तो हमें उनका वीडियो और सुनते हैं गानों को स्पेशली, तो हमें गाने का वीडियो फ्लैश होता है दिमाग में, एक्टर एक्ट्रेसेस दिखाई देते हैं या फिर जो भी एटमॉस्फेयर रहा होता है गाने का वो सब नज़र आता है अपने गाने को सुनते हुए. लेकिन आज जब भी किशोरदा के गाने मैंने प्ले किए और जब भी उन गानों को सुना तो उनकी आवाज़ सुनकर सिर्फ और सिर्फ किशोरदा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया. और अब फिर से ऐसे ही होने वाला है. यस, तो आज इनके जन्मदिन के दिन हम इस खास सिंगर को याद कर रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों यादगार गाने गाए हैं, जो आज तक हर उम्र के लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है. इनकी एक्टिंग की बात करें, सिंगिंग की बात करें, या फिर इनकी जो वो अनोखी पर्सनालिटी थी ना हिंदी सिनेमा का, इन सब चीज़ों ने इन्हें एक ऐसा सितारा बना दिया था जिसकी चमक समय के साथ साथ बढ़ती ही गई. और यही ही वजह थी कि उनके जन्मदिन पर ख़ास तौर पर डेडिकेटेड ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने प्यारे किशोरदा को, और वही किशोरदा जो खंडवा वाले थे.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ओके 102.6 एफएम रेनबो, दिल के थराने, गाने नए पुराने में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आवर भी आपके लिए बिल्कुल रेडी, एकदम थाली में परोस के जैसे देते हैं ना, तो आप मैचलेस म्यूजिक आवर एंजॉय कीजिएगा आदिति बिष्ट के साथ में ठीक 10 बजे के बाद से। तो मैं यहाँ से फिलहाल जा रही हूँ, दिल्ली का वेदर फिलहाल अच्छा बना हुआ है भाई, 30 के आसपास है, और यहाँ सेंट्रल दिल्ली में सुबह तो बहुत बादल छाए हुए थे लेकिन अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। यस, बस दिल्ली और भारतवर्ष में अलग अलग इलाकों में तेज और हल्की बारिश हो रही है, तो बस सावन का जो ये महीना है ना, ऐसे ही बिल्कुल आप एंजॉय करते रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स टू मैशर्स म्यूजिक आवर ऑन 102.6 FM रेनबो। अमदिति एंड वेल हियर इज आवर नेक्स्ट सॉन्ग बाय ओसी बीसा। इट्स कॉल्ड सनशाइन डे। हियर इट कम्स।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान

बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। एनडीए संसदीय दल की आज नई दिल्ली में साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक में भाग ले रहे हैं। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर तथा राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मुद्दे पर मेटा की आलोचना की है। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। रेलवे ने इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 14 करोड़ 13 लाख टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में ये 12 करोड़ 97 लाख टन की थी। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में हो रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में दो पहिया सड़क एम्बुलेंस शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रही है। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: लाइफ बिंदास, जरा रेनबो स्विच तो करो। और ये बात आप पर लागू नहीं होती क्योंकि आप तो ऑलरेडी रेनबो सुन ही रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक स्विच ऑन नहीं किया है उनको बोलिए कि अगर अपनी लाइफ बिंदास करनी है ना तो आकाशवाणी रेनबो स्विच तो करो और देखो आपकी लाइफ कितनी बिंदास हो जाती है। और जब बॉलीवुड की बात हो तो वैसे ही बिंदास बातें शुरू हो जाती हैं और ये वही वक्त है यानी बॉलीवुड रील्स का, वो भी बिंदास बबीता त्रिपाठी के साथ। यानी बीटी विद बीटी स्टार्ट हो चुका है। आप कहाँ हैं? बुलाइए अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने अपने परिवार वालों को, इकट्ठा हो जाइए और ध्यान से सुनिए बीटी विद बीटी।

मैं आपसे क्या कह रही थी कि आपको क्या करना है, आकाशवाणी रेनबो सुनना है, बीटी विद बीटी सुनना है, लेकिन हाँ ध्यान से सुनना है, कम से कम 11:30 बजे तक तो ध्यान से ही, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। पता है कौन सा काम? आपको बॉलीवुड सरताज बनना है, और उसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि उसका जवाब उसी में छुपा होगा। सवाल पूछूंगी 11:30 बजे, और उस छोटे से सवाल का बड़ा बढ़िया सा सुंदर सा और छोटा सा जवाब अगर आपने दे दिया तो आप बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं और हमसे बात करने का मौका मिल सकता है। और ये मौका तभी होगा जब आप सही जवाब देंगे, और सही जवाब देने के लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। जो बॉलीवुड की बात बताऊंगी ध्यान से सुनना होगा, बस आंसर दे देंगे, व्हाट्सएप मैसेज करना है एकदम फ्री, और बस नाम तो शामिल होगा ही। अगर आपको लग रहा है कि बॉलीवुड सरताज सभी थोड़ी ना बन जाएंगे, एक ही बनेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कौन सा मैं बनने वाला हूँ, तो क्या पता आप ही बनने वाले हों। और रही बात आपके नाम शामिल होने की, उसकी तो पूरी गारंटी है अगर आपने जैसा मैंने कहा है वैसा ही आंसर किया तो, यानी अपना नाम, अपने शहर का नाम, और फिर आंसर और नंबर बताऊंगी तभी आपको भेजना है। फिर आप यही कहेंगे

0: अजी ये तो पक्की बात है कि आप हमारे ही हैं, आकाशवाणी रेनबो के ही हैं, और रेनबो को इतने ध्यान से सुनते हैं तो आप छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आपको इंतजार है उन खबरों का जिनको आपको ध्यान से सुनना है और उन्हीं में छुपा होगा आज के सवाल का जवाब भी। तो आप कहीं मत जाइए, मिस बिल्कुल मत करिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, लौट कर आती हूँ, आप इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए

0: रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल

0: ये आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और मेरे पास है बहुत सारी खबरों का भंडार बॉलीवुड की, और बॉलीवुड की जो खबरें हैं ना उनको आपको ध्यान से सुनना है। लगभग 11:30 बजे के बाद आपके लिए एक सवाल आएगा, 11:30 बजे ही पूछा जा सकता है, और उस सवाल का जवाब अगर आपने दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। फिलहाल आपको बता दूं, आपको शायद पता हो कि आरडी बर्मन पर एक बायोपिक बन रही है, और इस बायोपिक में एक एक्टर हैं जो अभी शामिल होने की जिनकी चर्चा गर्म है, और वो एक्टर कौन से हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बिल्कुल बताने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि वो हमारे भी दिल के बिल्कुल करीब हैं, हम सब के दिल के बिल्कुल करीब हैं। और खिलाड़ी कुमार को हम सब हमेशा से बहुत अप्रिशिएट करते आए हैं, किसी भी फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो अलग ही ऑरा बन जाता है उनका, है ना। और कुछ इसी तरह की बात अब इस फिल्म के लिए चर्चा में है कि इस एक्टर की इस फिल्म में एंट्री होने वाली है। वैसे फिल्म का अभी नाम क्या होगा फाइनल नहीं है, लेकिन इस फिल्म की चर्चा गर्म है, क्योंकि आरडी बर्मन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और इस फिल्म से पहले ही फरहान अख्तर जुड़ चुके हैं और इस जो लीड रोल है यानी इस कैरेक्टर को वो निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो नाम जुड़ा है वो है अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी कुमार का। ये है आज की बड़ी खबर, और अब इस खबर पर मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन ये अभी तक मामला सामने आ चुका है और इस मामले पर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्या पता कैमियो रोल में ये नजर आए, क्योंकि डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, और नीरज पांडे के साथ अक्षय कुमार की दोस्ती गहरी है, और इस डायरेक्टर के साथ वो पहले भी काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, तो अब देखते हैं किस तरह के कैरेक्टर में वो नजर आते हैं, कितना बड़ा उनका कैरेक्टर होगा ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, शाहरुख अक्षय कुमार इस फिल्म में एंट्री लेने वाले हैं, ये खबर है। तो फिलहाल सौदा खरा खरा ही लग रहा है ना।
1: स्लो

एक फिल्म ओह माय डॉग रिलीज होने वाली है और आप सबको इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर बॉलीवुड ट्रेल्स आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता ही है कि पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में है। और ये फिल्म रिलीज होने वाली थी 31 जुलाई को ही, लेकिन अब ये फिल्म टल गई है, थोड़ा आगे बढ़ गई है। और ये आगे बढ़कर कहाँ गई है, 7 तारीख इसकी रिलीज डेट है, यानी अब बस 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगी। ओह माय डॉग फिल्म का नाम इंटरेस्टिंग है और बातें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी जिसने देख ली है, कुछ लोगों ने जो देख ली है, सिलेक्टेड लोगों ने, उन्होंने ऐसा कहा भी है सोशल मीडिया पर कि बहुत अच्छी मूवी है, छोटे बच्चों को भी दिखाने लायक ये मूवी है और ऐसी मूवी है जिसके बारे में जो बहुत कम बनती हैं। और एक बात और जो इस मूवी की आई है वो है कि इस फिल्म में एक गाना है जो रिक्रिएट किया गया है। और गाना कौन सा है जानते हैं? छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, डिबी डिबी डप डप। मुझे बड़ा पसंद है गाना और मैंने बहुत गाया है बचपने में इस गाने को। और जब इस गाने की चर्चा हुई और ये सुनने में आया कि ये गाना इस फिल्म में एंट्री मार रहा है कुछ नए ट्विस्ट के साथ, तो मुझे तो मौका मिल गया इस गाने को फिर से सुनने का और इसकी बात बताने का। अब आपको मौका मिला है इस फिल्म को देखने का, तो 7 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो जाएगी सिनेमाघरों में, आप देखिएगा। फिल्म में पंकज त्रिपाठी हैं, पवन मल्होत्रा हैं, राजेश कुमार हैं, गीता अग्रवाल हैं, विजय मिश्रा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। साथ में 250 से ज्यादा डॉग्स भी नजर आएंगे। देखने नहीं जाएंगे?

अरब जब ये गाना चलता है तो हमेशा एक देसी गर्ल याद आती है और वो है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा अब नई फिल्म में आ रही हैं और कौन सी उनकी आने वाली फिल्म है हम सब जानते हैं, वाराणसी मूवी में वो आ रही हैं। SS राजामौली की मूवी है और ग्रैंड मूवी है। इसके बारे में बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं और जो बातें निकल कर आ रही हैं वो भी ग्रैंड ही हैं। फैंस वाराणसी का हमेशा से इंतजार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और SS राजामौली जिस मूवी में हो, महेश बाबू जिस मूवी में हो, उस मूवी का इंतजार ना हो ऐसा हो कैसे सकता है। और पृथ्वी सुकुमारन, ये सब बड़े बड़े स्टार्स हैं और इन सब को एक साथ देखना बड़ी बात होगी। और रही बात इस फिल्म की, तो जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने जो कहानी पर से थोड़ा सा पर्दा उठाया है ना, वो जबरदस्त है कि अलग अलग महाद्वीपों की सैर कराएगी ये मूवी और यहाँ तक कि पिछले समय में ले जाएगी, प्राचीन रोम में के भी दर्शन कराएगी ये मूवी। और ऐसे में क्यूरियोसिटी हम सबकी बढ़ गई है कि आखिर इस मूवी में हमारी देसी गर्ल कर क्या रही है।

तो अब देसी गर्ल की बात हो गई और इसी के साथ समय भी हो गया इस बात का कि आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए और जिसका जवाब आपने अगर सही दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कितनी छोटी सी बात है, और बॉलीवुड सरताज हमसे बात करने का आपको मौका मिलेगा अगर आप बन गए तो। और अगर नहीं भी बने तो आपके नाम जरूर शामिल होंगे अगर आपने वैसे ही आंसर किया जैसा मैं कह रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने शहर का नाम लिखना है, उसके बाद जो नंबर बोल रही हूँ उस पर भेज देना है, लेकिन आंसर जरूर लिखना है। आंसर लिखे बगैर काम कैसे चलेगा भाई। तो आपको सवाल पूछा जाएगा तभी तो आंसर लिखेंगे। तो लीजिए सवाल हाजिर है। मैंने बोला था आर डी बर्मन पर एक बायोपिक बन रही है और इस मूवी में फरहान अख्तर लीड रोल में है और अक्षय कुमार की एंट्री हो गई है, ये बताया था ना, सब कुछ बताया था। तो पूछना क्या है, पूछना ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, बस इतनी सी बात है, उनका नाम लिखना है आपको। आर डी बर्मन पर जो आने वाली बायोपिक है उसके डायरेक्टर का नाम क्या है, ये आज का सवाल है जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और उसके लिए आपको नंबर चाहिए होगा व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए, तो नंबर है 9868107070 9868107070। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी।

0: सूचना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।

ये आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और बीटी विद बीटी में, यानी बबीता त्रिपाठी के साथ अगर आप बॉलीवुड ट्रेल्स सुन रहे हैं तो बीटी विद बीटी हुआ ना, तो अब बीटी विद बीटी में समय है ये बताने का कि बंटवारा 1947 ये जो मूवी आने वाली है ना 14 अगस्त को, क्या जबरदस्त इसकी प्रमोशंस चल रही हैं, सारी टीम लगी पड़ी है और सिनेमाघरों में आने से पहले मुझे लगता है कि क्या कुछ हमें पता चल जाएगा और उनके आने वाले जो प्लान्स हैं ना इस टीम के वो भी पता चल रहे हैं। इस प्रमोशन के दौरान ही सनी देओल ने एक राज खोला है और वो राज ये है कि वो अपने बेटों को लेकर एक मूवी बनाने वाले हैं और ये पीरियड फिल्म होगी और इस ड्रामा में ना सिर्फ सनी देओल होंगे बल्कि उनके दोनों बेटे भी होंगे और वो दोनों बेटे किस तरह के किरदार में होंगे ये सब तो नहीं बताया, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो करने वाले हैं और उस पर प्लानिंग उनकी चल रही है कि जिसमें उनके दोनों बेटे रहें और महान सम्राट अशोक के किरदार पर ये मूवी बनाना चाहते हैं। इतना तो उन्होंने बता दिया है, अब अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, कब होगा, कितना होगा और उनके बेटे दोनों होंगे या नहीं होंगे उस प्रोजेक्ट में, ये सब जैसा भी होगा आता रहेगा, लेकिन ये उन्होंने अपनी विश जाहिर की है और इस पर प्लानिंग वो कर रहे हैं तो ज़रूर होगा ऐसा हम कह सकते हैं। फिलहाल तो हम बंटवारा 1947 का इंतज़ार करते हैं जिसके बारे में काफ़ी चर्चा गरम है, काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, फिलहाल हम बताएंगे नहीं, ये गाना सुनवाएंगे और लौट कर आएंगे अगली खबर पर। आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी।

ओफो, आज किसका बर्थडे है वो जानना नहीं चाहेंगे? यस, आज है अरबाज खान का बर्थडे। हम आपको वैसे ही बता देते हैं, और अरबाज खान जो कि 1996 से एक्टिव है हमारी फिल्मों में, दरार फिल्म से इन्होंने एंट्री मारी थी और अपनी एक पहचान बना ली उस दरार के बीच में। और ये जो मूवी थी ना, वो साइकोटिक मूवी थी, कैरेक्टर की मूवी थी जिसमें उन्होंने साइकोटिक एक कैरेक्टर निभाया था जो अपनी वाइफ को पीटता रहता है। और उसके बाद जो शुरुआत हुई नेगेटिव रोल्स की, एक के बाद एक उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या, और उसके बाद गर्व, प्राइड एंड ऑनर जैसी तमाम मूवीज में वो आए, और साथ में वो अपनी पहचान बनाई जो बड़ी मूवी से। उसकी बात करने के पहले बता दूं, कॉमेडी मूवीज में भी वो दिखे थे, हलचल मूवी इसकी गवाह है, और माला माल वीकली है, भागम भाग है, इसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए, अपनी पहचान उन्होंने बनाई। और शूट आउट एट लोखंडवाला को हम कैसे भूल सकते हैं, फूल एंड फाइनल को कैसे भूल सकते हैं, और साथ में जाने तू या जाने ना जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी इन्होंने दी। और अब रही बात एक ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसके वजह से हम सब जबरदस्त इनको जानते हैं, ना सिर्फ एक्टर के तौर पर बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर भी, क्योंकि अपने घर के प्रोडक्शन हाउस में ये मूवी बनी थी दबंग, और उसमें उन्होंने जो जबरदस्त भूमिका निभाई, पहचान बनाई, वो हम कैसे भूल सकते हैं। मासूम सा कैरेक्टर लेकिन बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर और बहुत अहम कैरेक्टर इस मूवी में इनका था, और इनको आज जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं, और साथ में कहते हैं अरबाज खान ऐसे ही आप अपने सफलता के परचम लहराते रहिए, हमारा एंटरटेनमेंट करते रहिए, और हम सब का की दुआएं लेते रहिए अपने जन्मदिन पर खासतौर से। तो आकाशवाणी रेनबो की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं अरबाज खान को। ये गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं और एक बार सवाल

बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी चल रहा है आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर। आपसे सवाल दोहरा देती हूँ ताकि आपने अगर सही जवाब नहीं दिया है तो दे दीजिए ना। आर डी बर्मन पर बन रही बायोपिक के निर्देशक का नाम क्या है, यही तो सवाल पूछा है। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो भी, नहीं सुना तो भी क्या पता आपको पता ही हो। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9868107070 पर। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखना है, भेज दीजिए 9868107070 पर, क्योंकि नाम पढ़ने का सिलसिला बस इस गाने के बाद। फिलहाल ठुमका लगाइए।

देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि आप सबके नाम शामिल करना तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था जरूरी है ही। तो फटाफट आप सबके नाम जिन्होंने जवाब दिया है, कई बार अधूरा जवाब दिया है, कई बार गलत दिया है और ज्यादातर सही दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है उनका नाम शामिल जरूर होगा। हैरी सिंधु बठिंडा से लिख रहे हैं, कान्हा मेरठ से लिख रहे हैं, सलीम मलिक यूपी से लिख रहे हैं, वो भी मेरठ में ही आता है। और नेक्स्ट मैसेज सुरजीत का है, कहाँ से लिख रहे हैं भाई सुरजीत, ये मुझे दिख नहीं रहा है। मिसेज धर्म भाटिया का भी मैसेज दिख रहा है, मिसेज धर्म भाटिया रोहतक से लिखती हैं और सही जवाब के साथ लिखती हैं। हरीश गौर मेरठ से लिख रहे हैं, बसंत तोमर मेरठ से लिख रहे हैं, दानिश खतौली से लिख रहे हैं और सही जवाब, रवि जोशी मेरठ से लिख रहे हैं, मेरठ वाले पूरे एकदम से सही जवाब के साथ ही आ रहे हैं। और नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद फरकान सियाल मेरठ से भी, मेरठ से ही सारे लोग सुन रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, लेकिन क्या आप बताएं, इतने दिल से मुझे लगता है मेरठ वाले ही सुनते हैं। विनोद सोनी मेहना चौक भटिंडा से लिख रहे हैं, मोनीश कहाँ से, उत्तर प्रदेश बिलासपुर से, तनुज शाह महाराष्ट्र से, और नेक्स्ट मैसेज उमेश कुमार खयाला से, और पूजा एंड कोमल दिल्ली से लिख रहे हैं, और अगला मैसेज जो फॉलो नहीं किया रूल को, मतलब सबसे पहले अपना नाम लिखना चाहिए था ना, आपका नाम कहीं नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सही जवाब है। भटिंडा से संदीप भट्ट का मैसेज भी दिख रहा है, निकिता पारेकर पुणे से, आशु लखनऊ से, यशपाल द्वारका से, और अगला मैसेज किसका है भाई, ये है सोनिया का मैसेज, कंचन सोनिया विहार से लिख रही हैं, और ये नाम भी इनका नाम जगह का नाम जैसा सेम कर रहा है, क्या करें। और ये सोनू सैनी का कहाँ से मैसेज दिख रहा है पता नहीं। प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी दिल्ली से, मनोज का भी मैसेज दिख रहा है लेकिन कहाँ से ये नहीं दिख रहा है, पुष्पेंद्र मेरठ से लिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब लिखा हो या नहीं लिखा हो, दिल से आपने कोशिश की है इसके लिए बहुत धन्यवाद, और ज़्यादातर लोग सही जवाब के साथ ही आंसर भेज रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। फिलहाल लौट कर आती हूँ बॉलीवुड सरताज, देखती हूँ आज कौन बनता है, ढूंढ कर लाती हूँ।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ यानी बीटी विद बीटी और हमारे साथ हैं आज के बॉलीवुड सरताज। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुरजीत घोषाल बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से।
0: सुरजीत जी, आपकी आवाज थोड़ी मुझे कम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी आवाज मतलब थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा।
1: अभी, क्योंकि अभी आ रहा, क्लियर, अभी क्लियर आ रहा, प्रॉब्लम क्लियर है अभी मैम। हेलो
0: सुरजीत, आप क्या करते हैं?
1: हाँ मैं मैम एज ए मेंटर जो है कॉलेज के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उनको सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देता हूं उनको कि किस तरह से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कोलाबोरेशन स्किल्स, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कैसे आप डेवलप करना बहुत जरूरी है आपके लिए फॉर फ्यूचर कैरियर के लिए और जॉब में भी, जॉब पाने के लिए भी इंटरव्यू के दौरान ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, ये तो मतलब सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है।
1: राइट मैम, बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि जब भी रिक्रूटमेंट हम करते थे, जब मैं जॉब में था एज ए रिक्रूटर, ये देखता था ये गैप काफी, जबकि ग्रेजुएट होते थे, सब कुछ क्वालिफिकेशन भी है उनके पास, एजुकेशन, लेकिन जहां बात करनी होती है, जहां क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, वो ठीक से जवाब दे नहीं पाते थे। कम्युनिकेशन में काफी गैप लगता था। हमने कहा इस गैप को अगर हम ब्रिज कर दें तो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं कैरियर में।
0: वाओ, ये तो बहुत अच्छा काम है। और इस अगर किसी बच्चे को ऐसी जरूरत है तो मुझे लगता है आपसे कांटेक्ट कर सकता है कि सही कह रहे हैं सुरजीत जी।
1: हाँ मैं तो यही काम कर रहा हूँ इस समय, मेरे लिए पूरा टाइम डिवोट कर देता हूँ उनके साथ, वर्कशॉप के थ्रू उनको ट्रेन करता हूँ जिससे उनको अच्छा लगता है। मुझे लेक्चर मोड में नहीं होता, खुद पार्टिसिपेट करते हैं, खुद करते हैं, तो उनका समझ में आता है कि हमारा स्किल ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हो रहा है।
0: ग्रेट, अब आ जाते हैं आज के बॉलीवुड सरताज के लिए। जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब आपने वैसे आंसर तो सही किया है, लेकिन एक बार फिर से आपसे सुन लेते हैं कि आज जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है।
1: हाँ, जवाब
0: था आरडी बर्मन पर जो बायोपिक बन रही है उसके निर्देशक का नाम क्या है।
1: हाँ मैम, उसके निर्देशक का नाम नीरज पांडे है।
0: नीरज पांडे, बिल्कुल सही जवाब। और आपने जैसा बताया कि आप शो सुनते वक्त ही आपको पता चला है।
1: हाँ हाँ, ये अब कभी कभी, क्योंकि मैं काफी आरडी बर्मन का तो वैसे ही पुराना उनके।
0: अच्छा, तो बायोपिक आएगी तो सबसे पहले आप ही जाएंगे देखने के लिए।
1: बिल्कुल, जरूर
0: पहला शो आप ही बुक करेंगे।
1: जरूर देखूंगा मैम, जरूर देखूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कॉन्ग्रेचुलेशन आज के बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय
1: बाय बाय बाय।
0: इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत, लौट कर आऊंगी 1 बजे आपसे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि रेनबो हेल्पलाइन का समय होगा और मेरे साथ होंगी हमारी एक्सपर्ट जो कि आज बात करेंगी ओरल हेल्थ केयर पर। तो इस शो को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी समस्याओं को बताना भी मत भूलिएगा। आपके आसपास या आपके परिवार में भी ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप अपने सवालों के साथ ज़रूर जुड़िएगा। और नंबर उसी वक्त बताऊंगी जिस पर आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप मैसेज करना है। और हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी डॉक्टर सोनिया दत्ता जो कि प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हैं, तो उनसे अपना सवाल का जवाब आप ले सकते हैं और इस शो को बिल्कुल

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद में आज महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक और राज्यसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश होगा। संसद की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक 2 बजे तक स्थगित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर मॉनसून सत्र बाधित करने का आरोप लगाया। कहा, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की। दिल्ली यातायात पुलिस ने चेहल्लुम जुलूस के मद्देनजर आज दोपहर 2 बजे से दक्षिणी दिल्ली में कई मार्गों पर विशेष यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किए। ओडिशा में बाढ़ के हालात में सुधार, नदियों का जलस्तर घटा, अगले 2 दिनों के लिए फिर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अमेरिका के 25 डेमोक्रेट शासित राज्यों ने भारत समेत 60 देशों पर नए शुल्क लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को अदालत में चुनौती दी। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर रेनबो हेल्पलाइन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी रेनबो और शो है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। और आज किस विषय पर बात करेंगे? आज बात करेंगे ओरल हेल्थ केयर पर। ओरल हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है और हम सबको पता है कि अगर हम स्वस्थ हैं, बॉडी का एक एक पार्ट स्वस्थ है, तभी हमारी लाइफ एकदम स्मूथ और खुशी से चलती है। और जब खुशी होती है तो स्माइल करते हैं, और स्माइल तभी पॉसिबल है जब आपका जो ओरल हेल्थ है वो बढ़िया है, एकदम चमक है। और दांतों की खास तौर से बात कर रहे हैं जब ओरल हेल्थ पर बात करते हैं, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, कई बार समझ में ही नहीं आती कि क्यों हो रही हैं और इसका इलाज क्या है, क्या कोई इलाज है, कोई रेमेडी है जो घर पे ही हो सकती है। ऐसी तमाम बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन क्योंकि हमें कोई एक्सपर्ट गाइड करने वाला नहीं होता तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को बढ़ाते नहीं हैं, आज हम एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका समाधान कैसे पाया जा सके। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सोनिया दत्ता, जो कि प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हैं। तो उनका सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। तो सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद बबीता जी।
1: तो आज डॉक्टर सोनिया आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके ओरल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फटाफट कॉल लगाइए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल इन तक पहुंचा दीजिए और उसका समाधान पाइए। नंबर्स हैं फोन करने के लिए 2342-1080 या 2342-1084। और दिल्ली या दिल्ली के बाहर से, दिल्ली एनसीआर से कॉल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही नंबर है 2342-1080, 2342-1084, जिसको आपको डायल करना है। और अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, इन नंबर से पहले 011 लगा देना है, बस आपका सोल्यूशन हो गया, कॉल यहाँ तक पहुँच जाएगी और अब आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंच जाएगा हमारे एक्सपर्ट द्वारा। तो फिलहाल आपके पास एक ऑप्शन और है जो हमेशा की तरह है, व्हाट्सएप मैसेज करने का, जिसमें आप अपने सवाल लिखकर भेज दीजिए और शो के दौरान सुनिए, वेट करिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। नंबर है व्हाट्सएप करने के लिए 9868107070, 9868107070। वैसे तो मन कर रहा है कि एक गाना चला दूं, लेकिन सबसे पहले ओरल हेल्थ केयर का मतलब समझ लेते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है ये जान लेते हैं डॉक्टर सोनिया से। जी सोनिया जी,
2: जैसा आपने बताया प्रोग्राम के शुरू में ही बबीता जी, ओरल हेल्थ का मतलब केवल दांत नहीं है। हम दांतों के आसपास मुंह को, जिसे हम ओरल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, दांत हैं, लिप्स हैं, जबान है, तालू है, मसूड़े हैं,
1: बिल्कुल
2: ये जबान के नीचे की जगह है जिसे फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं। हम अभी और आगे प्रोग्राम में उसमें भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब बताएंगे हम। इसके अलावा आपने बोला कि ओरल हेल्थ का पूरे शरीर से बहुत ही गहरा कनेक्शन है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। अगर दांतों में समस्या है तो आंतों में समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग, लंग्स, प्रेगनेंसी, बुढ़ापा, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, उसी तरह से अगर इन सब स्पेशल एज ग्रुप्स हैं या जो ये समस्याएं हैं इनमें कोई हम इलाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मगर बीमारियां हैं तो इसका असर दांतों पे पड़ेगा। तो दांतों का असर शरीर के अन्य अंगों पर, और अन्य अंगों में कोई परेशानी हो रही है तो उसका असर दांतों पर, मसूड़ों पर, मुँह पर, मुँह में छाले होना, मुँह सूखना, ये सब हम ओरल हेल्थ केयर को एक ब्रॉडली बोल सकते हैं।
1: ओके, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि ओरल हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, हम बाकी चीजों का इलाज कर रहे होते हैं।
2: इसका सबसे मुख्य कारण बबीता जी ये है कि ओरल हेल्थ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती।
1: अच्छा,
2: ईश्वर ना करे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे ओरल कैंसर्स हैं या कोई एकदम से लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं।
1: अच्छा।
2: लेकिन कॉमनली ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग। इसके लक्षण जो है वो धीरे धीरे धीरे उभरते हैं। तो तब तक कई बार तो मरीज को, इंसान को तब पता चलता है कि हमारे मुंह में, दांतों में, मसूड़ों में समस्या है, जब अति हो जाती है।
1: बिल्कुल। और जो आपने कहा ना कि कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो मुंह पर किसी ना किसी फॉर्म में दिख जाती है, तो जो जनरली जो देखने को मिलता है वो मुंह में छालों का है। मैं सोच रही हूँ मैं भूल ना जाऊं इस वजह से अभी ही पूछ लेती हूँ कि ज्यादातर जो होता है ना पेट गड़बड़ है तो मुंह पे छाले आ जाते हैं, तो पेट में किस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मुंह में छाले आते हैं?
2: देखिए पेट में गड़बड़ है इसका, पेट में कीड़े हैं या कॉन्स्टिपेशन है या कोई आप दवाइयां ले रहे हैं जिनका साइड इफेक्ट्स है कि मुंह में छाले हो जाएं। मुंह में छाले होने के सिर्फ पेट ही नहीं, आप जैसे मुंह सूखना है, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है और हमारे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत से मरीज हैं डायबिटीज के, जिसकी वजह जिसमें एक परेशानी होती है सेलाइवा जो थूक होता है वो कम बनता है, तो मुंह में ड्राइनेस होती है जिसे हम ड्राई माउथ कहते हैं। इस वजह से ना केवल मुंह में छाले दांतों की भी अन्य समस्या कीड़ा लगना सेंसिटिविटी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा टोमैटिक अल्सर्स जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस अल्सर्स हैं, तो मुंह में छालों के तो बहुत सारे कारण हैं।
1: मुंह सूखने वाली बात कही तो कई बार ऐसा होता है कि ये लक्षण देखने को मिल रहा है कि मुंह सूख जा रहा है तो हमें लगता है कि पानी पी लेते हैं शायद डिहाइड्रेशन है, तो क्या ये कारण ही हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकता है?
2: देखिए कॉमन हमें जब भी कोई समस्या हो तो उसका कॉमन कारण ही सोचना चाहिए, कारण चाहे बहुत ज्यादा एंड तक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग और कई गंभीर समस्या भी हो सकती है। तो मुंह सूखने का सबसे बड़ा कारण ही यही है डिहाइड्रेशन। लेकिन इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्ट्रेस है, हार्मोनल चेंजेस हैं, इनसे भी मुंह सूखना या ड्राई माउथ जिसे कहते हैं एजिंग, धीरे धीरे आप एक एज कर रहे हैं, एजिंग कोई बीमारी नहीं है एक फिजियोलॉजी का एक अवस्था है, उसमें भी मुंह सूखना क्योंकि जहां से थूक बन रहा है जिन्हें हम सेलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं थूक की ग्रंथियां हैं, तो इनके कम काम करने से भी थूक कम बनेगा और ड्राई माउथ होगा।
1: तो ये सवाल है जो मुझे मतलब तुरंत तुरंत पूछे जा रहे हो, जबकि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक गाना सुनाऊंगी, लेकिन मेरे पास जब इतने सारे सवालों के भंडार हैं तो आपके पास भी अपने पर्सनल सवाल हो सकते हैं, तो अपने स्पेसिफिक सवालों के लिए आप इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल फटाफट पूछ डालिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सोनिया दत्ता से जो कि प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट है। तो नंबर्स कौन से यूज करने हैं, कॉल करने के लिए आपको 2342108 घुमाना है और एक और नंबर है 2342108 4, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सिंपली अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं, नंबर है 9868107070। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी, शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: यह है आकाशवाणी रेनबो शो, चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सोनिया दत्ता जो कि प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ केयर पर। और आप सबके सवाल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना सवाल नहीं पूछा है फटाफट पूछ डालिए क्योंकि सवाल आज ज़्यादा होने वाले हैं। आप सबके सवाल भी बहुत सारे हैं और मेरे साथ भी हैं, बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि सबका समाधान हो और कहीं कोई इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो छूट ना जाए। तो 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल लगाइए या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल लिख भेजिए 9868107070 पर। नंबर एक बार फिर से 9868107070 पर व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछ डालिए। फिलहाल तो मेरे पास जो सवाल है वो छोड़ते हैं क्योंकि अभी जो आप सबके सवाल हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक सवाल किसी कॉलर का आ रहा है तो सबसे पहले शुरुआत उनसे करते हैं। हेलो हेलो, मुझे लगता है अभी हमारे जो श्रोता हैं वो यहाँ पर लाइन पर है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा सवाल तब तक ले लेते हैं। दिनेश कुमार भंडारी लिख रहे हैं तुलसीपुर नेपाल से। इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 37 है, कभी कभी मेरे दांत से ब्लड निकलता है तो दांतों की जड़ में बहुत दर्द होता है। ये कुछ लिखा है इन्होंने, समझ नहीं आया, बहुत दर्द होता है, प्लीज बताइए उपाय क्या हो सकता है।
1: देखिए, इन्होंने दिनेश जी ने कहा है कि दांतों से खून निकल रहा है, तो ज्यादातर तो दांतों के आसपास मसूड़े होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो सॉफ्ट टिश्यूज की होती है, और दांत के अंदर जो है वो इन्फेक्शन अगर हो जाए, नस तक दांतों में लेयर्स होती हैं, ऊपर इनेमल है, उसके अंदर सॉफ्ट लेयर्स हैं और सबसे अंदर दांत की नस है, अगर वो दांतों की सड़न अंदर की नस तक पहुंच जाए, दांत खुल जाए जिसे कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाए, तब तो वो दांत से ब्लीडिंग होगी।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर दांतों के आसपास मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है तो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो खाना बैक्टीरिया ये सब जमा होकर परत बनाते हैं जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। अगर डेंटल प्लाक है तो इसकी वजह से दांतों में इन्फेक्शन होगा, मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा, जिसे हम आम भाषा में पायरिया नहीं तो जिंजिवाइटिस कहते हैं।
0: अच्छा।
1: इसके लिए इनको एक एक्सपर्ट से ना केवल एडवाइस लेनी चाहिए, दांतों की एक प्रोफेशनल सफाई भी जरूरी है, क्योंकि रोजाना के देखभाल सफाई से, दांतों में ब्रश करने से ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर ब्लड आ रहा है तो इनको एक कोई एक्स्ट्रा कुछ चाहिए।
0: एक मसूड़ों में खून आने का कारण क्या है, इसे रोकने के क्या उपाय हैं? एक पैंथर तोमर का भी यही सवाल था जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है।
1: जी हाँ। लेकिन दांतों में कुछ फंस जाएगा, खाना वगैरह कुछ, वो लोकलाइज्ड ब्लीडिंग होगी, अगर दो दांतों के बीच में अगर कुछ खाना फंस जाए, सड़ जाए, यू नो, तो वो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन और तब ब्लीडिंग होगी। अगर ज्यादा दांतों में हो रहा है, जनरलाइज्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ज्यादातर तो हम इसे प्लाक इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस कहते हैं, जो प्लाक की वजह से, मैल परत की वजह से हो रहा है। अदरवाइज, अब ये आपने 37 साल की उम्र बताई श्रोता की,

0: और मेल हैं, नहीं तो प्रेगनेंसी में ये बहुत आम समस्या है, डायबिटीज में बहुत आम समस्या है, अच्छा। मेनोपॉजल एज में बहुत आम समस्या है, क्योंकि ये हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन से, इधर उधर होने से भी दांतों में, मसूड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है।
1: अच्छा, अब डायबिटीज की बात हुई तो एक सवाल इनका ये भी है कि मेरा दोस्त है, उसे कुछ महीने पहले टाइप 1 डायबिटीज हुई है, अब उसकी जीभ काली पड़ने लगी है, इसका कारण क्या है और क्या उपाय है?
0: देखिए, जीभ काली पड़ने लगी है, अब पड़ने लगी है, हम पिगमेंटेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए इनको अपने डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन से एक बार अच्छा चेकअप करवाना चाहिए, थोरो चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ में एक, जैसा हमने पहले भी बताया, 2-way ट्रैफिक है। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं गम्स के आसपास, जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड जिसे हम GCF कहते हैं, तो वहाँ पर भी ब्लड शुगर, GCF शुगर लेवल्स बढ़ने से इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आती है, पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, मुंह में स्मेल आती है। उसी तरह से अगर उल्टा करें, अगर मुंह में कोई समस्या है, दांतों में कोई समस्या है, मसूड़ों का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से शुगर लेवल्स भी फ्लक्चुएट होंगे। तो डायबिटीज पेशेंट को दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना और साथ ही साथ मुंह में, दांतों की, मसूड़ों की, जीभ की सफाई का पूरा ध्यान रखना।
1: ओके, एक राजू लिख रहे हैं एक सवाल, कर्नाटका से, विजयनगर कर्नाटका से, इन्होंने लिखा है, आई अंडरगॉन RCT फॉर 3 teeth 3 years ago, नाउ आई एम फीलिंग पेन इन द सेम टीथ ऑफ RTC, RCT।
0: हाँ जी, RCT जिसे हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जैसा मैंने बताया, दांतों में विभिन्न परतें होती हैं, लेयर्स हैं, और सबसे अंदर की जो परत होती है वो रूट तक जो जाती है, दांतों की नस होती है। अगर इन्फेक्शन बाहर की परत से अंदर तक चला जाए, इन्फेक्शन जिसे हम दांतों की सड़न या डीके कहते हैं, तो वह एक इररिवर्सिबल है, उसको हम केवल साफ करके मसाला नहीं भरते, उसमें दांत की वो नस की पूरा निकाल कर, सफाई कर कर, उन जड़ों में कोई इनर्ट मटेरियल, फिलिंग मटेरियल डालकर, और उसके ऊपर से, क्योंकि वो हॉलो हो गया है, मसाला भरकर, और जहां तक हो सके एक लैमिनेशन, एक कवर, एडिशनल कवर जिसे हम रूट डेंटल क्राउन या डेंटल कैप कहते हैं, वो जरूरी है। अगर इनको 3 साल पहले रूट कनाल हुआ है और उन्होंने बीच में एक चेकअप नहीं करवाया, जो हम 6 महीने में एक चेकअप जरूरी बोलते हैं, मैं मान के चलती हूँ कि इन्होंने शायद ना करवाया हो और 3 साल बाद इनको ये समस्या हो रही है, तो वो रूट कनाल में वाले दांत में अगर दर्द हो रहा है, तो वो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो जगह है, अटैचमेंट है, वहां से भी इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है, वो तो सीप कर जाएंगे ना। तो इनको एक रेगुलर सफाई, एक बार रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि दांत अमर हो गया, उसको एक रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर केयर की जरूरत है।
1: मैम, एक सफाई की आप जैसे बात कर रही हैं, तो हम कई बार होता है दांतों के बीच में कई बार येलो येलो सा निशान कुछ देखते हैं कि वो जम सा रहा है, और वो लगता है दांत का ही एक पार्ट है, लेकिन उसको क्या हम अपने आप निकाल सकते हैं?
0: बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उसको एक प्रोफेशनल सेवा ही आप दीजिए। अच्छा। जैसे हम बहुत बार बोल चुके हैं, डेंटल प्लाक परत, ये तो एक सॉफ्ट लेयर है, लेकिन अगर ये कैल्सिफाइड हो जाती है, जम जाती है, पुरानी पड़ जाती है, धीरे धीरे वो पीली, भूरी, काली शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ज्यादा हो जाता है, जैसे एजिंग है, स्मोकिंग है। अच्छा। जो लोग स्मोकर्स होते हैं या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिपॉजिट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मेन कारण है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, वो दांतों के अंदर मैल, दांतों और मसूड़ों के, विभिन्न दांतों के बीच में या दांतों और मसूड़ों के बीच में ये मैल जमती है, सॉफ्ट होती है, इसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं, धीरे धीरे हार्ड होती है, हम इसे कैलकुलस या टार्टर कहते हैं। तो ये खुद से ना, ब्रश से तो ये निकलेगी नहीं, इतनी हार्ड होती है, दिस इज वेरी टेनेशियस, और चिपक जाती है बहुत ही,
1: कई बार हम कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके, कई बार मैंने देखा है बड़े बुजुर्गों को, वो साफ कर देते हैं उसको,
0: बिल्कुल नहीं, ये सफाई तो होगी नहीं, उल्टा क्षति पहुंच जाएगी दांतों। अच्छा। और मसूड़ों में आप चोट लगा बैठेंगे। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनें हैं, अब तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अल्ट्रासोनिक स्केलर्स जिसे हम कहते हैं, आवाज भी नहीं आती, पेन भी नहीं होती, और उससे वो पानी की जोरदार बौछार के साथ दांतों की सफाई हो जाती
1: तो
0: है।
1: तो ये जरूरी है निकलवाना, कई लोग तो केयर भी नहीं करते कि लगा हुआ है, कोई बात नहीं।
0: बबीता जी, जरूरी, अगर आप देखें, जरूरत एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, किसको कितने, मैंने पहले भी बताया दांतों की समस्याएं बहुत ही स्लो होती है, क्रॉनिक होती है, जब तक कि अनबेयरेबल ना हो जाए तो कोई इंसान डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंचता। तो जरूरत तो है, सबसे बड़ी जरूरत है रेगुलर चेकअप की। तो ये आपके, जैसे आपने बताया, मेरी स्पेशलाइजेशन ही प्रिवेंटिव है, तो मैं तो बार बार प्रिवेंशन पे ही स्ट्रेस देना चाहूंगी।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने दांतों को रेगुलर चेकअप जरूरी है। तो क्या खुद भी चेक कर सकते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम जरूर आने वाली है या आ सकती है, तो हमें जो है क्या कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपने दांतों के लिए, या वैसे ही आप जाके चेक करवा लीजिए कुछ टाइम बाद?
0: देखिए, आजकल सेल्फी से फोटो खींचकर शेयर कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई देख सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते या करेक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते।
1: तो क्या लक्षण दिखे?
0: एक प्रोफेशनल चेकअप जरूरी है। लक्षण यही है मैम, जैसे दांतों और मसूड़ों में, दांतों में है दर्द होगा, खाना फंसेगा, कोई कीड़ा लगा है, सड़न है, तो उसको हम सड़न को कीड़ा लगना भी कहते हैं। तो ये एक लक्षण है, पता चल जाता है, दांतों में सनसनीपन होना, सेंसिटिविटी होना, दर्द होना, बहुत अधिक ठंडा, बहुत गर्म, खट्टा, ये सब खाने में समस्या होती है। इसके अलावा मसूड़ों में अगर प्रॉब्लम हो, जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, तो स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों से ब्लड निकलता है, वो एक टाइट पिंक कलर के जो मसूड़े होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, लाल रंग के दिखते हैं, और जब ब्रश करेंगे, ऐसे जो इन्फ्लेम्ड गम्स होंगे वो ब्रश करने पर या कोई सख्त चीज खाने पर ब्लीड भी कर जाएंगे। इसके अलावा मुंह से स्मेल आना, दांतों पर पीलापन पड़ना, ये सब लक्षण है।
1: ओके, एक सवाल इसी बीच आ रहा है, एक कॉलर का, बात करते हैं। फोन काट दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके दांत में पीलापन अक्सर रहता है, उसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इस सवाल से पहले मैं यही बोल रही थी, दांतों में पीलापन, अब कई लोग बॉदर नहीं करेंगे, कईयों के लिए दांतों पर पीलापन ही एक बहुत गहरी समस्या है, है ना, जरूरत है जैसा आपने कहा। तो दांतों पर पीलापन एक तो एज रिलेटेड होता है, पहले हमारे दांत बचपन में मिल्क टीथ तो बहुत वाइट होते हैं, जब परमानेंट टीथ निकलते हैं, नए होते हैं, वो एक्सपोज नहीं होते हमारे खान पान से, हमारे खान पान का दांतों के कलर पे, जिसे हम स्टेन्स कहते हैं। अब स्टेन्स एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं, इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं। जब दांत बन रहे होते हैं, गर्भावस्था से लेकर माँ के पेट में जब दांत बनने शुरू होते हैं, तो माँ या बच्चे की को जो दवाइयां दी जाती हैं, कई एंटीबायोटिक्स, कई सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट से भी दांतों का स्टेनिंग हो जाती है, पीला, भूरापन, ब्लैक स्टेन्स, येलो स्टेन्स, ब्राउन स्टेन्स। इसके अलावा दांतों की सफाई ठीक से ना हो तो दांतों का पीलापन हो
1: सकता है। तो ये नया पारा भिराई से एक जो सवाल आया था बसंत कुमार ठाकुर को, उनको जवाब मिल गया होगा, उनका 48 साल की एज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि उनका दांत जो है काला हो रहा है, पीला जमाव हो गया है, और आपने इस दोनों का जो कारण है वो भी बता दिया, और किस तरह से सफाई रखना और या क्या कारण हो सकते हैं उसके हिसाब से वो अपना इलाज कर सकते
0: हैं। जी बिल्कुल।
1: तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि एक गाना सुना देती हूँ, बहुत देर हो गई है, लेकिन लौट कर आते हैं आप सबके सवालों के जवाब, जो लगातार सवाल आ रहे हैं उनके जवाब डॉक्टर सोनिया दत्ता से लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ केयर पर, जिसमें आज हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सोनिया दत्ता, प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हैं वो, और आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी, शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। लौट कर आती हूँ आप सबके सवालों के जवाब लेने के लिए, और आप सब सवाल जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर भी बता देती हूँ, 2342-1080 या 2342-1084 पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल फटाफट भेज दीजिए।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब

0: साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है, आपके साथ हूँ बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ डॉक्टर सोनिया दत्ता जो कि प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हैं। आज ओरल हेल्थ केयर पर हमसे बात कर रही हैं और आप सबके सवालों का जवाब दे रही हैं। अभी तक आपने अपने सवाल नहीं पूछे हैं तो नंबर बता देती हूँ, और हाँ आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तभी वो शामिल होगा, और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप कॉल करें तो वो आप लगातार करते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए प्लीज़ ट्राई मत करिए। 9868107070 ये है हमारा व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर, जिसका इस्तेमाल आप मैसेज करने के लिए करिए। अपना जो सवाल है वो इस नंबर पर लिखकर भेजिए, अपने नाम और शहर के नाम के साथ, ज़रूर शामिल होगा। और कॉल करने के लिए 2342108 या 2342108 है जिस पर आप कॉल करिए और अपने सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो ज़रूर कॉल लगाइए। और आज जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं उनके सवाल बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप ही के लिए ये शो है। तो अभी फिलहाल हमारे साथ कौन है, बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ,
0: आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है।
1: अब आ रही है
0: जी, अब आ रही है।
1: हाँ, तो पहले तो एंकर और डॉक्टर मैम दोनों को गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून
1: जी। राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ मैम।
0: जी
1: जी, मेरे तीन सवाल है। पहला
0: आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो सॉरी आपकी कॉल नहीं लग पाएगी क्योंकि बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही है कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना सवाल प्लीज लिख कर भेज दीजिए। अभी एक सवाल मुझे दिख रहा है कि क्या सच में कोई कीड़ा होता है दांतों को खा रहा होता है, पैंथर तोमर कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है।
2: देखिए, शायद अभी हमने पहले भी ये वाली बात बोली, दांतों की सड़न को ही दांतों का कीड़ा लगना कहते हैं। डेंटल डिके, कैविटी, आजकल तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और अवेयर हैं इस बारे में, तो दांतों की सड़न को ही दांतों का कीड़ा कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दांत पे फंसे हुए खानों पर मिलकर तेजाब बनाकर दांतों को गला देते हैं, जिसे दांतों की सड़न कहते हैं। तो कीड़ा नहीं होता, ये सड़ा हुआ दांत जो होता है वो गला हुआ दांत होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है।
0: और एक चीज मुझे जो जाननी थी, जो मेन बात है वो ये होती है कि हम सब अपने दांतों की देखभाल करें। हमको लगता है कि दो समय ब्रश करें सुबह और रात में सोने से पहले, इतना काफी है?
2: देखिए, काफ़ी है, लेकिन केवल ब्रश करें ज़रूरी ये एक नियम नहीं है। ब्रश कब करें, कैसे करें, किस सामान के साथ करें, अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है।
0: अब जब सामान की बात हुई तो लोग कहते हैं घर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब पहले जैसे नहीं करते, दातुन यूज़ करते थे पहले ऑयल का इस्तेमाल करते थे, नमक का इस्तेमाल करते थे, अब हमने वो सब छोड़ दिया, शायद इस वजह से दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं।
2: देखिए, ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ये बिल्कुल सही है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको मेन इन्ग्रीडियंट, इसको सिर्फ इन्हीं नुस्खों के सहारे हम दांतों की सफाई नहीं कर रख सकते। तो दीज आर लाइक एडेड, दे आर एडेड थिंग्स जो हमें सुबह शाम दो टाइम जैसा आपने बताया, और मैं इसमें बताना चाहूंगी, रात को सोते समय आप एक बार ब्रश कर लें किसी स्टैंडर्ड ब्रश के साथ और किसी भी टूथपेस्ट या टूथ पाउडर के साथ। अच्छा। टूथ पाउडर या पेस्ट लेना पर्सनल चॉइस है, पाउडर्स आर यूजुअली मोर एब्रेसिव, वो दांतों को खुरदरा कर देते हैं। अच्छा। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि टूथ पाउडर्स को मैं

0: नकारा बोलूंगी, दे आर ऑल्सो इक्वली एफिशिएंट, लेकिन ब्रश एक स्टैंडर्ड कंपनी का सॉफ्ट रेशे वाला, नरम मुलायम रेशे वाला ब्रश लेकर, और टूथब्रश का हेड इतना छोटा होना चाहिए जो मुंह में दांतों में दांतों के आखिरी दांत के आखिरी सिरे तक आराम से पहुंच जाए।
1: ओके आजकल एक फ्लेक्सिबल टूथब्रश आ रहे हैं जिसको कहते हैं कि वो काफी फ्लेक्सिबल है, बीच से वो ऐसा बेंड हो जाता है, इस वजह से उसको इस्तेमाल करिए।
0: जी हाँ, जैसा मैंने बताया इंटरेस्ट के ऊपर, उम्र के ऊपर, कोई आपको ऐसी समस्या है जिसमें डेक्सट्रिटी, हम बोलेंगे कि मूवमेंट्स जो अच्छे से हो जाए, आखिरी सिरे तक पहुंच जाए, कईयों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो फ्लेक्सिबल ब्रशेज आ रहे हैं, मोटराइज्ड ब्रशेज आ रहे हैं, मोटर से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज जिसे इलेक्ट्रिक ब्रशेज कहते हैं, तो कोई भी हो, लेकिन हम केवल एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। और जैसा दातुन आपने बोला, दातुन के अपने गुण होते हैं, वो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल जिसे हम कहते हैं, वो दांतों की सफाई करती है, उसके अलावा दांतों की एक्सरसाइज होती है, मसूड़ों की एक्सरसाइज होती है, यू नो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, स्टिमुलेशन होती है, मसाज होती है, लेकिन आप केवल दातुन पे ही रिलाई करें तो भी ठीक नहीं है। दातुन साफ चबा चबा कर, पुराने जमाने में जब टूथब्रश का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग दातुन से सफाई रखते थे, क्योंकि चबा चबा कर उनके रेशे बन जाते थे, और वो जो रेशे बनते थे वो टूथब्रश के ब्रिसल्स की तरह दांतों के बीच की सफाई करते थे। आपने तेल बोला, तो तेल है, ग्लिसरीन है, यू नो इस तरह की जो चीजें हैं वो मसाज करती हैं, उससे फिंगर मूवमेंट्स होती हैं। तो जैसे हम बालों में तेल लगाते हैं, मुंह पे क्रीम लगाते हैं, उसी तरह हमें मसूड़ों की भी मसाज करनी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मजबूती आएगी, और स्वस्थ मसूड़े तो स्वस्थ दांत।
1: अच्छा, तो आपने जिस तरह से बताया कि दांत का की देखभाल टूथपेस्ट किस तरह का लें, और आपने बताया कि ब्रशेस किस तरह की इस्तेमाल करें, लेकिन टूथपेस्ट में भी बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। अब जो हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं उसमें वो लोग कहते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, मेरे वाले में तेल है, मेरे वाले में ये
0: चाट मसाला है,
1: चाट मसाला है, तो अब हमें समझ नहीं आता कि हमारे दांतों को क्या जरूरत है, वो किस तरह से उसको सिलेक्ट करें समझ नहीं आता, तो ऐसे में क्या किन बातों का ध्यान रखें?
0: देखिए कुछ हद तक तो ये एडवर्टीजमेंट्स आप समझती हैं कि एक कंपनी वाले भी चार तरह के, छह तरह के टूथपेस्ट वेरिएंट्स बनाएंगे, आपस में कंपटीशन होता है, ठीक है, लेकिन एक मेन जो टूथपेस्ट है, बेसिक टूथपेस्ट है, उससे झाग बनना चाहिए, उसमें एक ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो दांतों की सफाई करे, दांतों के जो दांत डे टू डे में डीमिनरलाइजेशन रीमिनरलाइजेशन है, खाना खाने के बाद पीएच गिरता है, दांत गलना शुरू हो जाते हैं, उसको रिप्लेनिश करने के लिए ज्यादातर टूथपेस्ट कैल्शियम उसमें रहेगा, तो कैल्शियम उसको रिस्टोर करेगा, इस तरह से स्वाद होना चाहिए, कोई टेस्ट होना चाहिए टूथपेस्ट में, तो ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा मार्केट में आप देखेंगे डायबिटिक्स के लिए जामुन डाल देंगे, जामुन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो डायबिटिक्स के लिए टूथपेस्ट है, हाइपरटेंशन के लिए टूथपेस्ट है, एंटी एजिंग टूथपेस्ट है, प्रेगनेंसी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए हम बहुत ज्यादा हाई फ्लोराइड वाले या हार्श केमिकल्स वाले टूथपेस्ट नहीं ले सकते। तो जैसे साबुन, तेल, खाने में आप फुल क्रीम दूध ले रहे हैं, टोंड ले रहे हैं, एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। उसी तरह से पेस्ट भी आपकी जो होती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डेंटिस्ट,
1: ओके,
0: यू नो, जिसमें जिससे टार्टर कम बने, सेंसिटिविटी कम हो, मुंह में कईयों के बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, दांतों की सड़न कैविटीज ज्यादा होती है, तो एंटी कैविटी फॉर्मूलास के टूथपेस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन आपको मेरा संदेश आपके प्लेटफॉर्म से यही रहेगा, आप कोई भी पेस्ट इस्तेमाल कीजिए, करिए तो सही। और यहाँ मैं फटाफट ये ऐड करना चाहूंगी कि रात को सोते समय जैसा मैंने बताया, एक बार ब्रश कर लें, उसके बाद कुछ खाएं नहीं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि एक बार कुछ खा लिया और दांतों में फंसा रह गया तो वो तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के को खाने का मसाला मिल जाएगा ना तेजाब बनाने के लिए। सुबह उठकर चाहे आपकी पर्सनल चॉइस है, आप एक बार ब्रश करके फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, या केवल पानी से कुल्ला करके आप ब्रेकफास्ट करके कम से कम आधा घंटा वेट करिए, एकदम खाना खाते भी ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पीएच लेवल डाउन होता है और आप एकदम से ब्रश करेंगे तो वो लाभ के बजाय उल्टा हानि देगा।
1: ओके, तो यशपाल जो द्वारका से पूछ रहे थे कि इज फ्लोराइड पेस्ट इज नेसेसरी, उन्होंने लिखा है पेस्ट कौन सा यूज करें, उस पर जब बात हो रही थी, तो फ्लोराइड पेस्ट जरूरी है क्या, ये उन्होंने पूछा।
0: मैम, डेंटिस्ट्री में हम फ्लोराइड को एक दो धारी तलवार कहते हैं, डबल एडेड स्वॉर्ड। इसके फायदे भी बहुत हैं जो इनेमल को मजबूत करता है, इसके नुकसान भी बहुत है। अब हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा देश है जिसमें बहुत से जो एरियाज हैं, मैक्सिमम स्टेट्स दे आर एंडेमिक, वहां ऑलरेडी पानी में फ्लोराइड की बहुत मात्रा है।
1: ओके,
0: यू नो, तो जिससे डेंटल फ्लोरोसिस भी होता है, डेंटल स्केलेटल शरीर की हड्डियों में भी फ्लोरोसिस के दुष्प्रभाव, यू नो, नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। तो फ्लोराइड एक ऑप्टिमम लेवल्स तक, लेवल पे लिखा होता है जिनके 800 टू 1000 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, तो वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड से मार्केट में कोई टूथपेस्ट निकाली जाती है। लेकिन अगर आप एडेड फ्लोराइड्स ले रहे हैं, टूथपेस्ट में ले रहे हैं, खानों में ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स में ले रहे हैं, ये अपने आप से करना गलत रहेगा।
1: तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मेरे पास बहुत सारे और भी सवाल हैं, आप सबके सवाल भी आ रहे हैं लगातार, तो जितना भी टाइम बचा है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट कर आते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं दांतों से संबंधित, उस पर डॉक्टर सोनिया से और भी सवाल करते हैं। One more time.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

रेनबो हेल्पलाइन में ओरल हेल्थ पर बात चल रही है, तो डॉक्टर सोनिया से एक आम समस्या जो बहुत देखने को मिलती है वो है फाउल स्मेल। दांत से पता नहीं या मुंह से ही बदबू आ रही होती है, कई बार और वजहों से भी हो सकती है।

0: सकता है, क्या क्या वजह होती है जिससे कई बार किसी इंसान से हम मिलते हैं, वो बहुत प्यारा इंसान है लेकिन उसके मुंह से बदबू आ रही होती है, हम बहुत ज़्यादा देर तक उसके साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं और ये गड़बड़ हो जाती है, तो ये किस वजह से होती है, कैसे ध्यान रखें, ये डॉक्टर सोनिया से ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि ये आम समस्या है।
1: जी बबीता जी, ये बहुत आम समस्या है और एक कॉन्शियस करने वाली समस्या है।
0: हाँ।
1: क्योंकि अगर आप खुद से कॉन्शियस रहेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, तो ये आपके बचपन से लेकर, टीनेज से लेकर आगे तक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर एंड व्हाट यू आर डिलीवरिंग एट योर वर्क प्लेस, नॉट ओनली एट होम, ये बहुत मायने रखता है। तो एक अच्छी सांस आना, यू नो, फ्रेश ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दांतों की जो ये फाउल स्मेल है, इसे हम हैलिटोसिस कहते हैं। और ये केवल सफाई की वजह, दांतों की सफाई तो एक मुख्य कारण है, मुंह की सफाई, जीभ की सफाई, तालू की सफाई, मसूड़ों पे उंगली मार के पूरा आप साफ रखेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी की हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माउथ ब्रीदिंग, जो बच्चे मुंह से सांस लेते हैं उनकी भी सांस में बदबू आती है। फिर उसके अलावा आपका खान पान क्या है, आपके खाने में प्याज, लहसुन, नॉन वेजिटेरियन स्टफ होगा, उसके स्मेल्स रहेंगे, तो उसके लिए भी दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। दांतों में गड्ढे पड़ गए हैं, कैविटीज हो गई हैं, खाना फंसकर सड़ता जा रहा है दांतों के बीच में या एक दांत के खड्डे में, वो भी सड़कर फाउल स्मेल देगा। कुछ मेडिसिन हैं, रेगुलर मेडिसिन हैं, उसमें भी फाउल स्मेल आती है। डायबिटीज के पेशेंट्स की स्मेल में एक फ्रूटी स्मेल आती है, पता चल जाता है डायबिटीज के पेशेंट है। ठीक है, और मतलब खास करके अगर उन्होंने अपने मुंह की सफाई को एक अहमियत ना दी हो। इसके अलावा टोबैको एक बहुत गंभीर समस्या है, कई बार तो एक रेगुलर चेकअप में डेंटिस्ट पकड़ सकता है, अगर घर में किसी को ना भी मालूम हो और कोई किशोर, कोई एडोलेसेंस में, बचपन में एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, वो भी डेंटिस्ट एक रेगुलर चेकअप में पकड़ सकता है। तो टोबैको की स्मेल रहती है।
0: ओके,
1: वेपिंग, स्मोकलेस टोबैको, ये भी एक स्मेल देंगे मुंह में।
0: अगर पेट की खराबी है तो भी आता
1: तो
0: है?
1: भी स्मेल रहेगी। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, हार्मोनल चेंजेस, किडनी प्रॉब्लम्स।
0: ओके, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनको पहले फाइंड आउट करना जरूरी है, उसके बाद फिर
1: मैं वही कह रही हूँ ना, हट फिर के ये एक बढ़ावा दे रहा है, दे आर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, बट रीजन कुछ भी हो, लेकिन अगर मुंह की सफाई कर ली जाए और उस अंडरलाइंग समस्या का, या कोई एडिक्शन है अल्कोहल टोबैको की, उसको आप हटाएंगे तो नेचुरली फ्रेश ब्रेथ आएगी। केवल कॉस्मेटिक ओवर द काउंटर ओटीसी प्रोडक्ट्स को आप मुंह में स्प्रे मार लेंगे, च्विंगम ले लेंगे, उससे आपकी फ्रेश ब्रेथ नहीं आएगी।
0: एक सवाल आया है बसंत कुमार का, ये नया पारा भिराई से लिख रहे हैं कि एक दांत इनका बाहर है जिसको हटाने के लिए वो क्या करें, ऐसा पूछ रहे हैं।
1: देखिए, अगर केवल एक दांत बाहर है, वो चोट की वजह से या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में, जिसे हम पैथोलॉजिक माइग्रेशन ऑफ टीथ भी कहते हैं, अगर ऐसा है तो इनको डेंटिस्ट के पास जाकर ही समस्या का, अगर वो इस तरह से बाहर आ रहा है कि उसको निकाल कर उसको रिप्लेस ही करना है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा दांत इनके आगे टेढ़े मेढ़े हैं, जिनको हम माल अक्लूजन भी कहते हैं, तो उसका कोई भी एज हो, पहले केवल टेक्नोलॉजी या स्टडीज ऐसी थी कि केवल हम बचपन या टीनेज में ब्रेसेस लगवाने का सोचते थे, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स।
0: ओके,
1: आप बढ़ती हुई उम्र में भी ब्रेसेस लगवा सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट से पूरा डिस्कस कीजिए इसको।
0: ओके, एक सवाल मेरा भी है, कई बार हम होता है इग्नोर करते हैं, दांत जो है टूट टूट कर गिर रहे हैं, ये किसी भी एज में हो जाता है और हम जानते नहीं कि क्यों हो रहा है, इग्नोर भी कर देते हैं और कई बार वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये रीजन क्या होता है और उसको क्या करें उसके लिए?
1: देखिए, दांतों का भुरना, जैसे आपने बोला टूट टूट के गिर रहे हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, दिस कुड बी अगेन, यू नो, जैसे बोन्स एंड टीथ दे गो टुगेदर।
0: अच्छा,
1: है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैल्शियम दांतों को, हड्डियों को मजबूत करता है, फास्फोरस ये करता है, विटामिन डी ये करता है, तो इनकी बहुत अधिकता ओवर टॉक्सिसिटी हो जाए या डेफिशिएंसी हो, तो खान पान में खाना हमें ऐसा जरूर खाना चाहिए जो हमारे दांतों के लिए फायदा दे, सेहतमंद हो। इसके अलावा एज रिलेटेड है, मीनोपॉजल, हार्मोनल चेंजेस, इसमें भी दांत भुरते हैं। फ्लोरोसिस हमने पहले बताया, जिसमें दांतों में फ्लोराइड की वजह से इनेमल ठीक नहीं रहता, वीक होता है, वीकेंड इनेमल हो तो दांत भुर सकते हैं।
0: ओके, आपने बहुत सारे रीजंस बता दिए। अब मुझे लग रहा है कि सवाल इतने सारे हैं कि कैसे समेटूं, 5 मिनट बचा है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी कि बच्चों के ओरल हेल्थ पर बात नहीं हुई है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके दांतों की भी समस्या होती है और हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके दांत अगर सड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि ये वाले दूध वाले दांत हैं, ये तो निकल जाएंगे अपने आप ही, इनका क्या केयर करना, तो इनको निकलवाना क्या सही रहता है या उनकी ओरल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अगर उस पर थोड़ा ध्यान दे।
1: देखिए, दांत दो तरह के होते हैं, दो सेट्स होते हैं बच्चों के, तो बच्चों के मिल्क टीथ जो 6 से 7 साल की उम्र तक होते हैं, 6-7 साल से लेकर 12-13 साल की उम्र को हम लोग मिक्स्ड डेंटिशन कहते हैं। अच्छा। जिसमें दूध के दांत भी होते हैं, पक्के दांत भी होते हैं, और 12-13 साल की उम्र तक जब दूध के सारे दांत निकल जाते हैं और पक्के दांत आते हैं, उसको हम परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ, एडल्ट डेंटिशन कहते हैं। अब बच्चों की जो समस्याएं हैं, आपने बच्चों की समस्याएं, बच्चों की केयर कैसे करनी है ये पूछा है।
0: हाँ, बच्चों के दांतों की,
1: तो हर एज के लिए यू नो मार्केट में तरह तरह के पेस्ट आ रहे हैं, आप कोई भी पेस्ट लीजिए, अगेन दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए दांतों का उतना ही महत्व है जितना बड़ों के लिए बड़ों के दांतों का। सिर्फ ये सोचकर कि ये टेम्परेरी है, मिल्क टीथ है, गिर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए वो फंक्शन भी कर रहे हैं, और मिल्क के टीथ समय से पहले अगर निकल जाए तो पक्के दांतों को वो प्रेशर नहीं मिलता जबड़ों में कि वो ठीक से उगे, उभर के आए, यू नो। या बच्चों के टीथ के इन्फेक्शन वो नीचे जबड़े में दबे परमानेंट टीथ तक चले जाते हैं। okay. तो बहुत जरूरी है केयर, बहुत जरूरी है।
0: और एक टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनकी देखभाल कुछ अलग तरीके से होती है, उनको क्या करना चाहिए, जो कई बार सफाई नहीं होता हो पाती ब्रश से उतने प्रॉपर।
1: देखिए, जैसा मैंने बताया, दांत आगे पीछे होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, मैल अलाइंड होंगे, तो उसमें ब्रशिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको समय समय पर रेगुलर प्रोफेशनल क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, फ्लॉसिंग होती है, फ्लॉस से आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं। लेकिन एज इज नो बार डिपेंडिंग अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी एंड योर कंडीशन। अगर आप एक डेंटिस्ट से अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को के इलाज को डिस्कस कर लें और उसको अगर एक बजट के अंदर किया जा सकता है तो प्लीज टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करवा लीजिए।
0: एक चीज और, कई बार होता है हम कोई भी पेन किलर, दांतों में दर्द हो रहा है, हमने खा लिया, क्या ये सही है? दांतों पे सारी पेन किलर वर्क कर सकती हैं क्या? हमें लगता है कि खुद ही खा लेते हैं, कोई बात नहीं, हल्का सा दर्द है तो हमने खा लिया और डॉक्टर के पास बाद में जाते रहेंगे, या तुरंत इलाज रात बात में चाहिए तो?
1: बबीता जी, किताबों में, टेक्स्ट में टूथेक को लेबर पेन से इक्वेट किया गया, कंपैरिजन किया गया, ये बहुत ही भयंकर होता है। तो दांत भी आपके शरीर का हिस्सा है, जब दर्द होगी, और किसी इंसान को मार्केट में 1001 तरह की पेन किलर्स हैं, जिसको जो सूट करती है वो ले लें इमरजेंसी के लिए, बट दैट इज नॉट ट्रीटमेंट। इलाज के लिए वो पेन क्यों हो रहा है वो बहुत जरूरी है, उसका इलाज करवाएं।
0: चलते चलते, वैसे तो समय नहीं है, लेकिन एक मिनट में आप अगर कुछ कहना चाहें।
1: देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि दांत आपके लिए, आपकी मुस्कान के लिए, खान पान के लिए, बोलने चालने के लिए, पर्सनालिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। और ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा कि बुढ़ापा आते आते, बुढ़ापा भी एक रिलेटिव टर्म है, मैं बुढ़ापा वर्ड यूज नहीं करना चाहती, लेकिन समय के साथ दांत निकल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके दांत आजीवन आपका साथ निभा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी उतना ही उनका साथ देना है। उनकी सफाई रेगुलर से, खुद से और प्रोफेशनल बहुत जरूरी है। अच्छा खान पान बहुत जरूरी है जो दांतों को क्षति ना पहुंचाए। धूम्रपान, अल्कोहल, टोबैको, वेपिंग, इन सब से दूर रहिए, ये दांतों के लिए बहुत हानिकारक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 महीने में नहीं तो साल में एक बार अपने बर्थडे को चूज करके आगे या पीछे अपने डेंटिस्ट के से आप एक बार जरूर मिलें और चेकअप करवाएं।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इतनी सारी बातें हुई, और मुझे लग रहा है कि ये बातों का सिलसिला चलता रहे, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और श्रोताओं के साथ जोड़ने के लिए।
0: जी थैंक यू सो मच। ये थी डॉक्टर सोनिया दत्ता जो कि प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हैं। आज हमने बात की ओरल हेल्थ केयर पर और फिलहाल मैं बबीता त्रिपाठी आपसे कहना चाहूंगी टाटा बाय बाय।

क्योंकि अभी ज्योति आ गई है स्टूडियो में आशियाना लेकर, उनके साथ रहिएगा और इसी तरह से दिल तक इंजॉय करते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। अपना खूब सारा ध्यान रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। टाटा बाय बाय।

ये है एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद में आज महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक और राज्यसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश होगा। संसद की कार्यवाही विपक्ष के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों के कारण बाधित हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर मॉनसून स्तर बाधित करने का आरोप लगाया। कहा, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पुराने सिक्कों के खरीदारी के समर्थन वाले वीडियो को फर्जी बताया। लोगों से ऐसे भ्रामक दावों से सतर्क रहने की अपील करी। दिल्ली यातायात पुलिस ने चहलुम जुलूस के मद्देनजर आज दोपहर 2 बजे से दक्षिणी दिल्ली में कई मार्गों पर विशेष यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किए। उड़ीसा में बाढ़ के हालात में सुधार। नदियों का जलस्तर घटा, अगले 2 दिनों के लिए फिर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हॉर्मूज में एक और जहाज पर हमला हुआ। अमरीका ईरान शांति वार्ता को लेकर बढ़ी चिंता। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति जारी। बाग जिले में निहत्ते नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से बढ़ा तनाव। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। अनाहत सिंह की ऐतिहासिक जीत की सराहना की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आशियाना और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। देखो, दिन का ये जो सुकून भरा वक्त होता है मेरा फेवरेट वक्त होता है। मतलब अगर आपने लंच कर लिया है तो साथ में एक छोटा सा कप चाय, थोड़ी सी यादें और दिल से जुड़ी बातें। आशियाना में हम हमेशा बात करते हैं उन इमोशंस की जो हम रोज फील तो करते हैं लेकिन शायद कह नहीं पाते। आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा लग सकता है लेकिन शायद हर घर की सच्चाई है। हर फैमिली में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबको संभालता है, जो हर सिचुएशन में स्ट्रांग दिखता है। वो आपकी माँ हो सकती है, है ना, आपकी बहन हो सकती है और आपकी वेल विशर हो सकती है, या आपके घर आने वाली वो दीदी हो सकती हैं। लेकिन आज ये जो वुमेन स्पेशल है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हर औरत की जर्नी अलग होती है। किसी की मुस्कुराहट के पीछे हिम्मत छुपी होती है तो किसी की खामोशी के पीछे हजार कहानियां। आज शो में हम सेलिब्रेट करेंगे उन्हीं खूबसूरत जज्बातों को, कुछ दिल छू लेने वाली कहानियां और कुछ अमेजिंग बॉलीवुड ट्रैक्स। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो हर स्ट्रांग वुमन और कॉन्फिडेंट वुमन लेट मी से उनके लिए डेडिकेटेड है।

हेमा सरदेसाई फ्रॉम द मूवी चक दे इंडिया. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आशियाना विद मी ज्योतिका. हम अक्सर देखते हैं कि एक औरत अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जीती है. कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी ऑफिस का काम, कभी बच्चों की फिक्र, और इन सब के बीच वो अक्सर खुद को ही पीछे छोड़ देती हैं. लेकिन सच तो ये है कि खुद का ख्याल रखना कोई सेल्फिश बात थोड़ी है, बल्कि जरूरी बात है. जब आप खुश रहते हैं तभी अपने आसपास के लोगों को भी खुशियां दे पाते हैं. कभी अपने लिए वक्त निकालिए, कभी अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, कहीं वॉक पर निकल जाइए, या बस एक कप चाय के साथ कुछ देर सुकून से बैठ जाइए. और हाँ, अगर मुमकिन हो तो खुद से आज एक बात जरूर कहिएगा, मैं जितनी हूं ना उतनी ही काफी हूं. स्टे ट्यून्ड विद मी राइट हियर.

0: आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
5: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
4: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
5: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आकाशवाणी और मैं हूं ज्योतिका। शो का नाम है आशियाना। हर औरत की अपनी एक कहानी होती है। किसी ने मुश्किलों का सामना करके अपनी पहचान बनाई है, तो किसी ने अपने परिवार की खुशियों के लिए हर दिन नए हौसले के साथ कदम बढ़ाए हैं। हमें अक्सर सिर्फ उनकी मुस्कान नजर आती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितनी मेहनत, कितना त्याग और कितना सब्र होता है, ये हर बार नजर नहीं आता। इसीलिए आज का दिन वुमेन स्पेशल सिर्फ हम सेलिब्रेट करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन सभी वुमेन को दिल से सैल्यूट करने को भी कह रहे हैं जो हर रोज बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी लेडी है जो आपको इंस्पायर करती है, तो उन्हें एक बार दिल से आज थैंक यू जरूर कहना। क्योंकि कई बार ना हम लोग एकदम सेल्फलेस होकर काम करते रहते हैं, दूसरों को खुश करते रहते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते रहते हैं, लेकिन कौन है जिसने वो हमें जिम्मेदारियां सौंपी हैं? कहाँ लिखी है वो टू डू लिस्ट जो हर रोज शुरू तो होती है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेती? सोचिए ना थोड़ा बैठ के, इतनी मेहनत करके क्या फायदा।

आप सुन रहे हैं आशियाना विद मी ज्योतिका, और आज हम बात कर रहे हैं विमेन स्पेशल के बारे में। जी हाँ, औरतों के बारे में, हम लेडीज़ के बारे में, कि हम कैसे खुशी खुशी हमेशा हर जगह, अपना घर हो, अपनी जॉब हो, अपने दोस्त हो, या कोई भी ऐसी जगह हो, हम अपना बेस्ट हमेशा देते हैं। देखिए, ज़िंदगी में सपने देखना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जो हौसला होता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की जो औरत है, हर फील्ड में अपनी पहचान बना रही है, फिर चाहे साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या आर्ट्स, हर जगह वो अपनी मेहनत और काबिलियत से नए मुकाम हासिल कर रही हैं। रास्ता कभी आसान नहीं होता है, लेकिन जो लोग अपने सपनों पर यकीन रखते हैं, वो मंजिल तक ज़रूर पहुँचते हैं। इसीलिए अगर आप भी किसी नए सपने की शुरुआत करना चाहती हैं, तो आज से बेहतर दिन शायद ही कोई होगा। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको बोलें कि तुम्हारे पास वक्त कहाँ होता है, कैसे मैनेज करोगी, लेकिन मैंने कहा ना, हम हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। तो आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं से वो इम्पोर्टेंट वक्त अपने लिए, अपने सपनों के लिए निकाल ही लेंगी।

देखिए, ये जो वुमेन स्पेशल है ना, ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये एक मौका है उन सभी वुमेन को थैंक यू कहने का जो हर रोज अपने प्यार, हिम्मत और मेहनत से हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देती हैं। चाहे वो माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, टीचर हो, कुलीग हो, या फिर आपके घर में काम करने वाली दीदी, हर एक का योगदान अपनी जगह बहुत खास होता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां रिस्पेक्ट सिर्फ किसी एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर दिन हर औरत को मिलनी चाहिए। और अगर आप ये शो सुन रही हैं तो बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत है और उस पर हमेशा गर्व कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज के वुमेन स्पेशल एडिशन में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूं कि आज की बातें और गाने आपके दिल को जरूर छू गए होंगे। हर दिन मुस्कुराइए, अपनों की कदर कीजिए और हर उस औरत का सम्मान कीजिए जो अपनी मेहनत और प्यार से इस दुनिया को, आपके घर को और भी खूबसूरत बनाती है। अब वक्त हो चला है हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का। मैं ज्योतिका आपसे फिर मिलूंगी शाम 4 बजे अल्फा जेन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। इस धुन के उस पार सुनिए हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
0: विमलेश जी यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी
0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
2: जी
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
2: जी
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
2: ये सब बहुत आकर्षक लगता है लेकिन श्रोताओं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: जी
2: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
0: जी
2: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती है, वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति। विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है, और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
2: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
0: जी,
2: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
2: जी,
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
2: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
2: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
0: जी,
2: एआई हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
0: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
2: बिल्कुल,
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
2: जी,
0: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
2: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
3: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य

0: ये शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है, पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
3: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे। आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
4: सर मैं इशिता।
5: मैं हूँ चेताली।
6: मैं शुभेंदु।
7: और मेरा नाम है इंदु।
8: और मैं सोमेश।
3: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
4: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
3: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
6: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
8: सर फिर क्या होता है?
3: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
8: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
3: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
9: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
4: वाह, कितनी सुंदर बात है।
3: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
10: पौधा।
3: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
10: उल्टा?
3: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
8: फिर क्या हुआ?
3: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
6: यह तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
4: जी सर।
3: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
4: रसपान कैसे करते?
3: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
4: जी सर।
3: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
4: अच्छा अब समझ आया।
3: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
10: जी सर।
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं।
4: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है,
6: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
8: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
7: देखो इतना बड़ा पेड़।
6: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
10: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
3: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
8: माइक्रोस्कोप?
3: हाँ। अब इसका कमाल देखो, इशिता तुम इधर आओ।

0: हाँ देखो
1: जी सर।
0: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
2: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: शाबाश।
2: हाँ नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ आओ,
2: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया,
2: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
2: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
2: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
2: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो क्या दिखाई दिया।
2: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
4: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
3: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
2: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
2: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा, जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
2: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
4: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
4: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
4: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
4: थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
5: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज। श्रोताओं नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। दोस्तों, नवजात शिशु को स्वस्थ जीवन देने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान। आपको बता दें कि 1 से 7 अगस्त तक हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, और इसके लिए तमाम प्रयास हम किस तरह से करते हैं ये आपको हम बताते ही रहते हैं। विश्व स्तर पर क्यों मनाया जाता है ये सप्ताह और क्यों महत्वपूर्ण है शिशु के लिए स्तनपान, ऐसी सभी बातों पर आज बहुत विस्तार से चर्चा होगी। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, जो कि नई दिल्ली एम्स में बाल रोग विभाग के अंतर्गत नवजात शिशु विज्ञान प्रभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख हैं। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल जी न्यू बॉर्न हेल्थ पर सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च के प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप नवजात शिशु देखभाल में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर अग्रवाल नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए एम्स के बहुचर्चित क्लिनिकल प्रोटोकॉल बुक के मुख्य संपादकों में भी शामिल हैं, तो इस गहन अनुभव का लाभ आज आप भी उठाएं रेडियो डॉक्टर के माध्यम से। यदि आज के विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। आप नंबर डायल करें, मैसेज करें, और इधर मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्ते नमस्ते अनुराधा जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहला आज का मेरा ये सवाल है कि हर वर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग शिशु और माँ दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए क्यों ज़रूरी है?
2: मैं कहूँगा अनुराधा जी कि बहुत ही ज़रूरी है
1: जी।
2: आप बच्चे की बात करें तो संपूर्ण न्यूट्रिशन है एक एक पूरी तरह का जो एक पोषण प्रदान करता है
1: जी।
2: और पहले 6 महीने में और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो चीज़ है कि ये खाली न्यूट्रिशन या पोषण ही नहीं है, बच्चे को ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, रोगों से दूर रखता है, और ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है
1: जी।
2: बच्चा भी नहीं, माँ के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ जो प्रेगनेंसी में इतना सारा वेट गेन करती है उसको शेड ऑफ करने में मदद मिलती है, माँ के कुछ कैंसर्स कम होते हैं, माँ का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और बच्चे और माँ के बीच में जो एक बॉन्डिंग है जो इस वक्त शुरू होती है वो एक लंबे समय तक बनी रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: जी। बहुत महत्वपूर्ण होता है, डॉक्टर साहब ने आपको बताया है ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, और आगे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, आपका चंदा और सूरज स्वस्थ रहे, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़रूरी है स्तनपान शिशु और माँ दोनों के लिए, कितना ज़रूरी है ये हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आपको अगर अपना कोई सवाल हम तक पहुँचाना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो के नंबर हैं 01 1 2 3 4 2 1 0 8 0 और 01 1 2 3 4 2 1 0 8 2। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो हमारे मन में जिज्ञासाएं होती हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है लेकिन फिर भी जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो लोगों को नहीं पता होता, मैं जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग पहली वैक्सीन है ये क्यों कहा जाता है?
1: पहली वैक्सीन बड़ा सोच समझ के कहा गया है उसको
0: जी।
1: जो शुरुआती दिन में, पहले एक या दो दिन में जो माँ का दूध आता है, मात्रा में बड़ा कम होता है लेकिन उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं
0: जी।
1: एंटीबॉडीज वो पदार्थ हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। तो क्या होता है कि बच्चा होता है शुरुआत में, उसकी अपनी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता उतनी नहीं होती, तो प्रकृति ने एक साधन बनाया कि बच्चा पैदा होगा और माँ ने वो एंटीबॉडीज तैयार करके रखी हैं जो उसको उस बाहर के वातावरण में फेस करनी पड़ेगी
0: जी।
1: और उन एंटीबॉडीज को माँ दूध के माध्यम से बच्चे को देती है, तो एक तरह से फर्स्ट वैक्सीन है। लेकिन ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि बात यहीं आके सीमित नहीं हो जाती है। माँ कंटिन्यूसली उस बच्चे को एंटीबॉडीज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देती रहती है दूध के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, जो बच्चे को कंटिन्यूसली

0: है कि बात यहीं आके सीमित नहीं हो जाती है। माँ कंटिन्यूअसली उस बच्चे को एंटीबॉडीज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देती रहती है दूध के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, जो बच्चे को कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है।
1: जी
0: और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, आप देखिए कि चारों तरफ इन्फेक्शन फैले हुए हैं, उस वातावरण में माँ भी है और बच्चा है। माँ का शरीर उस वातावरण में फैले हुए इन्फेक्शन के अगेंस्ट में बॉडीज़ बनाता है। सीजनल होते हैं, सर्दियों में कुछ आ जाते हैं, गर्मियों में कुछ आ जाते हैं, और माँ का शरीर उनको सेंस करके एंटीबॉडीज़ बनाता है और दूध के माध्यम से बच्चे को दे देता है।

0: एक या दो दिन में जो दूध आ रहा होता है माँ का,
1: जी
0: जो एंटीबॉडीज होती हैं उस दूध के कलर को येलो कर देती हैं, थोड़ा सा पीले रंग का होता है,
1: जी
0: वो गाढ़ा भी होता है बिकॉज एंटीबॉडीज हैं बहुत सारी, एंड एक तरह से अमृत के समान है, बच्चे की फर्स्ट वैक्सीन है, बच्चे को दिया जाना अति आवश्यक है और अति फायदेमंद भी है। तो समाज में जो भ्रांतियां हैं, एंड ऑफ कोर्स वो हर रोज़ दूर भी हो रही हैं, लोग समझ पा रहे हैं बट फिर भी हैं कि वो दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए और निकाल के फेंक देना चाहिए, बिल्कुल वो सही नहीं है, और बल्कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए पूरे कि वो दूध बच्चे को मिले,
1: क्लियर जी।
0: माँ और फैमिली जो है उस बच्चे को वो वाला दूध ज़रूर से पिलाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक सवाल हमारे पास मैसेज के रूप में आया हुआ है। हेमा जी ने यह सवाल किया है, लिख रही हैं कि कई लोग कहते हैं कि जन्म के बाद आने वाला पहला पीला दूध नहीं पिलाना चाहिए, जिसका जवाब अभी अभी आपने दिया है। दूसरा इनका सवाल है कि आपका नाम लेकर लिख रही हैं कि मेरा डॉक्टर रमेश जी से सवाल है कि बच्चे को पंप करके निकाला हुआ दूध पिलाने और सीधे स्तनपान कराने में कोई फ़र्क होता है क्या?
0: बहुत फ़र्क होता है हेमा जी।
1: जी
0: सीधे माँ का दूध जो होता है आइडियली सीधे बच्चे के मुंह में जाना, बच्चे के शरीर में जाना चाहिए। तो माँ की ब्रेस्ट से लग के बच्चा दूध देता है, तो माँ ने जो चीज़ पैदा की है वो यों की त्यों बच्चे के शरीर में जाती है, किसी तरह का कोई डिलीवरी लॉस नहीं है। उसका एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा ये है कि जो प्रोसेस होती है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की, वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है बच्चे के लिए, शरीर के लिए, दांतों और फेस की बनावट के लिए, और जो भी आपके इम्यून सब्सटेंसेस होते हैं, लड़ने के जो तरीके होते हैं, आप पदार्थ बनाते हो, वो पूरा का पूरा बच्चे को बिना कोई ऑल्ट्रेशन के, बिना कोई लॉस के बच्चे को पहुँचता है। जो निकालने का जो एक प्रोविज़न है वो बड़ा सिलेक्ट केसेस के लिए होता है। वो तब होता है जैसे बच्चा स्मॉल है या सिक है, छोटा है या बीमार है और सीधे आपकी दूध नहीं पी सकता, या माँ बीमार है, सेपरेटेड है, बच्चे को दूध डायरेक्टली नहीं पिला पाती। सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में माँ का दूध एक्सप्रेस करके निकाल के पंप से या हाथ से बच्चे को पिलाना चाहिए। उस प्रोसेस में लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, जो फैट होता है मिल्क का वो बर्तन के चिपक जाता है थोड़ा, जो आपके लड़ने के सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जो है वो आपके लॉस होते हैं, बट फिर भी उस मिल्क की, बचे हुए मिल्क की महत्ता काफ़ी है। वो आपके डायरेक्ट मिल्क के जैसा नहीं होता, उससे कम वैल्यूएबल होता है, बट फिर भी किसी दूसरे मिल्क की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है।
1: जी तो यहाँ पर एक जो लोगों के मन में ये भ्रांति है कि दोनों समान हो सकते हैं, लेकिन आपने बताया कि ज़्यादा फायदेमंद है ब्रेस्ट फीडिंग, और जिस विषय पर आज
0: तो
1: हम चर्चा कर
0: डायरेक्ट
1: रहे
0: ब्रेस्ट
1: हैं।
0: फीडिंग जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स, एक फ़ायदा और भी होता है, वो ये है कि वो बड़ा एफिशिएंट तरीका है। आप उठते हैं, बच्चे को दूध पिलाया आपने, 4 मिनट में आपका काम हो गया, 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट में हो गया। निकालने की प्रोसेस है, फिर उसको कंटेमिनेशन के भी चांसेस होते हैं और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ऑफन हमने देखा है कि वो चीज़ इतनी कम्बरसम हो जाती है कि धीरे धीरे माँ का मिल्क भी कम होता जाता है समय के साथ में।
1: जी
0: तो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है कि जो बच्चा डायरेक्टली दूध पी सकता है उसके

जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, लेकिन एक सवाल हमारे पास आया हुआ है। अनमोल गुप्ता जी सरिता विहार से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 37 वर्ष की है और इनकी समस्या ये है कि इनका जो बच्चा है वो 3 साल का है। लिख रही हैं कि वो

0: जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, लेकिन एक सवाल हमारे पास आया हुआ है। अनमोल गुप्ता जी सरिता विहार से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 37 वर्ष की है और इनकी समस्या ये है कि इनका जो बच्चा है वो 3 साल का है। लिख रही हैं कि वो अभी तक दूध पीता है, तो ये कहीं उसके लिए हानिकारक तो नहीं है, क्योंकि बता रही हैं कि उसके दांत खराब होने शुरू हो गए हैं।
1: आपका दूध कतई हानिकारक नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो माँ का दूध 6 महीने के बाद में इनफ नहीं है, तो उसको ठोस खाना ऊपर का वो देना शुरू करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फूड। अपना दूध देंगे, कंटिन्यू करेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज आप चाहें, एज लॉन्ग एज बच्चा चाहे, उसमें दिक्कत नहीं है। 3 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, कोई
0: जी
1: प्रॉब्लम नहीं है।
0: जी
1: लेकिन 6 महीने से बच्चे को पूरक आहार दीजिए, और ये पूरक आहार जो है ठोस आहार है, जो आप खुद घर में खाते हैं, घर में बनाते हैं, बाजार का कोई भी चीज़ नहीं।
0: जी
1: और उसमें वैरायटी ऑफ चीज़ें देना, दाल भी होगी, अनाज भी होगा, दूध भी होगा, दही भी होगा, सब्जी फ्रूट्स भी होंगे, पूरक आहार देंगे।
0: जी
1: दांतों की जहाँ तक बात की है, वो डेंटल केयर से रिलेटेड है कि आप बच्चे को ब्रश करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, क्लीनलीनेस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। कई बार बच्चे अक्सर बहुत टॉफ़ीज़ एंड वो खाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे को जो है कैरीज लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं जिसको हम कहते हैं। तो आप उसकी हाइजीन की, दांतों की और क्लीनलीनेस को ठीक से टेक केयर करेंगे, वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है और उसका सेपरेट इलाज है। ब्रेस्ट फीडिंग से उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे बड़े नियमित श्रोता हैं नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, हमारी दादी, उसके बाद हमारी माँ और वर्तमान में माँ, क्या माँ के दूध की पौष्टिकता में कुछ परिवर्तन आया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है?
1: चौहान साहब, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फ़र्क आया है। माँ का दूध जो है बहुत
0: बेसिकली
1: बढ़िया
0: जो
1: था।
0: आजकल डाइट है, शायद उसको लेकर इनका भ्रम है कि इस समय पौष्टिकता में कोई कमी तो नहीं आई है।
1: नहीं, क्या होता है कि आपका शरीर जो है, माँ का शरीर जो है, वो बच्चे के लिए ऐसा होता है कि उसकी शरीर की प्रक्रिया ऐसी होती है कि आप वो माँ के शरीर से बेस्ट चीज़ बना के बच्चे को देता है। माँ कम खा रही है, ज़्यादा खा रही है, पौष्टिक नहीं खा रही, ये पौष्टिक खा रही है, बट बच्चे को जो जाएगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट मिल्क जाएगा।
0: जी
1: हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि माँ का पोषण इम्पोर्टेंट नहीं है। माँ का न्यूट्रिशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है
0: जी
1: बच्चे की, ताकि बच्चे के लिए वो अनफ अमाउंट में मिल्क बना सके, और मिल्क बच्चे को देते हुए वो अपना हेल्थ प्रिजर्व कर सकें। बिकॉज माँ की हेल्थ जो है बच्चे की हेल्थ से बड़ी इंटीमेटली जुड़ी हुई है। एक आदमी स्वस्थ हो, दूसरा स्वस्थ ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों की हेल्थ जो है हैंड इन हैंड जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनके मन में भी डाउट है। हमारे पास ब्रजेंद्र सिंह का एक सवाल आया हुआ है, लिख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीने माँ का दूध पिया है और अभी मैं बहुत वीक हूँ, तो क्या ये कोई साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर बहुत कम समय तक दूध इन्होंने लिया है तो?
1: देखिए, आप बड़े हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम कितने साल के हैं, लिखा
0: जी
1: नहीं है आपने।
0: हाँ,
1: इम्पोर्टेंट है कि आप इस वक्त के
0: ये
1: न्यूट्रिशन पे
0: इन्होंने
1: आप
0: एक
1: ध्यान
0: छोटा सा
1: रखें।
0: 31 लिखा है, मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि इनकी वर्ष 31 साल है, ये अंदाजा
1: 31 साल
0: लगाया
1: की
0: जा
1: है
0: सकता
1: आपकी
0: है। जी
1: उम्र,
0: जी जी
1: तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ को जो इन्फ्लुएंस करेगी वो है कि आप करंटली न्यूट्रिशन क्या कैसा ले रहे हैं। आप वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, घर में बना हुआ खा रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, अपनी भूख के हिसाब से खा रहे हैं, खाने को अच्छे से चबा के खा रहे हैं और कसरत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ 31 ईयर्स की उम्र में भी बड़ी अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे पास मैसेज के तौर पर आया हुआ है। सोनू सैनी जी ने ये लिखा है कि अगर दूध नहीं प्रोड्यूस होता है तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय होता है, क्या किया जा सकता है?
1: देखिए, इस चीज़ का प्रिवेंशन बड़ा ज़रूरी है।

0: इसका सॉल्यूशन जो है वो लेस देन ऑप्टिमम है, परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बट इसका प्रिवेंशन जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को प्लान करना जिसमें हर आदमी की जिम्मेदारी है, परिवार की भी है, समाज की भी है, जो डॉक्टर नर्सेज उनको टेक केयर करते हैं उनकी भी है, कि सही ज्ञान मिले कि क्या चीज़ करें क्या चीज़ नहीं करें प्रेगनेंसी के दौरान। जब डिलीवरी हो तब माँ को अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिले, प्रोवाइडर से भी और फैमिली से भी, फीडिंग इनिशिएट करने में, फीडिंग मेंटेन करने में। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, निपल में पेन हो गया, इंगोर्समेंट हो गया, उसका इलाज मिले ठीक से, एंड माँ फिर सब्सिक्वेंटली अच्छे से फीडिंग करवाए बच्चे को। लेकिन पूरा समाज बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा समय लगाना चाह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं है, पिता की भी है, ग्रैंड मदर की भी है, ग्रैंड फादर की भी है, एम्प्लॉयर की भी है, डॉक्टर्स की भी है। ये सब जब लोग मिलके करते हैं, कोई रीज़न नहीं है कि दूध ना हो। बिल्कुल दूध होगा, बच्चे को दूध मिलेगा, बच्चे के लिए अच्छा होगा और माँ की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं और जो इनका सवाल अभी हमने पढ़ा है, साथ में इन्होंने एक सवाल और लिखा था उसके साथ, कि जो एनिमल्स का दूध हम देते हैं, गाय भैंस या बकरी का, जिसका भी लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को, क्या उसमें पानी मिला के थोड़ा सा पतला करके दिया जा सकता है अगर और कोई ऑप्शन नहीं होता है?
0: पहली चीज़ जो है वो ये है कि ऊपर का कोई भी दूध जो है वो गाय भैंस और जानवर के दूध से बना हुआ होता है, चाहे वो फॉर्मूला लीजिए या डायरेक्ट उनसे भी ले लीजिए, वो आपका लेस देन परफेक्ट होता है। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बना है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बना है, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए बना है, आदमी के लिए नहीं बना है। तो ये दिमाग में नहीं रखें कि वो ऑप्शन आपका इक्वली गुड है। फोकस करें कि माँ को सपोर्ट प्रोवाइड करें। आई थिंक माँ जो है वो सेंटर में है, बच्चे की केयर करनी है तो पहले माँ को लेके आए, माँ की केयर करें, दूध आएगा आपका
1: जी।
0: कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें आपको नहीं देना है तो पानी तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, या मेक श्योर करना चाहिए कि बिल्कुल भी डाइल्यूशन नहीं हो आपके द्वारा भी या जो दूध दे रहा है उसके द्वारा भी। बट ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड चॉइस है जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान भी हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद करेंगे आपसे आगे की चर्चा।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, जो कि नई दिल्ली एम्स में बाल रोग विभाग के अंतर्गत नवजात शिशु विज्ञान प्रभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर, और इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर हैं 01123421080 और 01124210882, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं जो कि लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप लगातार हमारे संपर्क में रहिए, क्योंकि आज बहुत ही हमारे पास उम्दा मौका है कि हमारे साथ बहुत अनुभवी हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, क्या मेंटली प्रेशर का भी असर होता है कि कहीं दूध की मात्रा कम हो जाती है और स्तनपान में दिक्कत आती है?
2: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
1: जी।
2: एक हमारे टीचर होते थे, पता नहीं, हो सकता है सुन रहे हो आज
1: जी।
2: नाम था उनका डॉक्टर, है अभी भी
1: जी,
2: हैं
1: जी,
2: रिटायर हो गए, डॉक्टर अमरजीत मेहता। एक बड़ा कहते थे कि दूध जो है माँ का ब्रेस्ट से नहीं आता है, दिमाग से आता है। तो स्ट्रेस एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, और बहुत सारी माएँ जो सुन रही होंगी वो उस बात से रिलेट भी करेंगी कि सब कुछ ठीक चल रहा था और कोई अचानक बहुत स्ट्रेस हुआ और मिल्क जैसे स्विच ऑफ हो गया हो। तो स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपकी आपके मिल्क आउटपुट के लिए
1: जी।
2: तो अपने आप को अपनी केयर करना, सेल्फ केयर करना, और सेल्फ केयर में न्यूट्रिशन की, भाई आप अच्छा खाएंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे, नींद लेंगे, वो तो है ही है
1: जी।
2: स्ट्रेसफुल जो चीज़ें हैं उनका भी टेक केयर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है
1: जी।
2: अब ये कहना बड़ा आसान है कि आप स्ट्रेस नहीं करो, टेंशन नहीं करो, बट टेंशन करना कोई हाथ की बात थोड़ी है।
1: राइट,
2: होती है टेंशन जिंदगी में, कभी किसी की कभी किसी की। तो उसको क्या करें आप? उसमें तो बेसिकली ये है कि पहले समझें कि क्यों टेंशन है, ठीक है, और उसमें परिवार, हस्बैंड, ग्रैंड पेरेंट्स मदद करें कि भाई क्यों है। अस्पताल में हैं तो डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चा बीमार है तो अच्छे से काउंसिल करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, यू नो आप वो चीज़ करें जो आपको आपके लिए रिलैक्सिंग है। वॉकिंग करें, उससे स्ट्रेस कम होता है। तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस की टेक केयर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए
1: जी। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि बच्चा अगर रो रहा है तो माँ तुरंत स्तनपान कराती है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, कितनी बार बच्चे को दूध मिलना चाहिए, ये कुछ मानक तय होते हैं?
2: बिल्कुल, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये कहते हैं कि ये ऑन डिमांड फीडिंग होनी चाहिए। ऑन डिमांड फीडिंग का मतलब यह है कि जब बच्चा मांगेगा तब दूध पिलाएंगे
1: जी।
2: और मांगने में आप उस पॉइंट तक वेट नहीं करें जब बच्चा बिल्कुल भूखा होकर जोर से क्राई करना शुरू कर देता है, बहुत रोना शुरू कर देता है, बिकॉज उस वक्त आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाना मुश्किल होगा
1: जी।
2: तो थोड़े से क्यूज आइडेंटिफाई कीजिए, अर्ली क्यूज कहते हैं हम। बच्चा जो है आपको इंडिकेशन देता है, बताता है, उठ गया, इधर उधर देख रहा है, आंखें चौड़ी करके, हाथ पे यू नो चूस रहा है, अपने मुँह पे लेके जा रहा है, हाथ पाँव मार रहा है, तो इसका मतलब भूखा है। तो उस वक्त फीडिंग करवाएं आप, सबसे अच्छी तरीके से होगा। ऑफन 2-3 घंटे पे मांगता है बच्चा, बट कई बार जल्दी भी मांग सकता है। कई बार जब आप सुबह उठते हैं, बच्चे को नहला के फीड करवा के आप सुलाते हैं, बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा भी सो सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑन डिमांड फीडिंग, नॉट बाय क्लॉक फीडिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कई बार देखते हैं कि बच्चे को दूध पिलाया, उसने अच्छा दूध लिया, 2 घंटे पे वो तैयार नहीं है, बट किसी ने उनको एडवाइस कर दिया कि 2 घंटे में पिलाएं, और बच्चा तो तैयार ही नहीं है, और माँ जो है परेशान हो रही है कि भाई पी नहीं रहा है, बच्चे को क्या हो गया है
1: जी।
2: तो ये ऑन डिमांड फीडिंग है, बाई क्लॉक फीडिंग नहीं है
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते मैडम जी।
1: जी नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
3: सतबीर सिंह सोनीपत हरियाणा से मैम। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बताएं क्या सवाल है आपका।
3: मैडम जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया गाय भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, तो जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको गाय भैंस का दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए?
2: बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दूध एक उनका सिर्फ एक फूड का एक हिस्सा होता है। आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो कि अनाज भी खाते हो, दाल भी खाते हो, फल फ्रूट सब्जी भी खाते हो, दालें भी बहुत तरह की होती हैं, जो लोग नॉन वेज हैं वो नॉन वेज भी खाते हैं, ठीक है। तो आपके खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है, और एक न्यू बोर्न बच्चा और एक बड़ा बच्चा जो है वो फ़र्क होता है। न्यू बोर्न का बिकॉज वो एक बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, माँ का दूध ही उसके न्यूट्रिशन का एक सोल नरिशमेंट है, एक सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा उसका दिमाग उस वक्त बढ़ रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस वक्त उसको बिल्कुल कस्टम मेड मिल्क जिसे कह सकते हैं कि भाई ये खाना पीना उस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली बना है। इनफैक्ट वो खाली ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी टू आदमी नहीं है, वो उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए उस पर्टिकुलर माँ ने वो मिल्क बनाया है
1: जी।
2: तो उस वहाँ रिप्लेसमेंट की गुंजाइश नहीं है। बड़ा बच्चा जो है वो एक डिफरेंट तरह का एक बच्चा है, बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें खा रहा है, और वहाँ जो वेरिएशन जो होता है वो उतना मैटर नहीं करता
1: जी। डॉक्टर साहब हमारे पास एक सवाल आ चुका है और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये लिख रहे हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे को कितना, कितनी बार और किस तरह का पूरक आहार देना चाहिए?
2: अच्छी गाइडलाइंस हैं, यदि आप आपका बच्चा, मैं ज्यूम करता हूँ कि 6 महीने से बड़ा होगा, तो आपको एक कार्ड मिलता है जिसको हम MCP कार्ड कहते हैं, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड कहते हैं। बहुत ही जानकारीदायक और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं। आप उस पर देखिए कि हर एज पे क्या चीज़ खिलाना चाहिए, कितनी बार खिलाना चाहिए, बट इन जनरल 6 से 9 महीने के बच्चे को 2-3 बार और 9 से 12 महीने के बच्चे को 3 से 4 बार खिलाना चाहिए खाना, माँ के दूध के अलावा। माँ का दूध बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, और इसके अलावा पूरक आहार 2 से 3 यदि 6 से 9 महीने का बच्चा है और 3 से 4 यदि 9 से 12 महीने का बच्चा है तो देना है। पूरक आहार में ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं वापस बताना चाहूँगा, 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, घर में बनी हुई कोई भी चीज़ बाज़ार की नहीं। दूसरी चीज़ है कि वैरायटी लेके आइए। एक अच्छा खाना वो है जिसमें एक तरह की कोई दाल भी है, एक कोई तरह का अनाज भी है, दाल और अनाजें कम से कम 15 या 20 तरह की होती हैं, आपकी मौसमी सब्जी फल भी हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो आप वैरायटी ऑफ फूड लेके आइए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि हमारे देश में जो बच्चे खाना खा रहे हैं उसमें वैरायटी जो है वो मिसिंग है, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा चीज़ ये भी है कि खाने को बहुत पतला नहीं देना है, खाने को गाढ़ा खाना देना है। ऐसा खाना नहीं कि चम्मच में ले और पानी की तरह वो आए, खाना ऐसा होना चाहिए जो चम्मच से आप उठाए तो उसकी ढेरी बन जाए। 6 से 9 महीने के या 9 से 12 महीने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये 3 बड़े इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट और विकास और वजन जो है बड़े अच्छे से बढ़ेगा
1: जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर जतिन मुंजाल जी का मैसेज आया हुआ है और आपके ये मुरीद मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत तारीफ इन्होंने लिखी है, लिख रहे हैं कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर रमेश सर एज अ प्रैक्टिसिंग, और उन्होंने अपना पूरा डिटेल करके लिखा है कि आप का जो बुक है 20,000 आवर्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग रिटन बाय ए होम्योनोलॉजिस्ट, आई वांट टू आस्क योर एक्सपर्ट ओपिनियन, तो इन्होंने इस तरीके से आपकी तारीफ लिखी है, क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मुंजाल सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद भी आपको कि आप प्रोग्राम पर आए और सुन रहे हैं
1: जी।
2: किताब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं 20 आवर्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डॉक्टर अनामिका बाकलीवाल जो हैं एक हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, बड़ी ब्यूटीफुल किताब है, जो पढ़ने के शौकीन हैं निश्चित तौर पे पढ़ें
1: जी। तो ये प्रतिक्रिया आपकी जो हम तक पहुंच गई है और सर ने आपका धन्यवाद किया है। जतिन जी, हम भी आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इतने गौर से प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ साथ सर को भी बहुत अच्छे तरीके से आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और समझते हैं कि किस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को जो लाभ मिल सके उसके लिए प्रयासरत हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग पर, देखा जाता है कि कुछ लोग बच्चों को शहद या घुट्टी वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये सही होता है नवजात शिशु के लिए?
2: नहीं, बहुत नुकसानदेह होता है। आप विद इन वन आवर बच्चे को माँ का दूध शुरू करें और 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं
1: जी,
2: कोई घुट्टी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई शहद नहीं, कोई ऊपर का दूध नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। आपका बच्चा न केवल स्वस्थ होगा बल्कि दिमाग से भी बहुत इंटेलिजेंट होगा
1: जी।
2: 6 महीने के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू करें। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएं, उनको अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ बाहर लेके जाएं, खिलाएं, थोड़ा सा बड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ, खेलने के लिए, ताकि वो बच्चा खूब खेले और उनके साथ में इंटरेक्ट करें, मोबाइल को दूर रखें। आई थिंक बच्चे को स्वस्थ और स्मार्ट बनाने के बड़े सिंपल तरीके हैं जो आज से 200 साल पहले भी सही थे और आज भी वो उतने ही सही हैं। वो एज ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं जो कभी भी गलत नहीं हुए।
1: जी डॉक्टर साहब, ये सौरभ गुप्ता जी ने हमारे पास सवाल भेजा है, लिख रहे हैं कि मेरा बेटा जब जन्म लिया था, इन्होंने लिखा है कि जब जन्म हुआ इनके बच्चे का, तो सिर का शेप थोड़ा तिरछा था, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? हालांकि आज के विषय से हट के ये सवाल है।
2: कोई बात नहीं सौरभ जी, मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनल डिफॉर्मिटी है। बच्चा एक तरफ सोता है तो थोड़ा सा गर्दन जो है वो, सिर जो है, एक तरफ से फ्लैट हो जाता है, ठीक हो जाता है समय के साथ में, लेकिन मैंने बच्चे को देखा नहीं है, मैं खाली स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ। तो एक जो भी पीडियाट्रिशियन आपके आसपास हो, आप उनसे देख के एक सलाह कर लीजिए।

0: डॉक्टर साहब, और क्या आप यहाँ पर कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में होती हैं कि स्तनपान कराने से जो है, ख़ास करके महिलाएं डरती हैं कि जो उनका फिगर है वो ख़राब हो जाएगा और उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर हो सकता है। तो क्या ये सच है या गलत है?
1: मैं हर माँ को, जो अभी माएँ हैं और जो कभी माँ बनने वाली हैं, उनको मैं ये पूरे साइंटिफिक तरीके से अश्योर करना चाहता हूँ कि आपको परफेक्ट शेप में रहने में ब्रेस्ट फीडिंग जितना मदद करती है, उतना कोई भी चीज़ मदद नहीं करती। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सेस वेट गेन होता है, उसको लूज़ करने में, आपकी हेल्थ में, आप हेल्दी हैं तो वो एक सबसे बड़ी ब्यूटी
0: उपलब्धि
1: है।
0: जी।
1: तो ब्रेस्ट फीडिंग जितना मदद करती है, कोई भी फूड नहीं करता, कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करती, किसी तरह की कुछ भी नहीं करता, सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, कॉन्शियंस हैं, एंड होना चाहिए, चाहे
0: जी
1: वो फिजिकल हो या मेंटल हो। बच्चे को दूध पिलाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन और बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस पे कह रहा हूँ और आपको अश्योर करना चाहता हूँ।
0: डॉक्टर साहब, एक समस्या और आती है कि जब स्तनपान किया जाता है, कराया जाता है, तो अक्सर माँ को पेन होता है। तो क्या ये कोई हार्मफुल तो नहीं है? आगे आने वाली कोई सिचुएशन, खराब की स्थिति तो नहीं है ये?
1: पेन ब्रेस्ट में कहना चाह रहे हैं आप?
0: जी
1: हाँ, देखिए क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की एक टेक्निक होती है जिसमें बच्चा जो है किस तरीके से माँ की ब्रेस्ट को लैच करता है, उसमें मोटे तौर पे हम ये कहते हैं कि निप्पल पे अलोन नहीं शक करे बच्चा। निप्पल एंड आपका जो ब्लैक वाला हिस्सा है, जिसको हम एरियोला कहते हैं, उस पे लैच करें कि बच्चे के मुंह में पूरा निप्पल हो और मोस्ट ऑफ दी एरियोला हो, तो बच्चे को ठीक से मिल आता है। लेकिन यदि बच्चा सिर्फ निप्पल पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि निप्पल पे करने से बिकॉज मिल्क नहीं आता, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर बाइट करता है और उसकी वजह से पेन होता है, काफ़ी पेन होता है उसकी वजह से।
0: जी
1: सॉल्यूशन भी और प्रिवेंशन भी है कि सही तरीके से अटैच किया जाए। एक दूसरा बड़ा कारण होता है इंगोर्समेंट, कि दूध बहुत सारा बना एकदम और वो निकल नहीं पाया, तो ब्रेस्ट जो है इंगोर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है। अगेन इलाज उसका भी वही है कि तरीके से सही तरीके से अटैचमेंट किया जाए, ताकि माँ का मिल्क जो है वो बन रहा है, वो ठीक से टाइम से रिमूव हो पाए। तो ये दो प्रॉब्लम्स के अलावा ऑफन ब्रेस्ट में कोई पेन का कोई कारण नहीं होता। इन दोनों चीज़ को वो प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज जो आपको टेक केयर कर रहे हैं, उनकी
0: जी
1: जिम्मेदारी है कि उनको ठीक से सलाह दें। और आपको कभी प्रॉब्लम है अस्पताल में है तो सलाह लीजिए, नहीं है तो वापस जाके डॉक्टर लोगों से सलाह कीजिए,
0: जी
1: डॉक्टर से, नर्स से, जो भी आप संपर्क में हैं।
0: जी यानी थोड़ा सा बच्चे को भी ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से स्तनपान उसको कराया जाए।
1: हाँ, तो उसमें बच्चे को, हाँ ठीक कहा आपने अनुराधा जी, बेसिकली बच्चे को भी लर्न करना है, और वो एक प्रोसेस है जो पर्टिकुलरली जो न्यूली फर्स्ट टाइम मदर जो होती हैं, उन दोनों को सीखना पड़ता है। और सिजेरियन विजेरियन होता है तो फिर थोड़ा सा पेन वेन होता है इधर उधर हिलने में डुलने में, तो थोड़ा सा एक प्रोसेस होती है लर्न करने के लिए, थोड़ा समय लगता है, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे।
0: जी
1: बट एक बार आप ठीक से समझ लेते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए भी इंजॉइंग होती है और बच्चे के लिए भी इंजॉइंग होती है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे करनी हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर लेंगे।

0: जी हाँ, मुस्कुराहटों में चार चांद लग जाते हैं जब माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अवसर पर इस बात पर कि हमारे लिए जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके लिए स्तनपान कितना ज़रूरी है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास ऐश्वर्या आनंद जी का सवाल आया हुआ है। लिख रही हैं कि अगर माँ को बुखार, सर्दी या कोई संक्रमण हो जाए तो क्या स्तनपान जारी रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, माँ को बुखार हो, सर्दी हो या कोई इन्फेक्शन हो, बिल्कुल जारी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है
0: जी। और इनका एक और सवाल जो इन्होंने भेजा है कि जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनके लिए स्तनपान जारी रखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है?
1: ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो सरकारी नौकरी में हैं या जिनको छुट्टी मिलती है मैटरनिटी लीव, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दें, मीनिंग माँ का दूध और कुछ नहीं
0: जी।
1: जब जाना पड़े या वो माएँ जिनके पास छुट्टियां नहीं हैं, वहाँ परिवार का बड़ा योगदान है। बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, पास में घर है, फैमिली मेम्बर लेके जा सकते हैं फीडिंग के लिए, क्रैश है, बच्चे को रख सकते हैं, या फिर एक्सप्रेस करके मिल्क जो है रख सकते हैं फ्रिज में, जाते वक्त घर लेके जा सकते हैं और आपके पीछे नेक्स्ट डे उसको फीड करा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है
0: जी,
1: परिवार के सदस्यों की, एम्प्लॉयर की, आपके जो साथी हैं उनकी, कि उस चीज़ में मदद करें
0: जी।
1: ये ऐसी चीज़ है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, यह समाज की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। जब हम सब वो उसकी ओनरशिप लेते हैं, कहते हैं कि हमें इसको पॉसिबल करना है, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ उस फैमिली का बच्चा नहीं है, वो हमारे समाज का बच्चा है, हमारा भविष्य है। क्या मालूम वो बच्चा जो है किसी दिन डॉक्टर बनेगा और हम बीमार होके हमारा इलाज करेगा, या कोई अच्छी बिल्डिंग बनाएगा, या कोई अच्छी किताब लिखेगा। सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हम सब जिम्मेदारी नहीं समझेंगे इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए माँ से एक्सपेक्ट करना कि वो सॉल्यूशन लेके आएगी, वो बेमानी है
0: जी। यानी सारांश में कहा जाए तो वो एक परिवार का हिस्सा नहीं है बच्चा, बल्कि इस देश का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है और पूरे विश्व का हिस्सा है। तो अगर वो स्वस्थ रहेगा तो आपकी जो कड़ी है वो स्वस्थ रहेगी, यानी चेन से ही चेन जुड़ी है। तो बाकी बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर साहब, एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा।

0: एक जिम्मेदारी होती है, और अगर नानी दादी को चाहिए कि बच्चा स्वस्थ रहे और ऐसे ही जो है चीज़ें चलती रहें घर में, एक दूसरे से बातचीत होती रहे, जैसा कि अभी ये बच्चा अपनी नानी से कह रहा था, तो ज़रूरी है कि बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए और एक पारिवारिक सुखी माहौल बना रहे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जोया जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से सवाल आया है कि वॉट हैपन्स वैन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, देन स्ट्रेट अवे द फर्स्ट थिंग ही वॉज फेड वॉज अ हनी, वॉज दैट द गुड थिंग और बैड?
1: जोया जी नमस्ते। मैं देख सकता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया है आपने,
0: जी
1: और पहले भी बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, नज़र आ रही है।
0: जी,
1: बड़ी
0: नियमित श्रोता
1: खुशी
0: हैं
1: की
0: हमारी,
1: बात
0: जी
1: है, नियमित श्रोता हैं। हनी देना नुकसानदेह है, नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट रेयरली हनी के देने से बड़ी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी भी हो सकती है, कॉमन नहीं है, बट इन जनरल जो है कुछ भी देना चाहिए, वो हनी हो या गुटी हो या पानी हो या ऊपर का दूध हो, सब कुछ, इवन सिंगल फॉर्मूला भी देना जो है बच्चे के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नुकसानदायक है।
0: जी, ये सवाल आया है हेमा जी का, हालांकि हम इनका एक सवाल ले चुके हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तो इसको लेना ज़रूरी है। लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क कैसे स्टोर करना चाहिए?
1: तो हेमा जी, जैसे हमने बात किया, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मिल्क एक्सप्रेस तभी किया जाए जब ज़रूरत है, और जब ज़रूरत है तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं 4 से 6 घंटे रूम टेम्परेचर पर, 24 घंटे तक आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, और यदि आप डीप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जमा के, जिसमें फ्रीज कर जाता है मिल्क, तो वो 3 से 6 महीने तक भी रुक सकता है।
0: जी, डॉक्टर साहब एक सवाल हमारे पास आया हुआ है कि यदि ट्विंस को सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है तो मदर को कुछ दिक्कत हो सकती है क्या, क्योंकि ज़्यादा जो है दूध की आवश्यकता होती है अगर ट्विंस बच्चे हैं तो?
1: डेफिशिएंसी पूछना चाह रही हैं सपना जी। सपना जी, दो बच्चे हैं तो डबल मदर मिल्क को मिल्क प्रोड्यूस करना है। एक बच्चा जो है करीब, एक बच्चे के लिए 2-3 महीने का हो जाता है, तो उसको माँ से करीब 600 से 700 कैलोरीज जो है वो मिल्क के थ्रू जाती है। 600 700 कैलोरीज का मीनिंग ये है कि आप 2-2.5 घंटा वॉक करें रोज़ाना, और उसमें जो कैलोरीज खर्च होगी वो 600 700 के बराबर होती है।
0: जी,
1: तो दो बच्चे हैं तो डबल हो जाती है। तो माँ को फिर जो है उसके अकॉर्डिंगली खाना और पीना पड़ेगा। उसकी डाइट जो है, माँ की डाइट है, उनकी डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए एंड रिच भी चाहिए, कि उनको अनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड लिक्विड्स एंड प्रोटीन्स एंड दूसरे मिनरल्स, यू नो, बैलेंस्ड फूड राइट क्वांटिटी में उनको मिले, ये बड़ा जरूरी है।
0: तो श्रोताओं, आज
1: डेफिशिएंसी माँ को नहीं होती यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते
0: ध्यान
1: हैं तो।
0: रखेंगे, जी बहुत सारी बातें हैं जिनको बहुत शॉर्ट में डॉक्टर साहब ने अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है कि आपने हर बात को नोट आउट कर लिया होगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर आज हमने विशेष चर्चा की है, और हमारे विशेषज्ञ आज हमारे साथ रहे डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, जो कि नई दिल्ली एम्स में बाल रोग विभाग के अंतर्गत नवजात शिशु विज्ञान प्रभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख हैं। तो उम्मीद है कि चर्चा आपको पसंद आई होगी और आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज, और अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सदस्यीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पुराने सिक्कों के खरीदार के समर्थन वाले वीडियो को फर्जी बताया। लोगों से ऐसे भ्रामक दावों से सतर्क रहने की अपील करी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों को बिजली बिल शून्य हो गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने चेहलुम जुलूस के मद्देनजर आज दोपहर 2 बजे से दक्षिणी दिल्ली में कई मार्गों पर विशेष यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किए। उड़ीसा में बाढ़ के हालात में सुधार, नदियों का जलस्तर घटा, अगले 2 दिनों के लिए फिर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति जारी। बाग जिले में निहत्ते नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से बढ़ा तनाव। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: शिवानी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ ज्योतिका और 4:03 का समय हो चुका है बाय द स्टूडियो क्लॉक और ये वक्त है अल्फा जेन का, एक ऐसा शो जो आपकी जनरेशन के सवालों, कंफ्यूजन और ड्रीम्स की बात करता है। अब अगर कॉलेज लाइफ चल रही है, डिग्री हाथ में है या होने वाली है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है आपके कि अब यहां से आगे क्या, तो आज अल्फा जेन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ की। इट्स ओके अगर आपके पास अभी कोई सॉलिड प्लान नहीं है, कोई बात नहीं, सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए और इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनिए। आप सुन रहे हैं अल्फा जेन विद मी ज्योतिका। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव अ प्लान।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन विद मी ज्योतिका। देखिए, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। पता है आपको, आपके आसपास के कॉलेजेस में हजारों स्टूडेंट्स रोज उठते हैं और सीधा कंपेयर करने बैठ जाते हैं अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल से। किसी का एमबीए हो गया, किसी का स्टार्टअप हो गया, किसी का अब्रॉड प्लान बन गया और हम खुद से पूछते रह जाते हैं कि यार अब मेरा क्या होगा। देखो, कंफ्यूजन का मतलब फेलियर तो नहीं होता। कंफ्यूजन का मतलब होता है कि आप अभी सीख रहे हैं। और सीखने से कैसा डर? देखो, जब हम प्लान करते हैं तो अच्छा तो रहता है, लेकिन इतना एडवांस में प्लान करके अपने आप को स्ट्रेस देना, एंजाइटी में डालना, ये कहां लिखा है? मतलब इट्स ओके इफ यू डोंट हैव अ प्लान। देखो, उसका फायदा तो यही है ना कि आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो गई, आपको फ्यूचर के बारे में इतनी टेंशन नहीं लेनी। आप आराम से जब काम डाउन होंगे तो आपके लिए नए दरवाजे ओपन होंगे, आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि जब टेंशन होती है ना दिमाग में, तो ना ग्रोथ हो पाती है और ना आप किसी काम पर फोकस कर पाते हैं। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आज कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन टुमारो आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपके फेवर में काम जरूर करेगा। सुनते रहिए अल्फा जैन विद मी ज्योतिका।

0: लिखना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी वेरी स्मॉल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अल्फा जर्न विद मी ज्योतिका. देखिए, एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर तो होता ही है, सेफ ऑप्शन चूज करो हमेशा कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी कहती है जल्दी सेटल हो जाओ, और बीच में कहीं हम यूं ही बेचारे से फंस जाते हैं, है ना. कभी समझ ही नहीं पाते कि करें तो क्या करें. कभी कभी प्रेशर इतना होता है कि हम अपनी आवाज ही सुनना बंद कर देते हैं. पर याद रखिए, लाइफ कोई रेस नहीं है और हर किसी का फिनिश लाइन अलग होता है. सो कंपेयर करना तो प्लीज छोड़ दीजिए. सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. थोड़ा नॉइज आसपास की कम कीजिए, अपनी आवाज को थोड़ा सा अप करिए. मतलब ऑफकोर्स मैं चिल्लाने को नहीं कह रही हूं, लेकिन अपने दिल की आवाज को सुनिए. जब आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करते हैं, प्रेशर अपने आप मैनेजेबल सा हो जाता है. कहते हैं, इट्स अ वेरी फेमस सेइंग, कि अगर प्लान ही करना है तो ये प्लान करो कि जब तक जिंदगी है हर एक पल में खुश रहना है. क्योंकि जिंदगी तब शुरू होती है, तब चल पड़ती है, जब हम किसी और चीज की प्लानिंग में बिजी हो जाते हैं. देखिए, पेरेंट्स का प्रेशर तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो हमारी फिक्र करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. लेकिन मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी, अगर आप हमें सुन रहे हैं, कि प्लीज अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करें. उनका फोकस बिगड़ जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम थोड़ी हिल सी जाती है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, एग्जॉशन होता है, और कहीं ना कहीं कभी कभी रात को नींद आना बंद हो जाता है. एंड आई एम श्योर एज पेरेंट्स, हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते. तो एज अ पेरेंट, अगर आप सुन रहे हैं एंड अगर आप स्टूडेंट हैं और मुझे अभी फिलहाल सुन रहे हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपने दिल की बात खुलकर अपने पेरेंट्स के साथ करें, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं. अगर आपको कंपैरिजन करते हुए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अपने दोस्तों से बात करें, अपने सिबलिंग से बात करें, अपने पड़ोसी, कोई भी आपका वेल विशर हो, आप उनसे बात करें. अंदर ही अंदर वो बातें जब आप रखेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी. और रियलिस्टिक गोल्स बनाइए. अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट जाके आर्ट्स करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर आप रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ जंपिंग, तो आई एम श्योर आप वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं. स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं अल्फा जर्न विद मी ज्योतिका.

जीना ही तो है हमें, जीना नहीं छोड़ना है, है ना? जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि पढ़ाई भी करनी है, गोल्स भी सेट करने हैं, लेकिन जीना नहीं छोड़ना है। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन विद मी ज्योतिका, और मैं आपसे अब बात करना चाहूँगी सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, और वो है कि इट्स ओके। जी हाँ, इट्स ओके टू एक्सपेरिमेंट। कॉलेज का टाइम सिर्फ डिग्री के लिए थोड़ी होता है, ये टाइम होता है ट्राई करने का, गलती करने का, सीखने का। इंटर्नशिप्स हो, फ्रीलांसिंग हो, क्रिएटिव फील्ड हो, सब कुछ ट्राई करना अलाउड है। हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, पर हर एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा कर जाता है। तो बात देखो बड़ी सिंपल है, एक्सपीरियंस कलेक्ट कीजिए, परफेक्शन नहीं, जो चीज आपको थोड़ा जिंदा महसूस कराए उस डायरेक्शन में एक स्टेप जरूर लीजिए। देखो कॉलेज लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करना बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने कहा, स्पेशली जब बात पढ़ाई की होती है, आप सब्जेक्ट में भी तो अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हर फील्ड ट्राई करके ही तो पता चलता है कि आपका असली इंटरेस्ट किस चीज में है। गलतियां भी लर्निंग का पार्ट होती हैं और वहीं आपको ग्रो करना भी सिखाती हैं। तो मार्क्स के साथ साथ अपनी क्यूरियोसिटी को भी इम्पोर्टेंट

दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो बस सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और अपने सपनों को एक नई डायरेक्शन दीजिए। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

चलिए एक बात आप मेरे साथ बहुत अच्छे से और बहुत जोरों से दोहराएंगे, प्रॉमिस। जोर से कहिए कि इट्स ओके टू नॉट हैव अ प्लान। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, इट्स ओके इफ आई डोंट हैव अ प्लान। जी हाँ, अगर आप 18 के हैं, 20 के हैं या 22 के आसपास, और अगर आपको अभी तक एग्जैक्ट करियर रोड मैप नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट हैं। कभी कभी प्लान ना होना कंफ्यूजन नहीं

फ्रीडम होती है। देखो सही चीज ढूंढने की जब आपको फ्रीडम मिलती है तो असल फ्रीडम तो वही हुई ना। इस फ्रीडम का मतलब है एक्सप्लोर करना, ट्राई करना और अपनी प्रेफरेंसेस को डिस्कवर करना। सॉल्यूशन भी सिंपल है, अपने लिए क्यूरियोसिटी को प्रायोरिटी बनाइए। हर एक्सपेरिमेंट, इंटर्नशिप, हॉबी या वॉलंटियर वर्क एक नया पर्सपेक्टिव देगा आपको और धीरे धीरे क्लैरिटी नेचुरली आ जाएगी। याद रखिए कि लाइफ ना कोई एक लीनियर पाथ नहीं है कि इसी पे बस चलना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। नहीं, इस जर्नी को एंजॉय करना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक स्मॉल स्टेप्स, कीप लर्निंग और सेल्फ डाउट को टेम्परेरली साइड पे रख दीजिए, क्योंकि हर बार लाइफ ना परफेक्ट बनाना या एक परफेक्ट प्लान के साथ चलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बिना प्लान के चलना भी हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग और नए आइडियाज ही तो हमें ग्रो करते हैं। हर आंसर आपको आज ही मिलना जरूरी नहीं है और हर रास्ता पहले से डिसाइड होना भी जरूरी नहीं है। कॉलेज लाइफ है दोस्त, अच्छे से एंजॉय करिए क्योंकि ये दिन वापस दोबारा नहीं आते हैं।

देखो, हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्लान बनाओ, गोल सेट करो, सक्सेस को टारगेट करो। पर सच ये है कि काफी सक्सेसफुल लोगों का क्लियर प्लान कभी था ही नहीं। उन्होंने बस क्यूरियोसिटी और पैशन को फॉलो किया। अल्फा जन मानता है जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, सीख रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कोई लॉस्ट पे नहीं हो, आपका कुछ नहीं छूट रहा। प्लान का एब्सेंस आपको लिमिटेड नहीं करता, बल्कि नए ऑप्शंस के लिए ओपन करता है। इस पर्सपेक्टिव से भी कभी इसको देखिए। सो, अपने लिए आप मिनी गोल्स सेट करिए जो आपको आज मूव करने का रीजन दे। छोटे छोटे अचीवमेंट्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और आपको क्लैरिटी देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप आज लॉस्ट हैं, एकदम समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। हर कोई कंपेयर करता रहता है, प्रेशर देता रहता है। लेट मी गिव यू वेरी स्मॉल एंड अ वेरी सिंपल टिप। आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इस हफ्ते एक नई स्किल सीखनी है, या रोज सिर्फ 30 मिनट्स अपने सपने के लिए देना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आगे चलकर आपको बड़ा रिजल्ट देंगे। देखो, प्रोग्रेस हमेशा एक ही दिन में तो नहीं दिखती, लेकिन हर छोटी अचीवमेंट आपको कॉन्फिडेंस जरूर देती है। तो बस एक स्टेप लीजिए, फिर अगला, और धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। सो एज आई एम ऑलवेज सेइंग इन द शो राइट नाउ, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अगर आपके पास अभी कोई सॉलिड प्लान नहीं है तो आपको पैनिक तो नहीं करना है। सबसे पहले वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जेन और मैं हूं ज्योतिका। नो प्लान मीन्स ओके, इट्स ओके, पैनिक नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप आपको होना चाहिए कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी स्किल्स, इंटरेस्ट और वैल्यूज आप नोट करिए कहीं पर। स्टेप टू होना चाहिए एक्सपेरिमेंट, जी हाँ, काम करिए, इंटर्नशिप्स करिए, फ्रीलांसिंग करिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ट्राई करिए। और स्टेप थ्री, ऑब्जर्व करें, एडजस्ट करें, हर ट्राई से सीखिए और अपना डायरेक्शन थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। क्लैरिटी आपको एक दिन में नहीं आती है, पर यह प्रोसेस नेचुरली बिल्ड होता है। और हमेशा याद रखिए कि प्लान ना होने का मतलब ये नहीं कि आप स्लो हैं या आपको राइट प्लान के लिए रेडी कर रहा है। सो हर वीक एक छोटी एक्टिविटी अपने लिए चूज करिए जो आपको इंस्पायर करे और मोटिवेट करे। या स्मॉल एक्शंस होते हैं ना, कॉन्फिडेंस आपको क्लैरिटी भी देते हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट के पास अभी अगर कोई क्लियर प्लान नहीं है, आपके बच्चों के पास क्लियर प्लान नहीं है, तो सबसे बड़ा रोल आपका यहीं पर आता है। प्रेशर नहीं देना है, सपोर्ट देना है। हर बच्चा अपनी स्पीड से अपना रास्ता ढूंढता है। बार बार ये पूछना, आगे क्या करोगे, अरे आगे क्या करोगे, इससे कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए और उन्हें एक्सप्लोर करने का स्पेस दीजिए। ट्रस्ट और ओपन कॉन्वर्सेशंस प्रेशर से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। कभी कभी सिर्फ इतना ही कह देना कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी भी प्लान से ज्यादा पावरफुल होता है।

वेलकम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल एनर्जेटिक वाला सॉन्ग फ्रॉम उरी। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, मैं हूं ज्योतिका और आज हम बात कर रहे हैं करियर पाथवे के बारे में। जी हाँ, करियर तो बनाना आसान बिल्कुल नहीं होता है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, लेकिन आजकल की जनरेशन के पास इतने ऑप्शंस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि कन्फ्यूजन होना तो बड़ी आम सी बात है ना। ऑप्शंस इतने ज़्यादा खुल चुके हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, एआई, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, हर फील्ड में नए करियर पाथवेज खुल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने। क्या सिर्फ मार्क्स डिसाइड करते हैं करियर, या फिर स्किल्स या पैशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने जो अभी इतनी देर इतनी सारी बातें करी हैं, आई एम श्योर यू हैव पिक्ड अप योर सिलेक्टिव मटेरियल, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू साउंड वेरी ज्ञानी टू यू। आप अपने हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, आप इंटर्नशिप्स करके सीखना चाहते हैं, आप अपने आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है आप उसको ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप में वो जज्बा है सीखने का तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अभी से ऐसा है कि नहीं भाई, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकती है। सो यू शुड लेट योरसेल्फ ओपन इन द ग्राउंड कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं, एंड आई एम श्योर इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड आप जरूर आगे जाएंगे। अपने लिए थोड़ा वीकेंड्स पर भी समय निकालिए, क्योंकि अगर आप हमेशा भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे कुछ सीखने के लिए, या आप पढ़ते रहेंगे, तो आप अपने आप को रेस्ट कब देंगे? आपके दिल को, आपके दिमाग को भी तो रेस्ट जरूरी है, क्योंकि आप जब वीकेंड पर या कभी भी रिचार्ज होते हैं तो दुगनी स्पीड से आगे जाते हैं। वो बचपन की कार याद है ना, जब हम उसको पकड़ के पीछे खींचते थे और फिर छोड़ते थे, कितनी स्पीड से आगे जाती थी। तो बस हमको भी वही करना होता है, कभी कभी पीछे जाना होता है, दो कदम सांस लेनी होती है और फिर दौड़ लगानी होती है। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन विद मी ज्योतिका।

ऐसा नहीं होता कि बचपन से हमसे ये पूछा जाता है कि बड़े होके आप क्या बनोगे, लेकिन आज के टाइम में शायद इस सवाल का एक आंसर होना तो जरूरी नहीं है। बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने अपनी जर्नी एक फील्ड से शुरू करके किसी और फील्ड में नाम कमाया है। इसीलिए करियर प्लानिंग के साथ करियर एक्सप्लोर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, तो आज कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और आपकी अडेप्टेबिलिटी जैसे स्किल्स पे भी गौर फरमाती है। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और उसके साथ करियर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं

सीखने की क्यूरियोसिटी रखते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में अपनी जगह आसानी से बना सकते हैं। और इसी नोट के साथ अब मैं ज्योतिका लेती हूं आपसे इजाजत। आज अल्फा जेन का टेक अवे सिंपल है, इट्स ओके टू नॉट हैव अ प्लान। आपका काम ये नहीं है कि आज ही पूरी जिंदगी फिगर आउट कर लो, आपका काम है क्यूरियस रहना, सीखते रहना और अपनी ग्रोथ पे फोकस करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई नाउ टेक अ लीव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर अब तक के पेश हैं मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में विपक्ष के

नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पुराने सिक्कों के खरीदार के समर्थन वाले वीडियो को फर्जी बताया। लोगों से ऐसे भ्रामक दावों से सतर्क रहने की अपील की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने चेहल्लुम जुलूस के मद्देनजर आज दोपहर 2 बजे से दक्षिणी दिल्ली में कई मार्गों पर विशेष यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किए। ओडिशा में बाढ़ के हालात में सुधार, नदियों का जलस्तर घटा, अगले 2 दिनों के लिए फिर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति जारी, बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से बढ़ा तनाव। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार एफएम रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर यह है सुषमा की वाणी जो करती है स्वागत सिटी लाइट्स में आप सभी लोगों का। बिल्कुल आपकी शाम सुहानी बनाने और खूबसूरत गाने लेकर और दिल्ली में क्या हो रहा है वो सब बातें करने के लिए आ गई हूं ना मैं स्टूडियो में। तो रहेंगे सुषमा के साथ इन द प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

बिल्कुल, और जीना तो वही होता है जो आज जो ये पल है उसको जी लेता है और यही सोचता है कि बस इसके बाद मुझे कल के पल की वो क्या अभी जो पल है उसकी भी नहीं पता है। यानी हर पल को जीने की चाह हर किसी में होनी चाहिए। फिलहाल मैं वेदर की अगर बात करूं तो दिल्ली का मौसम जब मैं आ रही थी तो थोड़ा सुहाना था क्योंकि बारिश हो रही थी, और बारिश जब होती है तो ह्यूमिडिटी का होना लाजमी है। तापमान बेशक 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है लेकिन उमस के कारण ये 36 डिग्री सेल्सियस महसूस हो रहा है हम सबको। बिल्कुल स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग एवरीवेयर स्वेटिंग। अब जब ऐसा मौसम हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अगर घर में है तो एसी चलाना पड़ेगा ताकि ड्राई रहें आप। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, एक अच्छा सा गाना बजा सकती हूँ आपके लिए सिटी लाइट्स में।

0: बिल्कुल, मौसम का आनंद तो आप ले रहे हैं और गाने का भी आनंद आप मेरे साथ रेनबो पर ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत ज़रूरी होती है जो औरतों की लाइफ में या महिलाओं की लाइफ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब बच्चों की बात आती है, नन्हे मुन्ने बच्चों की बात आती है। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम मना रहे हैं, पूरा देश पूरा विश्व मना रहा है ब्रेस्ट फीडिंग डे। बिल्कुल, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे बहुत ज़रूरी है और शिशु और माँ दोनों के लिए ये जो स्तनपान है कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों कमी आती जा रही है इन सब चीज़ों में। तो आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में, स्टूडियो में तो नहीं लेकिन फोन लाइन के जरिए जरूर मैं कनेक्ट होने जा रही हूँ, डॉक्टर ऋचा पाराशर हैं जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, शिशु चिकित्सक के तौर पर कार्य कर रही हैं, उनसे मैं बात करती हूँ फोन लाइन के जरिए। हेलो
1: हेलो
0: हेलो डॉक्टर ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी लाइट्स में आपका।
1: नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू
0: जी। ऋचा मैम, जैसे कि आप जानती हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है इस बारे में। और आप कहाँ से, मुझे मैंने आपको कहाँ आप कार्य कर रही हैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए।
1: मैम मैं माता गुजरी हॉस्पिटल है वेस्ट दिल्ली में, तिलक नगर में, वहाँ पर मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पिछले ऑलमोस्ट 15-20 साल से मैं जुड़ी हूँ हमारे MCD से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से। और करंटली मैं हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वेस्ट दिल्ली की स्थिति ब्रांच की अध्यक्ष हूँ
0: जी मैम।
1: और मैं आज का जो विषय है ब्रेस्ट फीडिंग, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है फॉर द सोसाइटी। एंड ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के अनेक फायदे हैं, ये फायदे सिर्फ बच्चे के लिए नहीं माँ के लिए भी है। जब भी हमारे पास बच्चा पैदा होता है तो अक्सर हम उनको, मदर्स को समझाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक अमृत है, फर्स्ट वैक्सीन है जो माँ अपने बच्चे को दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें कुछ अनेक एंटीबॉडीज हैं जो बच्चों को बीमारियों से लड़ने में शक्ति देती हैं, जैसे निमोनिया, डायरिया, जो कि इन्फेंट मोर्टैलिटी के, अंडर 5 मोर्टैलिटी के मेजर कॉजेज है, और इवन कान में इन्फेक्शन जिसको इंग्लिश में ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं
0: जी मैम।
1: ये पाया गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनको एलर्जीज, एस्थमा, इनके चांसेस भी कम होते हैं और वो मोर, दे आर मोर इंटेलिजेंट बिकॉज उनके ब्रेन IQs आर मच बेटर ब्रेस्ट फेड बच्चों के। तो इनके फायदे अनेक हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, और बच्चे के लिए नहीं माँ के लिए भी अनेक फायदे हैं, क्योंकि माँ जो है जो ब्रेस्ट फीड कराती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। जब भी हम इमिजिएटली डिलीवरी के बाद इमिजिएटली अगर बच्चे को हम गोल्डन आवर में, मतलब विद इन द फर्स्ट आवर ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उसका यूट्रस, बच्चेदानी जो है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जस्ट इमिजिएटली आफ्टर डिलीवरी, जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, वो भी काफी कम हो जाता है। तो
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋचा, आपने बहुत इसके बढ़िया वाले बेनिफिट्स बताए हैं, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे को उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और माँ के लिए भी बेहद जरूरी हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फर्स्ट, जो शुरू के 6 महीने होते हैं वो तो बहुत ही अमृत के समान होते हैं बच्चे के लिए और हर माँ को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा, बहुत सारे क्योंकि प्रोफेशनल्स होते हैं, मदर वर्किंग होती हैं, कई बार मुश्किल हो जाता है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उस चीज के मैम?
1: देखिए मैम, वर्किंग मदर्स डेफिनेटली वर्किंग मदर्स हैं जिनको डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर

0: ग्रेजुअली अगर वर्किंग मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगी तो उन तो नॉर्मली क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो धीरे धीरे आना बंद हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: जो हमारी मेन प्रक्रिया क्या होती है, बच्चा माँ बच्चा जो है माँ को जब सक करता है ब्रेस्ट पे, तो माँ की ब्रेस्ट से सिग्नल जाते हैं उनके ब्रेन में, मदर के ब्रेन में, जिसकी वजह से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. प्रोलैक्टिन से दूध बनता है, ऑक्सीटोसिन से दूध निकलता है.

0: और जो बच्चे टॉप मिल्क में होते हैं एज वी ऑलरेडी स्टेटेड उनको रिस्क ऑफ निमोनिया डायरिया इन्फेक्शन बढ़ जाता है. एट द सेम टाइम जब वो बॉटल फीडिंग पे चले जाते हैं तो बॉटल फीडिंग के अपने रिस्क होते हैं, ये इन्फेक्शन भी बढ़ जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो बच्चे जो बॉटल फीड पे होते हैं उनका जो मुंह का मसल का कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है और उनके दांत भी ऊंचे हो सकते हैं, उनके दांत में कीड़े भी लग सकते हैं, बार बार ही उनको डायरिया इन्फेक्शन हो सकता है. तो कोलेस्ट्रम जो कि माँ के दूध में पहला दूध जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में चीज बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा रिच होता है विटामिन ए से, आई की एंटीबॉडीज से. तो हम अपने बच्चे को वंचित रख रहे हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज, बहुत सारी प्रोटेक्शन से अगर टॉप मिल्क हम रिजॉर्ट करते हैं.
1: बिल्कुल मैम, डॉक्टर रिचा मैम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आपने आज हमसे साझा की और वैल्यूएबल अपना टाइम दिया सिटी लाइट्स प्रोग्राम में. इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच मैम.
0: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू. और मुझे उम्मीद है कि जो माताएं हैं किसी ना किसी तरह अपने लिए समय निकालेंगे, अपने बच्चे के लिए, अपनी नन्ही परी के लिए तो जरूर निकालेंगी.

बिल्कुल, एक नन्ही परी आपके घर में है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि आगे चलकर जब बड़ी होगी तो वो भी एक माँ का रूप लेगी और फिर से ये जो सिलसिला है आगे बढ़ता जाएगा। तो जागरूकता कितनी ज़रूरी है उन सब के लिए जो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों से अवॉइड कर देते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन वो बच्चे की जो शुरुआती समय है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर ऋचा हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए हम उनका फिर से धन्यवाद करते हैं। और अगर घर में मेहमान आया है तो उसके लिए बस इतना ही कहेंगे, और क्या, तुम आए तो हवाओं में खूबसूरत महक गया मेरा घर। थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ कि दिल्ली का ट्रैफिक कैसा होने वाला है आपके लिए। आप सुन रहे हैं सुषमा के साथ।

बिल्कुल, गाना जब सुनते हैं तो हर तरफ बहुत ही मजा आ जाता है, लेकिन जब भी ट्रैफिक में फंस जाए तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, जाहिर सी बात है। घंटों कई बार खड़े रहते हैं और रास्ते पूरी तरह चौक हो जाते हैं। अब थोड़ा बहुत तो आइडिया मैं भी बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ, सरिता विहार की तरफ और लाजपत नगर की तरफ, अगर आप उस तरफ उस रोड से जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिल सकता है। साथ ही साथ ओखला की साइड भी काफी ट्रैफिक है और हुमायूं का मकबरा, ये वाला रोड जो जा रहा है, हौसखास की तरफ भी ट्रैफिक मिल सकता है, मालवीय नगर, कुतुब मीनार, इसके अलावा और कहाँ पर है, महिपालपुर की तरफ भी हैवी ट्रैफिक दिखाया जा रहा है। दिल्ली में आसपास जो सेंट्रल, जैसे सीपी के आसपास भी कई बार ना ट्रैफिक रहता है, लेकिन गुड़गांव की तरफ अगर आप जा रहे हैं उस तरफ पे तो थोड़ा

0: ट्रैफिक आपको मिल सकता है। द्वारका एक्सप्रेस के पास ये जो सरहोल रोड है, इस तरफ भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। मैं वैसे दिल्ली के आसपास ही का एरिया बताती हूँ, शालीमार बाग की तरफ, रिंग रोड की तरफ भी थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है आपको। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे बता सकते हैं 9868107070 पर। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
3: घर। नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और मैं हूं सुषमा। और छत और धूप और आपके खर्च केवल जीरो। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सरकार की, वो भी इस बात की कि पीएम सूर्य योजना घर के तहत 2.5 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर जो है सिस्टम वो लगा चुके हैं और सौर ऊर्जा का उत्पादन का जो आंकड़ा है 500 मेगावाट के पार भी पहुंचाना चाहती है, जो अभी तक 490 मेगावाट है। मगर अभी तक इस योजना के तहत केवल 2500 से अधिक छतों पर ही रूफटॉप सोलर लग चुके हैं। तो आप भी इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। तो ऐसी योजनाएं जो होती हैं आप ही के लिए बनाई जाती हैं।

सोचिए हम अपने घरों में कितने सारे ऐसे कपड़े रखते हैं जो कभी यूज ही नहीं होते हैं ना, हमारी अलमीरा भरी रहती है। लेकिन अब जल्दी ही दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है, और बल्कि सोमवार को ये शुरुआत हो चुकी है कि जो पुराने कपड़े हैं उनका रीयूज या फिर रीसाइकिलिंग और अपसाइकिलिंग, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जो कपड़े हैं हमारे जो वेस्ट होता है घर पे, इनको रीयूज करके और इनका कहीं ना कहीं फायदा हो और उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्हें वाकई में इनकी बहुत जरूरत है। अभी तो शुरुआत है वो पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन से हो चुकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में यानी पहले चरण में पंजाबी बाग वेस्ट, शालीमार बाग, मयूर विहार फेज 1, शाहदरा और रोहिणी सेक्टर समेत 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर अर्पण केंद्र शुरू किया है। यानी ये जो योजना है इसका नाम दिया गया है अर्पण, और कुल 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे और इन पर QR कोड के जरिए पुराने कपड़े दान कर सकेंगे यानी डोनेट कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको डिजिटल रसीद भी मिल सकती है। है ना अच्छा आइडिया? बिल्कुल, सोने के जो नखरे होते हैं, मेरा मतलब आपके भी नखरे होंगे कपड़ों को लेकर, ये नहीं पहनने तो रख दीजिए उसे डोनेशन बॉक्स में जहां डोनेट करना है।

पर मैं ये कहती हूँ कि अगर रेगुलर कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो SOL है आपके लिए, बिल्कुल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। जी हाँ, SOL में UG कोर्सों में दाखिले की जो आखिरी तारीख है 15 सितंबर तय कर दी गई है, और इस बार SOL पारंपरिक कोर्सों के साथ साथ कई जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशनल कोर्सेज भी उपलब्ध करा रहा है आपके लिए, ताकि कॉलेज में सीट ना मिलने पर आप दुखी ना हो। बिल्कुल, एक साल आपका बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं। सो यू आर बेस्ट, चिंता ना करें, एडमिशन ले सकते हैं।

0: बिल्कुल, यू आर द बेस्ट. क्या फर्क पड़ता है अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ खालसा में, नहीं हुआ राम जस में, नहीं हुआ और आप सपने देख रहे हैं हंसराज के, वहां भी नहीं हुआ तो SOL आपके लिए है ना. चिंता नहीं करते. देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जब आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर सकते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल सही हुआ है, और ऐसे में जब अपने लोग साथ देते हैं तो और भी अच्छा लगता है. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ आप ही के पास.
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं. कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें. किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033. आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प.
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल. आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर. बिंदास बोल.
0: बिल्कुल बिंदास होके बोल सकते हैं आप इस प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल बिंदास होके मैं बोल रही हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सिटी लाइट्स. सुन सकते हैं आप इस प्रोग्राम को 5 बजे प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं. और अच्छे अच्छे गानों की जहां तक बात है, सुनिए इस गाने को.

बिल्कुल, अपने तो अपने होते हैं और मैं भी आपकी अपनी ही हूँ जी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। जामिया मिलिया इस्लामिया में एकेडमिक सेशन 2026-27 के तहत विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेने से चूके स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। वो ये कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूजी पीजी और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की खाली सीटों को भरने के लिए ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विंडो खोल दी है। 8 अगस्त को होगा ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, याद रखिएगा डेट 8 अगस्त।

बिल्कुल भी ये जो फसाना है रेनबो पर लगातार बना रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगला प्रोग्राम 6 बजे लेकर आएंगे आपके लिए अम्बरीन खान। बिल्कुल मैसेज मसाला मिक्स रहेगा जिसमें आप अपने मैसेजेस भेज

बिल्कुल दिल धड़कता है आपका जब इस तरह के गाने बजते हैं आपके लिए। मैं लिख रहती हूँ सिटी लाइट्स में, लेकिन अब जाने का भी वक्त हो गया है। लेकिन अपने जो पल हैं एम्ब्रीन के साथ, आप सिटी लाइट्स तो छोड़ दीजिए, उसके साथ रहेंगे मैसेज मसाला मिक्स में। फिलहाल मैं जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत को आपके साथ छोड़कर, वो इसलिए क्योंकि जो पल है ना एक मिनट में फिर से चला जाएगा और फिर मैं याद करूंगी, क्योंकि आने वाला जो पल है ना जाने वाला होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, पूरे छह बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पुराने सिक्कों के खरीदार के समर्थन वाले वीडियो को फर्जी बताया। लोगों से ऐसी भ्रामक दावों से सतर्क रहने की अपील की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति

बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से बड़ा तनाव। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। दिल्ली यातायात पुलिस ने चेहल्लुम जुलूस के मद्देनजर आज दोपहर 2 बजे से दक्षिण दिल्ली में कई मार्गों पर विशेष यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किए। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में बाढ़ के हालात में सुधार, नदियों का जलस्तर घटा, अगले 2 दिनों के लिए फिर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू, तन्वी शर्मा ने किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: छह बजकर तीन मिनट और पूरे 57 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। दिल से दिल तक एम्ब्रीन आ गई है आपके दिल पर दस्तक देने और आपके मैसेज मेरे दिल पर दस्तक देने। तो बस बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

6:10 और पूरे 12 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक, और प्रोग्राम आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। और देखिए ना, जब वक्त हम देखते हैं और ये सोचते हैं कि कभी कभी तो मतलब सोचते हैं ना वक्त के बारे में कि हाय रुक जाए ये वक्त, बस थम जाए, लेकिन क्या करें, थमता ही नहीं है वक्त। तो वक्त का काम है चलते रहना, और हमारा काम है उसको पकड़ कर चलना, रुकना नहीं, पकड़ कर चलना, तभी तो कामयाबी मिलेगी। जैसे कि अब आप सबने ना बिल्कुल वक्त का सही इस्तेमाल किया है, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ है सब ने मैसेज टक टक टक टक टक शुरू कर दिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, वो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि दिल से दिल के जब कनेक्शन जुड़ते हैं ना, तो इसी में मज़ेदारी है और इसी में मज़ा आता है। अब देखिए, मोहम्मद सरफराज आलम ने मैसेज भेजा है अररिया बिहार से, सिर्फ MMM, अपने हालचाल भी बता देते हैं और फिर कहते हैं, शिकायत भी कर देते हैं कभी कभी, लेकिन शिकवे शिकायतें भी अच्छी लगती हैं क्योंकि शिकवे शिकायतें भी तो अपनों से होती हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं होनी चाहिए। और ये भुवनेश का भी मैसेज आ चुका है अशोक विहार से, बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, ये अच्छा लगा, अपने हाल चाल ना ऐसे ही बताते रहा करो भुवनेश, ज़रा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और अब जो मैं पूछने वाली हूँ, जल्दी जल्दी जवाब देना है, क्या पूछने वाली हूँ तो मैं बताती हूँ। दानिश का भी मैसेज आ चुका है, और सईद अब्बासी, निगत, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना और अरजान और अबान का भी मैसेज आ चुका है, सबका कह रहा है कि बहुत शिद्दत से सुन रहे हैं। अरे बस इसी शिद्दत से सुनते रहें, क्योंकि जब शिद्दत से सुनते हैं ना आप सब, तो फ़र्क जो है ना वो यहाँ पड़ता है, फ़र्क माने असर यहाँ होता है, इसलिए क्योंकि मज़ा आता है ना फिर बात करने में, ऐसा लगता है कि जैसे आमने सामने ही बातें चल रही हैं। आए

है। अनूप कुमार का भी मैसेज आ चुका है झारखंड से, हाय हाय क्या हालचाल है, सब बढ़िया है ना अनूप कुमार जी। बस अभी तो आगाज हुआ है, शुरुआत हो गई है प्रोग्राम की, और उसके बाद मैं जो पूछने वाली हूँ जल्दी जल्दी अब आप सब जवाब देंगे। ये तो मैं वो मैसेज पढ़ रही हूँ कि जिन्होंने फटाफट बोला कि जी हम सुन रहे हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। किरण का भी मैसेज आ चुका है हरिद्वार से, और किसका मैसेज आया है, ये आया है, गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, हालचाल सब बढ़िया है, फटाफट बता दिया। मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन नाम नहीं लिखा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, नीरज, राइट। आपने इस वाले में ना जो मैसेज मसाला है उसमें आपने नाम नहीं भेजा, लेकिन दिल से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने जो है पहचान लिया कि किसका मैसेज है। ये मैसेज है कंचन का है या नीरज, जल्दी बताओ फटाफट, कंचन, हाँ कंचन सोनिया विहार से, ठीक है। जल्द अपना ना नाम जरूर लिखा करें, इसलिए क्योंकि जब तक नाम नहीं लिखेंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैसेज किसका है, कौन अपनी खैरियत बता रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ हर बार कि अपना नाम जरूर लिखा करें। दिनेश कुमार का भी मैसेज आ चुका है नेपाल से, दिल से दिल तक, जी नमस्ते, दिल से दिल तक, गुड इवनिंग। मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, जब मैं आ रही थी शो के लिए तो इतना प्यारा मौसम, और उसमें कुछ म्यूजिक भी गुनगुना रही थी, और मन ये कर रहा था कि मैं किसी तरीके से जल्द पहुंचूं AIR, और यहाँ पहुंचकर 6 बजे जल्दी से, और मैं अपने दोस्तों से ना बस बातें करने के लिए बैठ जाऊं। तो अब मैं क्या पूछने वाली हूँ, अभी कईयों का है कि सवाल क्या पूछा, सवाल नहीं पूछते हम इसमें, हम तो इसमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसमें क्वेश्चनिंग तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जब रिस्पॉन्स निकल कर आते हैं उसमें बड़ा मजा आता है, इसलिए क्योंकि कई टिप्स जो है ना वो हमें मिल जाते हैं। तो मैं क्या पूछने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद पूछूंगी, कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक के साथ। बस यूं गए और यूं आए इस गाने के बाद, लेकिन मैसेज जो है ना जो मैं पूछूंगी उसका बहुत शॉर्ट में जवाब देना है, ताकि मैं सारे जवाब ले सकूं, किसी की कोई शिकवा ना हो, किसी की कोई शिकायत ना हो। सुनते रहे मैसेज मसाला में एक सैम ब्रीन के साथ।

6:17 और पूरे 37 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है प्रोग्राम। आए हैं और मैसेज भी सब बता रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है और मौसम बहुत ना आशिकाना हो रहा है। अच्छा, आशिकाना हो रहा है मौसम, अच्छी बात है ना। जब मौसम इतना खुशगवार होता है ना तो दिल और दिमाग दोनों ही जो है ना वो बहुत बहुत बहुत बिल्कुल सेट रहते हैं। अच्छा चलिए, आज जिस बारे में बात करें ना वो हम फटाफट डिस्कस क्या मतलब पूछ लेती हूँ मैं। हम सब में कोई ना कोई हैबिट ऐसी होती है कि सामने वाले को पसंद नहीं होती, और सामने वाले इंसान की जो हमारे करीबी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे वेलविशर होते हैं, उन्हें पसंद नहीं होती है। कई बार तो कई आदतों को वो मना करते कि भाई ये आदत ना छोड़ दो प्लीज़ यार, ये ख़त्म करो। लेकिन कोई एक ऐसी हैबिट होती है कि वो छूटती ही नहीं है, समझ नहीं आता। तो मुझे आज जो है ना आप सब ये बताइए कि ऐसी हैबिट बतानी है आप लोगों को जिससे सब कहते हैं कि इसे ख़त्म कर दो, छोड़ दो, प्लीज़ ख़त्म कर दो। वो ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं और आपसे आपके दोस्त जो है ना वो कहते रहते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इस हैबिट को ख़त्म कर दो। और ऑनेस्टली बताना है, बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब जो भी देंगे बहुत छोटा सा दीजिएगा, इसलिए ताकि मैं सबके मैसेज शामिल कर सकूं। कहा था ना कि कोई शिकवा शिकायत नहीं रहनी चाहिए किसी को भी। तो फटाफट जल्दी से इंतज़ार कर रही हूं मैं, कौन से किस बात का पता है ना जो मैंने अभी पूछा है। 9868107070 पर एम्ब्रीन इंतज़ार कर रही है आपके मैसेज का। बताना इसलिए होता है ना क्योंकि कई बार कई फ्रेंड्स जो हैं हमारे नए नए जुड़ते हैं तो उनको भी तो बताना है ना कि भाई बताओ कौन सी ऐसी हैबिट है कि जो बहुत आपके दोस्त कहते रहते हैं छोड़ दो लेकिन छूट नहीं पाती है, वो हैबिट बतानी है। इंतज़ार करिए अम्ब्रीन आपके मैसेजेस का, बस बने रहिए हमारे साथ। और ये बारिश का मौसम है और ये गाना ना प्ले हो, आहा अधूरापन सुनते रहें एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

इतना सूदिंग सॉन्ग और इतनी प्यारी आवाज़, मतलब दिल करता है कि खो जाओ और वहाँ से वापस ही मत आओ, सुनते रहो सुनते रहो और अपनी उन पुरानी यादों में रम जाओ कि बस उससे जो यादों से जो खुशी मिलती है ना, तो बस उसको जीने का मन करता है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो, दिल से दिल तक एमरीन के साथ। और मैसेज मसाला मिक्स में देखिए ना कितने सारे मैसेज आ गए, और ये तो मतलब मज़ा ये आ रहा है कि ये पूछा है कि एक हैबिट बता दीजिए कोई सी। इतनी सारी हैबिट्स आ गई हैं कि जिन्हें मतलब सब कहते हैं कि इन्हें हटा दीजिए इन्हें हटा दीजिए, लेकिन हट नहीं पाती हैं। ओए होए, अच्छा अब देखते हैं किस किस के अंदर क्या क्या हैबिट्स कौन सी हैं जो वो हटाना चाहते हैं लेकिन हट नहीं पाती हैं। जावेद आलम का मैसेज है। जावेद, आपने तो कोई कुछ बोला ही नहीं है, आपने तो बताया कि बस अपना नाम लिखा है, मैं अच्छा हूँ। अच्छे तो हो, बता तो दो, ये तो मैं भी जानती हूँ कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई ऐसी हैबिट तो होगी आपके अंदर कि जो कहते हैं आपके दोस्त वगैरह कि प्लीज़ को छोड़ दे, इस हैबिट को छोड़ दे। इंतज़ार करिए अमरीन, फटाफट फटाफट फटाफट बताइए। और ये मैसेज किसका है? ये मैसेज है मिस्टर धर्म भाटिया का मैसेज है। लिखा है कुछ पूछो या नहीं पूछो, आपकी बातें सुनकर ही। अच्छा, ये तो एक तारीफ का मैसेज चलिए हो गया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे ये तो बता दो धर्म कि कौन सी ऐसी बात है मतलब जो आप छोड़ ही नहीं पाते और आपके दोस्त आपके जो भी मिलने वाले हैं कहते हैं धर्म ये जो है ना दोस्त इस हैबिट को ख़त्म करो। कोई ना कोई तो कहता होगा, कोई ना कोई ऐसी आदत होगी। हम सब में अब ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि सारी आदतें बहुत अच्छी हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। इंतज़ार करिए एमरीन, फटाफट फटाफट बताएं। और ये मैसेज किसका है? जोया का मैसेज है। कहते हैं लोग कहते हैं सच बोलना छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकती। ओ माई गॉड, सच ये कौन कहता है कि सच जो है बोलना छोड़ दो? ऐसी भी हैं फ्रेंड्स की वो कहते हैं सच बोलना। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा ना कि बिल्कुल आप जो बिल्कुल जो अपना रिएक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप देती होंगी, तो उसमें सब लोग आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे कि थोड़ा सा स्टाइल अलग कर लो, लाइक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये बात तो नहीं है, सच तो हमेशा बोलना है, सच बोलना नहीं छोड़ना है। ये हैबिट मतलब कोई अगर ऐसे कह रहा है तो मुझे लगता है कि इस वाली बात को तो बिल्कुल नहीं मानना, सच का साथ हमेशा रखना है। और ये मैसेज है नरेंद्र सोनी का। कहते हैं कि गुड इवनिंग, हमारे अंदर जो आदत है वो है कोई जब अपनी लंबी अच्छा वो फेंकता है, मतलब अपनी खूब लंबी लंबी बातें बताता है, बातें सेंस फेंकने वाली कि मैं वैसा ये करता हूँ वो करता हूँ लाइक दिस, तो मैं तुरंत जो है ना बीच कर देता हूँ, अवॉइड करता हूँ। तो सब कहते हैं यार ऐसा मत किया कर उसके सामने। कई बार होता है क्योंकि हमें पता होता है कि कितनी लंबी लंबी लंबी लंबी फेंक रहा है, कितनी लंबी लंबी बातें ऐसी कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई लोग तो बर्दाश्त करते हैं कि भाई चलो ठीक है ये इसकी आदत है बेटा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब वो आदत जो है आपके अंदर ज़बरदस्त है, आप सामने ही एकदम देखिए ये बातें इस टाइम ऐसे निकल कर आ रही हैं क्योंकि अब मैं इस वाली बात में कुछ भी नहीं कह सकती कि आप मत रिएक्शन दीजिए, आप ये करिए। बस हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने वाले के दिल का ख्याल रखना चाहिए। कई बार हमारे अपने ही बहुत जो होते हैं वो बहुत ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंक भी देते हैं, तो चलो ठीक है। लेकिन एकदम से क्लियर कट बोल देना या ऐसे बोल देना वो भी कई बार दिल का टूटने का जो है ना वो बाइस बन जाता है। तो हमें तो दिल तोड़ना नहीं है, एक अलग अंदाज से बात को किया जा सकता है या बताया जा सकता है। चलिए खैर, ये वाली आदत है तो इसको बस अंदाज को चेंज करना है, बाकी तो ठीक है। और ये अगला मैसेज किसका है? ये किसका मैसेज है? बड़ा लंबा मैसेज है, प्लीज़ मैंने बोला था कि सोनू का मैसेज है अपनी, नहीं नहीं नहीं, हाँ सोनू सैनी का मैसेज। सोनू, आप मुझे दोबारा मैसेज करेंगे इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सा रिप्लाई मुझे दीजिए, क्योंकि बहुत मैसेज हैं, अगर मैं इतने लंबे लंबे रिप्लाई पढ़ूंगी ना तो वो फिर ये होगा कि मेरा मैसेज नहीं लिया। तो मैं अब आपके मैसेज का दोबारा से वेट कर रही हूँ, फटाफट बताइए। और अनूप कुमार का मैसेज है, लिखा है, अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, झारखंड से, रीडिंग हैबिट को ख़त्म करवाना चाहते हैं। भाई क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्या आपके जो भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स हैं वो आपकी रीडिंग हैबिट से परेशान हैं? आप उनको वक्त नहीं देते क्या? हो सकता है कि आप उनको वक्त ना देते हो और आप अपना जो आपकी जो हैबिट है वो हमेशा बुक्स या जो भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने में बिज़ी रहते हो। तो भाई आपका कीमती वक्त तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ में लगा है, लेकिन फिर भी दोस्तों के लिए तो बनता है ना, दोस्तों के लिए भी बनता है, तो उनको भी दीजिए, उनको भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना बहुत बहुत बहुत सच्चे दिल से जिसे कहते हैं ना हर टाइम साथ रहने वाले वो होते हैं। और ये अगला मैसेज किसका है?
मुझे सूर्यकांत का मैसेज है, मुझे अपनी एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। क्या है, छोटी छोटी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता रहता हूँ, इससे जो है ना मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मतलब मैं जो हूँ तनाव में रहता हूँ। बिल्कुल ये वाली आदत तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर सोचते रहना किसी बात का और कोई रिजल्ट नहीं निकलना, उससे क्या होना है अपने ही अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। फिजिकली भी आप परेशान रहते हैं, मेंटली भी आप परेशान रहते हैं, और उस परेशानी से क्या होगा, सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ये जो ज़्यादा सोचने वाली आदत है ना, इनको सोचना बंद करिए। काम जो करिए करिए कि मैं इस पर क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, बस ऐसे कर सकता हूँ, और उसके लिए कोशिश करते रहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। होए होए, बड़ी सारी मतलब जिसे बोलते हैं ना मैसेज की बहारें लग चुकी हैं। मेरे दोस्त और साथी कहते हैं कि तुम रेडियो सुनना छोड़ दो। वो कौन कहता है रेडियो सुनना छोड़ दो ये बताओ, उसका नाम दो मुझे, पर मैं इस हैबिट को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल मत छोड़ना, जिसने कहा उसका नाम लिख के भेजो। भेरू लाल का मैसेज है MP से, फटाफट फटाफट आपके ना मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मैं इस टाइम, कि कौन कहता है, कौन सा दोस्त कहता है कि रेडियो सुनना छोड़ दो। रेडियो सुनना अब मतलब दोस्ती है हमारी, कैसे छोड़ सकते हैं, दोस्त को कभी कोई छोड़ सकता है, कोई नहीं छोड़ सकता है। तो आप मुझे अपने दोस्त का नाम भेजो, मैं उसको भी बताती हूँ कि कौन सी हैबिट को उसको खत्म करना है ठीक है ना। और ये मैसेज है किसका, नमस्कार जी, कैसे हैं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, लेकिन आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मुकेश कश्यप, सोनू जी, सबके नाम तो भेजनी है लेकिन जवाब नहीं दिया। पहले फटाफट मेरी बात का मैसेज का रिस्पॉन्स दीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगी। और ये मैसेज किसका आ रहा है, नेपाल से है, क्या लिखा है, रेनबो पर लगे रहो, मेरी पूरी मेरी जो दोस्त हैं बोलते हैं, लेकिन क्या लिखा है समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, कोशिश ही कर रही हूँ। FM रेनबो पर लगे रहो, मेरी दोस्त बोलती है लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती। अच्छा, कि मतलब वो बोलती हैं कि हर टाइम FM रेनबो सुनते रहो और उसी में लगे रहो, लेकिन मतलब अब मुझसे बात कर, मतलब अपनी दोस्त से आप बात नहीं कर पाती। ओए ओए, देखिए रेनबो तो पे तो लगे ही रहना है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स हैं, है ना, उनको भी टाइम देना है, लेकिन उनको भी टाइम देना है, तो ये तो आप छोड़ नहीं सकती हैबिट। उनसे बोल दीजिए अपनी दोस्त को कि ये हैबिट मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, ये मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी हैबिट है जो मैं हमेशा हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। और ये किसका है, अनीता का मैसेज है और सिमरन का मैसेज है, इन्होंने लिखा है, हम में कोई ऐसी हैबिट है ही नहीं जो किसी दूसरों को कहने का अवसर मिले। ओहो, क्या बात है, मतलब सब कहते हैं सारी हैबिट सच्ची हैं। हाँ, अच्छा जी, सेल्फ इंडोस्ट सेल्फ प्राइड, क्या बात है। चलिए, खैर ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो है बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखते हैं दूसरों के दिल का, कि उनको चाहे वो कोई भी बात कर रहा हो, कुछ भी हो, तो आप ख्याल रखते हैं, और सामने वाला आपसे कहते ही नहीं कि आपको अपनी इस हैबिट को ख़त्म करना है। अच्छी बात है, गुड गुड गुड। और मुझे ओवर थिंक की आदत है, इसलिए मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों बोलते हैं कि आदत छोड़ दो, नहीं तो तुम ही तकलीफ में रहोगी। नेहा का मैसेज है हैदराबाद से, बिल्कुल सही कहा, इस आदत को तो छोड़ना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे मैं कह रही हूँ ये वाली जो हैबिट है ना ज्यादा सोचने की, छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे सिर्फ अपना नुकसान है और किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। क्या होगा उससे, अपने आप को तकलीफ देने से कुछ होगा, सब तो मजे में रहेंगे और हम तकलीफ में रहें, अच्छी बात है। चलिए, खैर और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन गाना भी कह रहे हैं प्लीज प्ले कर दीजिए, तो सुनते रहें FM रेनबो दिल से दिल तक। मैसेज मसाला मिक्स आपका चल रहा है, जल्दी से बताएं कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपके दोस्त कहते हैं इस हैबिट को प्लीज खत्म कर दो, लेकिन मुझे उस मैसेज का उसका इंतजार है कि किस दोस्त ने कहा है रेडियो सुनना इंतजार कर रही हूँ, दोस्त का नाम भेजो। मैसेज मसाला मिक्स, सुनते रहें एम्ब्रीन के साथ।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक, और प्रोग्राम मैसेज मसाला में एक सैमरीन है ना आपके साथ और आप हैं मेरे साथ। ये मैसेज है अनिल शर्मा का, सरिता विहार से। कहते हैं कि मेरी आदत मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की है, जिसे घर में सब छोड़ने को कहते हैं। वैसे कम तो रहनी चाहिए क्योंकि, लेकिन उन्होंने आगे एक रीज़न भी लिखा है कि इस एज में हूँ कि लेखन में जो भी चीज़ है काव्य लेखन में मोबाइल का जो है मैं बहुत यूज़ करता हूँ, जिससे जो है ना मैं मेंटली एक तो खुश भी रहता हूँ और अपने आप को बिजी भी रखता हूँ। और एक और क्या है इन्होंने लिखा है, स्वस्थ रहने के लिए 12 से 15 किलोमीटर चलने की गंदी आदत है, मेरी बेटियाँ कम करने को कहती हैं। 12 से 15 किलोमीटर तो बहुत है, थोड़ा सा सेहत को देखते हुए कि कितना चलना है, कितना आपके लिए ठीक है, वो सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी बेटियाँ कहती हैं तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, जिससे वो भी खुश हो जाएं कि हाँ चलिए अब इतना है। और रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल में बिज़ी रखते हैं तो मोबाइल से ज़्यादा किताबों को में भी अगर आप बिज़ी रहेंगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल से जितना भी कुछ जिसे कहते हैं कि जो भी उसकी नेगेटिविटी है उससे थोड़ा सा बचे रह सकते हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे, है ना। तो ये वाली हैबिट को इस तरीके से कम किया जा सकता है। गुड्डू का मैसेज आ चुका है, गुड्डू धाकर का। कहते हैं कि मेरी दोस्तों की आधी बातें सुनने, अच्छा मतलब आधी अधूरी बातें सुनने से जो है ना मेरे सभी दोस्त परेशान हैं, बार बार कहते हैं इस आदत को ना बदल दे। सही कहते हैं, क्योंकि आधी अधूरी बातें जो होती हैं ना वो प्रॉब्लम कर देती हैं। वो फिर यही लग रहता है कि क्या होगी बात, उसी में इंसान लगा रहता है। तो इसलिए जब भी बात करें तो पूरी कंप्लीट बात करें, मुकम्मल बात करें, है ना, तब अच्छा लगता है। और ये मैसेज भुवनेश का भी आ गया है। भुवनेश ने कहा है कि इन्होंने भी यही बोला, ओवर थिंकिंग वाला चीज़ तो बहुत आ रहा है। मैं तो ये देख रही हूँ कि जो सब लोगों का ये चीज़ है कि जो टेंशन्स हैं उनको सोचते रहना, है ना। और वैसे भी जो भुवनेश चीज़ें हैं, देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कभी भी टेंशन्स लाइफ में आएंगी ही नहीं। टेंशन्स तो हमेशा आती हैं और जाती हैं जाती हैं। बस यही सोचना उन टेंशन्स के बारे में कि ये भी आई है, ये चली जाएगी, उस पर सोचना ही नहीं ज़्यादा, बस उस पर काम करना, ठीक है। ये हम लोगों का काम होना चाहिए, इसलिए अपनी इन हैबिट्स को जो है ना जल्दी से टिक टैक मतलब कि हटा दें। और अगला मैसेज किसका है, लिखा है कि रवि का मैसेज है, स्मोकिंग की आदत है और बहुत कहते हैं दोस्त कि इसको छोड़ दो, कसम भी दे देते हैं। अरे जब कसम दे दी तो फिर तो छोड़ना ज़रूरी है भाई, बहुत मतलब वो दोस्त कितने ज़बरदस्त हैं आपके, कितने अच्छे हैं जो आपकी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं तभी वो कसम तक दे रहे हैं। हाँ रवि, इस आदत को तो मैं ही क्या, सभी कहेंगे कि इस आदत तो मिनट की चौथाई में, समझ गए मिनट की चौथाई कितना हुआ समझ जाइए, उसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हैबिट तो वाकई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये मैसेज किसका है, बात का सही सही मतलब समझ जाता हूँ। अच्छा, अर्पिता का मैसेज है, ज्योति योगेश और अर्पिता का। बात का सही सही मतलब समझ जाता हूँ कि सामने वाला शब्दों के पीछे छुपे मकसद से कहना क्या जाता है। तो ये इस तरीके से आप बात करते हैं तो उससे सब झेप जाते हैं, मतलब आपकी जो बातों के बाण चलते हैं वो ऐसे होते हैं कि झेप जाते हैं। आप ही बताइए क्या ये आदत गलत है। मुझे लगता है कि स्पष्ट तरीके से बोलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पष्ट तरीके से बोलने में जो शब्दों का चयन है ना वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के दिल में तकलीफ ना हो, वो झेपे नहीं, वो शर्मिंदा ना हो, बल्कि ये सोचे कि बात कितनी अच्छी कही है, सही कही है। मुझे भी लगता है कि शायद हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं, तो आपके बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बस सामने वाला सोचे कि ये हमारे अंदर बुरी आदत थी, लेकिन कितने अच्छे अंदाज में लगा भी नहीं और बात भी कह दी। तो झेपाने का मतलब झेपाना, वो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सही नहीं है। और ये लिखा है आउटिंग करके, लिखा है डियर एमरीन, मुझे आउटिंग करके मिलना जुलना बहुत पसंद है, बट अब हर कोई कहने लग गया है कि अब छोड़िए घूमना बस इस आदत को। तो अच्छा, सब लोग कहते हैं कि बस अब घूमने फिरने की आदत को छोड़ दीजिए, लेकिन इस आदत को मैं नहीं छोड़ सकता, मजबूरी है। भैया ये घूमने फिरने की आदत तो कोई बुरी नहीं है, एक्सट्रीम वाली मैं नहीं कह सकती किसी भी चीज़ की। देखिए एक्सट्रीम जो होता है वो तो हर चीज़ में बुरा होता है, लेकिन अगर कहीं घूम फिर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, तो क्या बुरा है? अपने आप को खुद से एंटरटेनमेंट करना ये बहुत बड़ी चीज है। तो धर्म भाटिया का मैसेज है, बहुत अच्छा है घूमना फिरना, इससे आप खुद भी जो है अपने दिमाग को बहुत सुकून से रखते हैं और खुद भी जो है बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इस आदत को मुझे नहीं लगता कि हमें चेंज करना चाहिए। ये मैसेज है अररिया बिहार से रंजीत कुमार का, लिखते हैं मैं स्कूल टीचर हूँ और नियम कानून पर चलने वाला हूँ। ओह अच्छा, इसके कारण कभी कभी जो है ना कई लोगों से बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है। सब कहते हैं जैसे चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। कई बार कई नियम कानून ऐसे होते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि जैसे चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन जो बिल्कुल फॉलो करता है उसके सामने चीज़ें ऐसी आती हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को ये सोचना चाहिए कि वो नियम कानून से या आपकी सख्ती से या कुछ है, सामने वाले को तकलीफ तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही, उसमें उसको आसानी है, आसाइश है, तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। बाकी तो नियम कानून पर तो अच्छी ही बात है, चलना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी चलना भी चाहिए, बस सबको फॉलो करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हर किसी के दिल में या दिमाग में नहीं उतर सकते, नहीं समझा सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो बस कोशिश करना हमारा काम है और कोशिश में लगे रहना, यही जो है हमारी जीत है। कहीं मत जाएं, बने रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक के साथ, क्योंकि ये वाला गाना ओए है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुनते रहें और इन्जॉय करें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 7

5 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक। ओए रब्बा, 6:53 और पूरे 11 सेकंड, कैसे भागा टाइम पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी मैसेज ले लेती हूँ। लिखकर शमसुल का मैसेज है, कहते हैं सबकी अपनी पसंद है पर मेरी जो आदत है, मेरा शौक बस एक ही है, रेडियो सुनना और उसमें पार्टिसिपेट करना। अच्छा, इस पर मेरा एक दोस्त कहता है कि वो कहता है कि हर वक्त यार इसी में डूबे रहते हो, इसी को सुनते रहते हो, कभी हमें भी हमारे दोस्तों की भी बातें सुन लिया करो। तो वैसे तो वो ये मतलब एक बात उसने गलत कही पहले कि हर टाइम रेडियो में, वह हर वक्त तो कोई भी नहीं डूबा जा सकता है रेडियो में, सबको अपने काम भी करने हैं, लेकिन आप रेनबो सुनते हैं, शौक है, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने दोस्तों को भी वक्त देना चाहिए। उनसे कहो कि तुमसे भी बातें करेंगे और उनको भी कहो कि FM रेनबो सुना करें, तब वो क्या कहते हैं फिर उनको पता चलेगा, ठीक है ना। और ये मैसेज किसका है, ये कहते हैं कि जावेद आलम का, कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है जिससे मेरी वाइफ जो है ना वो बोलती रहती है कि सादत को छोड़ दो। बिल्कुल सही कहती हैं, गुस्सा बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, है ही नहीं, अपना नुकसान है, अपना ही नुकसान है हर तरीके से। तो इसलिए गुस्से वाली जो हैबिट है ना, जिसके अंदर भी है, इसको तो ख़त्म करो। जैसे गुस्सा है पानी पियो या इधर उधर हो जाओ और कोशिश करो कि अब रिलैक्स माइंड होकर हम बात करेंगे, तब बात जो आएगी और जो उसका रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। मेरी तो एक बार किसी से, अच्छा किसका मैसेज है ये, हरिद्वार से किरण का मैसेज है, मेरी तो अगर एक बार किसी से लड़ाई हो जाए तो फिर बस उस इंसान से दिल से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े और सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अपनों से ही होता है, लेकिन ये थोड़ा है कि दिल से हम कनेक्ट उससे जो है कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार अपनी भी गलती होती है लेकिन गुस्से में नहीं समझ में आ पाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जब गुस्सा ठंडा हो तब उस पर ध्यान से सोचिए और फिर उसके बाद जो है ना अपने फ्रेंड के पास जाइए और बात कर लीजिए, ऐसा नहीं कि दिल से कनेक्शन जो है ख़त्म कर दें। और मेरी एक पुरानी आदत है, किसका मैसेज है, कोयम्बटूर से रुचि काका, कि मैं एक साथ बहुत सारे काम अपने सिर ले लेती हूँ लेकिन आखिर में कुछ भी जो है ना वो वक्त पे पूरा नहीं हो पाता। ऐसा होता है, लेकिन कोशिश इसमें हम यही कर सकते हैं कि वन बाय वन फटाफट लेते रहें और फटाफट उनको निपटाते रहें, और निपटाने के बाद जो है बस ये करें कि अब जो बचे हैं ना काम उनको मैं बाद में करूँगी। फिलहाल तो अब 6:55 हो गए हैं, एमरीन के भी अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ है, अभी मिलूंगी ना मैं आपसे, मिलूंगी 8 बजे मिलूंगी। तब तक ये कहूंगी अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का खास ख्याल रखिए, मौसम भी बहुत प्यारा चल रहा है, मौसम का भी लुत्फ उठाइए क्योंकि हर मौसम का हमें लुत्फ उठाना चाहिए। बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, बाय, टेक केयर।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

नमस्कार, पूरे 8 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के सदस्य द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख का लेन देन किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ चलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, 102.6 FM रेनबो, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी एम्ब्रीन। प्रोग्राम आपका अपना म्यूजिक मस्ती लेकर आ गई हूँ, तो बस इस एक घंटे में खूब इंजॉय करेंगे गानों को, उनके म्यूजिक को, और अगर दिल करेगा घर पर है तो थोड़ा सा थिरक भी सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

8:13 और पूरे 37 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम, आपका अपना म्यूजिक मस्ती। कितना काम कर रहे हैं आप सब, कितना काम करते हैं हम सब। सुबह से जो उठते हैं तो काम काम काम, रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि जो दिमाग का काम है वो तो हर टाइम बोलता रहता है ये काम कर वो काम कर, ऐसे कर वैसे कर, ये कर वो कर, सब कर। लेकिन दिल कहता है दिमाग जी थोड़ा सा रिलैक्स भी दे दो, बहुत ज़रूरी है। अगर रिलैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा इस दिल का? तो इस दिल को ये रिलैक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एंटरटेन करते रहें, चाहे वो म्यूज़िक के ज़रिए, चाहे अपने दोस्तों के ज़रिए, चाहे बातें करके, गॉसिप्स करके, लेकिन ज़रूरी है एंटरटेनमेंट करना। तो बस कहीं मत जाएं, वही तो मैं काम कर रही हूँ ना फिलहाल, ये वाला गाना। हाँ हाँ, सुनते रहें मेरे साथ यानी एम्ब्रीन के साथ, कहाँ एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक, और प्रोग्राम आपका अपना म्यूजिक मस्ती है और एमरीन आपके साथ है। कहा है ना कि जब मौका मिले, फुर्सत मिले, तो जरूर जो है ना ऐसा प्लान कर लेना चाहिए जहां आपके दिल और दिमाग को सुकून मिले। कहीं घूम लेना चाहिए, दोस्तों के पास चले जाना चाहिए, अपने रिलेटिव्स के पास चले जाना चाहिए, या जो भी दिल कर रहा है, मतलब ऐसा दिल जहां आपको सुकून हासिल हो, चाहे वो नहीं। म्यूजिक सुनकर भी ना बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, एंटरटेन करते हैं हम, अच्छा लगता है। जब दिल को अच्छा लगता है तो समझ लीजिए फिर तो सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं। कहीं मजाएं बने रहे हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक के साथ।

0: हनी सिंह।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: 8:37 और पूरे 15 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी FM रेनबो पर और एमरीन आपके साथ है और एक से एक गाना ऐसा प्ले कर रही हूँ कि अगर दिल कर रहा है ना थिरकने का तो थिरक सकते हैं। फिलहाल ये वाला गाना बहुत टाइम के बाद चला रही हूँ, बहुत टाइम के बाद, तो बस इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स,

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती एमरीन के साथ।

दिल पे चोटें बहुत लगती रहती हैं, लेकिन जो चोट दिल पर गहरी वाली लगती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। वैसे कोई भी चोट लगनी नहीं चाहिए, लेकिन दिल पे जो चोटें होती हैं वो फौरन साफ भी होती रहती हैं, क्योंकि दिल है ही ऐसा। एमरीन को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आस पास का, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।

आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर वक्त है मुख्य समाचारों का। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 पारित, ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख का लेन देन किया। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। और मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खेल मंत्री मनसुख मंडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ साहब, म्यूजिकली योर्स 102.6 एफएम पर मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। और कहते हैं साहब कि रिश्ते जो है, रिश्तों की अगर हम बात करें तो रिश्ते उम्र से नहीं बल्कि एहसास से जीते जाते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में दूर ज़रूर होते हैं लेकिन दिल से बहुत दूर नहीं होते, यानी बरसों तक जिनसे बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती और फिर भी उनका जिक्र आते ही चेहरे पर एक मुस्कान अपने आप आ जाती है। तो यही तो है दिल की बातें।

0: जोकर।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। और साहब, जिंदगी हमें बहुत सारे लोगों से मिलाती है। कुछ लोग सिर्फ हमारी ज़िंदगी में पहचान बनकर रह जाते हैं और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि हमें अक्सर बड़े मौके याद नहीं रहते, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमेशा याद रहती हैं। यानी किसी दोस्त का बिना वजह हंस देना हमें याद रहता है, माँ का दरवाजे तक छोड़ने आना, या फिर पिताजी का ये पूछ लेना कि सब कुछ ठीक तो है ज़िंदगी में, और किसी अपने का ये कहना कि पहुँच कर फ़ोन ज़रूर कर देना। ये छोटी छोटी बातें हैं और एक दिन हमारी सबसे बड़ी याद बन जाती है। इसलिए अपनों से बात करने के लिए किसी ख़ास दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कॉल भी रिश्तों की नई, कहें कि रिश्तों को एक नई गर्माहट दी जाती है। तो आइए, खैर सुनते हैं हम अगला सॉन्ग जो कि बेहद प्यारा है और आपको पसंद आएगा।

0: लिखना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: चैनल आपके साथ खुर्शीद प्रोग्राम है, आपकी याद आती रही है। वैसे आपकी याद आती रही और यकीन मानिए हमें भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और आपको उस वक्त और ज़्यादा याद आती होगी जब आप किसी एल्बम को उठा लेते हैं या कि पुराने फोटोज़ को बैठकर देखने लगते हैं। वैसे कुछ तस्वीरें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हम हंस पड़ते हैं, और कुछ तस्वीरें हमें ज़िंदगी में हैरान भी करती हैं कि हम इतने बदल गए हैं। आपने कभी अपनी पुरानी एल्बम उठा के देखी और फिर उन फोटोज़ को देखते हैं आप कि पहले हम कैसे देखा करते थे? और वैसे कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए आँखें जो हैं वो ठहर जाती हैं कि हाय हम ऐसे भी थे। वैसे तस्वीरें कभी बोलती नहीं है, लेकिन उनमें कैद लम्हे बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पुराने गीत या पुराने गाने जब आप सुनते हैं तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है। एक धुन बजती है और बरसों पहले की कोई शाम, कोई सफ़र, कोई चेहरा या कोई अचानक दिल के सामने आकर बैठ जाता है। कभी हुआ ऐसा आपके साथ भी कि आपने कोई पुराना गाना सुना और वो गाना आपके उन यादों में खो गया जहाँ आपने उनके कंधे पर कहें कि सर रख कर थोड़े से आराम के वक्त गुजारे थे। खैर बहरहाल आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम आपकी याद आती रही। याद कीजिए और इस नगमे को भी एंजॉय कीजिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात।

0: रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: जी हाँ साहब, 102.6 एफएम आप सुन रहे हैं और मैं हूँ खुर्शीद। वैसे ज़िंदगी में कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिनसे अब रोज़ बात नहीं होती, लेकिन जब कभी उनका फ़ोन आ जाए तो आवाज़ सुनते ही ऐसा लगता है जैसे बरसों का फासला जो है वो एक पल में मिट गया हो। यानी ज़िंदगी की यही तो खूबसूरती है कि कुछ रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते। और आज हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इधर उधर उलझे हुए हैं, लेकिन कभी कभी अपने सबसे करीबी लोगों के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि रिश्तों को सबसे ज़्यादा किसी तोहफे की नहीं बल्कि थोड़े से वक्त की ज़रूरत होती है। आज ऐसा कीजिए कि उस दोस्त को फ़ोन कीजिए जो आपके साथ स्कूल में पढ़ा था और उससे मुलाकात नहीं होती है, बात नहीं होती है, आज बात करते हैं उससे। यकीन मानिए दिल को बहुत सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा पुरानी बातों को याद कर कर। अगर आज आपकी यादों में भी कोई पुराना दोस्त दस्तक दे रहा है तो इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर उससे बात करना।

0: हम सबके घर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहाँ बैठते ही दिल को सुकून मिलता है। या सबसे पहले जब आप घर में जाते हैं तो आप सबसे पहले वहीं जाते हैं जहाँ आपको सुकून मिलता है। वैसे किसी के लिए वो घर की बालकनी हो सकती है, या फिर किसी के लिए वो छत हो सकती है, और किसी के लिए रसोई भी हो सकती है जहाँ माँ की आवाज़ गूंजती है, और किसी के लिए गाँव का वो आंगन जहाँ बचपन आज भी इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता है, बल्कि घर बनता है रिश्तों से, अपने पन से, और उन आवाज़ों से जो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम जिंदगी में अकेले नहीं हैं। जब कभी जिंदगी बहुत तेज भागती हुई लगे तो कुछ पल अपने घर के साथ बिताइए, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, घर हमेशा वही रहता है। हमारी सबसे अच्छी और कहें कि यादगार जो चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में बनती हैं। बहरहाल घर हमेशा प्यारा होता है, चाहे जिंदगी में हम कहीं भी घूम आए, लेकिन सुकून हमें घर पर मिलता है।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

ज़ावा आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रहे। साहब एक बात मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन वक्त हमें ये ज़रूर बता देता है कि हमारे लिए कौन रुका था। वैसे मुश्किल दिनों में साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, या कहें कि बिना कहे हमारी फिक्र करने वाले लोग बहुत कम आपकी ज़िंदगी में होंगे, या हमारी छोटी सी कामयाबी पर हमसे ज़्यादा खुश होने वाले लोग भी बहुत कम हैं। और यही हमारी असली दौलत है जो ऐसे वक्त में हमें याद करता है। वैसे अक्सर हम उन्हें उस वक्त समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास ज़िंदगी में ज़रूर होता है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नींव उन्हीं लोगों से है जो हमारी फ़िक्र करते हैं, हमारा साथ देते हैं मुश्किल वक्त में, या फिर हमारी कामयाबी के वक्त हमसे ज़्यादा खुश होते हैं। बहरहाल ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में नशीब व फराज जो वो आते रहते हैं। कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं ज़िंदगी में, कभी कुछ ऐसी होती हैं जो दिल को सुकून तो नहीं देती, दिल को दुखा जाती हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी है और ज़िंदगी इसी का नाम है, इसलिए आगे बढ़ते रहें। बहरहाल ये कलाम भी आगे बढ़ गया है। ये गीत आपके आप तक पहुँच रहा, बहुत प्यारा गीत है, आइए सुनते हैं।

बहुत याद आती है पुराने मकानों की छतों पर गुजरे वो बचपन की रातें। पहले झाड़ू से छत को साफ करने की मुहिम चलती थी, फिर पानी की बाल्टी से छत पर छिड़काव होता था और आखिर में उस पानी के सूखने पर उठने वाली जो भीनी भीनी खुशबू थी वो याद आती है। वैसे अगर आप 90s के हैं तो आपको ये बिल्कुल एहसास होगा कि छतों पर किस तरह से चहलकदमी हुआ करती थी शाम के वक्त, जब आप ऊपर जाते थे छत पर और इस तरह का माहौल होता था। दरिया बिछाकर लाइन से बिस्तर बिछते थे और पानी की सुराही जो है वो बिस्तर के साइड में रख दिया करते थे और रात को जब हम उठकर पानी पीते थे या कहीं कि लेट कर जब उस जो हम छत पर जब लेटते थे तो वो चमकीले सितारे रात को रात भर बजता, वो नीम का पेड़ जो आपके घर के पड़ोस में लगता था, बड़ा खूबसूरत माहौल था उस वक्त जब वो यादें सिर्फ हमारे अब दिल में है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये वक्त है शायद कहीं वो चीज़ें खो गई हैं, वो यादें जो जिनमें एक खुशबू थी एक लगाव था वो खोती जा रही हैं, जिसमें एक प्यार था मोहब्बत थी। 90s की वो बातें जब मैं याद करता हूँ, जब शायद अगर आप भी याद करते होंगे तो वाकई आपको आपके दिल में होता होगा कि काश वो दिन जो है फिर से लौट आएं।

और जब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर, और इस वक्त अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, लेकिन ठीक 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम रंगी महफिल में। फिलहाल इस प्रोग्राम से इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अब वक्त है मुख्य समाचार का। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी बैंक खातों में निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितेशी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को अधिक को छिपा नहीं सकते। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आज आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अब ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जैसा रंगी महफिल 102.6 FM की लहरों पर सवार हो चुके हैं आप। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रेनबो चैनल। और साहब, अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा उस्ताद है तो वो है वक्त। जी हाँ, ये बिना कुछ कहे कुछ बहुत कुछ हमें सिखा जाता है और कहीं तो कुछ लोगों की पहचान भी कराता है और कभी अपनी पहचान बदल देता है और कभी ये एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ दौलत नहीं है बल्कि साथ चलने वाले लोग हैं। वैसे गज़लें भी कुछ ऐसी ही होती हैं, उन्हें सुनिए तो हर उम्र में उसका मतलब बदल जाता है। बचपन में जो सिर्फ धुन लगती थी, आज वही अल्फाज ज़िंदगी का तजुर्बा बनकर सामने आते हैं। आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। मैं हूँ इस वक्त आपके साथ खुर्शीद। और साहब, बात उस दौर की जब हम बहुत छोटे थे और चाहते थे कि वक्त जो है वो जल्दी से बीत जाए, हम बहुत जल्द बड़े हो जाएं, जल्दी कामयाब हो जाएं। और जब अब हम सचमुच में बड़े हो गए हैं तो दिल कहता है कि काश कुछ लम्हे वहीं ठहर जाते। शायद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि कुछ लोग कभी ना बदलें, कुछ रिश्ते कभी ना बदलें और कुछ शामें हमेशा वैसी रहें जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन वक्त का अपना दस्तूर है और किसी के लिए ये वक्त रुकता नहीं है। वो अपने पीछे यादें ज़रूर छोड़ जाता है और जब वही यादें किसी गज़ल की शक्ल में लौटती हैं तो दिल बरबस मुस्कुरा उठता है।

ज़ाबिक़ कलाम है कि वक्त की गर्दिशें हर शख्स के हिस्से में आती हैं, कोई बिखर जाता है, कोई संवर जाता है। फ़र्क बस इतना होता है कि किसी के पास सिर्फ हौसले होते हैं और किसी के साथ किसी अपने की दुआएं भी चलती हैं।

घड़ी सिर्फ वक्त बताती है, लेकिन वक्त इंसान की औकात भी बता देता है। उस वक्त शायद मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी वैसे वैसे एहसास हुआ कि अच्छे इंसान कहीं कि अच्छे दिन जो है वो इंसान की पहचान नहीं बताते, बल्कि मुश्किल दिन बताते हैं कि अपने ही कौन हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना किसी मतलब के आपका हाल पूछते हैं, तो कभी उन्हें हल्के में मत लेना। यकीन मानिए ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, उनका बहुत ख्याल रखा करिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के कहें कि हीरे हैं, उनका ख्याल आपको रखना है। बहरहाल ये अगला कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: वक्त की सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमें बदलता ज़रूर है, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत बची रहे ना तो इंसान कभी कहीं कि बूढ़ा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वो उम्र से नहीं बल्कि अपने मुस्कुराहट से पहचाने जाते हैं। उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और शायद इसीलिए कहा भी गया है कि चेहरे पर आई झुर्रियाँ उम्र बताती हैं, लेकिन दिल की रौनक इंसानियत बताती है। हम सबको अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जिससे मिलकर लोगों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। ये कलाम सुनकर शायद आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए, जो सीने में जलन है शायद कम हो जाए।

कभी कभी हम सोचते हैं कि ज़िंदगी ने हमें क्या दिया है, लेकिन शायद कभी ये भी सोचना चाहिए कि ज़िंदगी ने हमसे क्या सीखा है। क्या हमने किसी की उम्मीद बढ़ाई? क्या हमने किसी उदास चेहरे पर कोई मुस्कुराहट लाने की कोशिश की? क्या हमारी वजह से किसी का दिन थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो गया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही है। गज़लें भी हमें ये सिखाती हैं कि इंसान की असली पहचान उसके अल्फाजों से नहीं बल्कि उसके एहसास से होती है। अल्फाज तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन दिल से निकली हुई बात सीधे दिल तक जाती है। गौर कीजिएगा कभी।

खुर्शीद। साहब, ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। कोशिश ज़रूर करते हैं कि शायद कुछ बदल जाए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बदल नहीं सकते। जैसे गुज़रा हुआ वक्त है, बोले हुए अल्फाज वापस नहीं आते, और बिगड़े हुए लोग कहें कि। लेकिन एक चीज़ हमेशा हमारे साथ रहती है, वो चीज़ है आज का दिन। आज हम किससे कैसे मिलते हैं, किससे कैसी बात ही करते हैं, और किसके लिए कैसी दुआ करते हैं, यही आने वाले कल की यादें बनती हैं। इसलिए ज़िंदगी में हर दिन को इस तरह से जिए कि जब कभी वो याद आए तो चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आ जाए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगण

0: गणना का काम पूरा हो गया है। वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रंगे महफिल आप सुन रहे हैं 102.6 FM की लहरों पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और साहब, वक्त एक मुसाफिर है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन जाते जाते हर इंसान के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ जाता है। किसी के हाथ में तजुर्बा आता है तो किसी को सब्र मिलता है और किसी को मोहब्बत मिलती है। और साहब, किसी को कुछ ऐसी यादें जो उम्र भर उसके साथ चलती हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि लोग हमें कितने नाम से जानते हैं, बल्कि ये है कि हमारे जाने के बाद लोग हमें किस एहसास से याद करेंगे। और अगर हमारी वजह से किसी की दुआ निकलती हो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, तो समझिए कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, खूबसूरत इनाम ज़िंदगी ने हमें दे दिया है। बहरहाल, अब इस प्रोग्राम से भी मुझे इजाज़त चाहिए। और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐड किया है मैंने, कुछ खूबसूरत लम्हे आपकी ज़िंदगी में आए, ज़रूर बताइएगा। बहरहाल, इस प्रोग्राम से इजाज़त। और जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान।

किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। अमेरिका के वित्त

मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम जनता के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। आमजन सितंबर 15 तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। केरलम के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारत टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: दरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रिनबू पर प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एसएमवी फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। केरलम के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: आयोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। यह विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा कि ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होमुर्ज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक यह 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। कहा किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और कोरिया मास्टर बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है 3:03। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज। जुड़े रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक इन ट्रैक्स के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: शुरू हुई है
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है साथियों, जो साथी पहले से

डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे मन कस्तूरी।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। यह विलंबित पंजीकरण के कारण प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज न्यू ओलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसा हमले तुरंत रोकने चाहिए। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 में 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने 13वीं और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू होगी। यह बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। यह विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक बोट MSV फैज नूर ओलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया। भारत के कृषि प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रिपू झलक के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: मिल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।